सुप्रभात। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज सोमवार है, सख समत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार सन 2026 के मई महीने की 11 तारीख। इस समय प्रातः के 5:58:40 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। इस सभा में आप सबका स्वागत है।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वह संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी लेंगे समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में। वाचन अनीता तिर्की का है।
3: समन्वित कृषि प्रणाली एक नई तकनीक है जिसमें कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल और सब्जी उत्पादन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी का जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, तो इसे हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। चूंकि ये स्वसंपोषित प्रणालियां अवशेषों के चक्रीय और जल एवं पोषक तत्व आदि के निरंतर प्रवाह पर आधारित है, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर लगातार आमदनी एवं रोजगार का सृजन होगा। किसान भाई बहुत पुराने समय से ही कृषि के विभिन्न उद्यमों को अपनाते चले आ रहे हैं, लेकिन उन उद्यमों में केवल एक उद्यम को ही वह व्यवसाय के तौर पर अपनाते हैं जो उसकी आमदनी का मुख्य जरिया था। अन्य उद्यमों को वह केवल अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे, जैसे 1 या 2 मवेशी रखना ताकि उसके परिवार को रोजाना दूध मिल सके, तथा अधिक होने पर ही वह उसे बेचते थे। इस पुरानी प्रणाली को ही हम मिश्रित कृषि कहते हैं, लेकिन समन्वित कृषि प्रणाली में किसान को अपने भूखंड के अनुसार कृषि के विभिन्न उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, ताकि एक उद्यम दूसरे उद्यम की सहायता करे, जिससे उत्पादन लागत में कमी लाते हुए किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। उद्यमों का चुनाव करते समय किसान भाइयों को कई कारकों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे उस स्थान की पर्यावरण स्थिति, उपलब्ध मजदूरों की संख्या, जमीन की स्थिति और आकार, धन की उपलब्धता, उद्यम के बारे में जानकारी, सारे उद्यमों को एक साथ चलाने की क्षमता, बाजार की उपलब्धता तथा सामाजिक परिवेश के अनुसार ही उद्यमों का चुनाव। समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत किसानों को बहुत भारी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन उद्यमों को जो उस क्षेत्र विशेष में किसान अपना रहा है, उन्हीं उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में रखने की जरूरत है, ताकि वे उद्यम एक दूसरे के पूरक हो जाएं। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 1/10 भाग पर तालाब या ट्रेंच बनाकर वर्षा जल संग्रहित कर सकते हैं। इस संचित जल में मछली तथा बत्तख पालन के साथ साथ इसे सिंचाई के लिए साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। मछली पालन के तहत तालाब में 6 तरह की मछलियां, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प तथा ग्रास कार्प को पाला जाता है। ये मछलियां तालाब के विभिन्न स्तर पर रहती हैं। इस तरह तालाब में संग्रहित विभिन्न स्तर के जल का भरपूर दोहन करते हुए उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साधारणतः 1 हेक्टेयर तालाब के लिए 6,000 से 7,000 जीरा डाला जाता है, जिनकी लंबाई 3 से 4 इंच हो। बत्तख के साथ मछली उत्पादन करने पर 8 से 10 इंच की 3,000 से 4,000 जीरा तालाब में डाला जाता है, ताकि बत्तख उन्हें खा ना सके। समन्वित कृषि प्रणाली के अन्य उद्यम जैसे मवेशी, सूकर, मुर्गी या बत्तख पालन द्वारा परित्यक्त मल मूत्र और अवशिष्ट पदार्थों को सीधे तालाब में निष्कासित किया जाता है, जिससे मछलियों के लिए समुचित प्राकृतिक भोजन उपलब्ध होता है। इस व्यवस्था में मछली पालन के लिए अलग से पूरक आहार की आवश्यकता नहीं होती है।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का है।

0: सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का जन्म यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। उनकी जीवन शैली अद्भुत थी। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है जिसके कथ्य अत्यंत प्रेरणादायी हैं। एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति निराश और हताश होकर आया। उसने बड़ी विनम्रता से उनसे प्रार्थना की, मैं अपने जीवन की असफलताओं से परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे जीवन में सफल होने के लिए कोई गुरु मंत्र बता दें। सुकरात थोड़ी देर मौन रहे, फिर अपने स्थान से उठे और उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे लेकर आ गए। देखते देखते वे दोनों नदी में चलने लगे और अंततः नदी के मध्य में आ गए। हैरत तब हुई जब सुकरात उस व्यक्ति का सिर पकड़कर नदी में डुबोने लगे। इस कोशिश में हर बार व्यक्ति सांस लेने के लिए छटपटाता और अपना सिर पानी से बाहर निकालने की शिद्दत से कोशिशें करता, लेकिन हर कोशिश के साथ सुकरात उसका सिर उतनी ही तीव्रता से नदी में डुबो देते। अंत में सुकरात उसे नदी के किनारे ले आए। बाहर आकर याचक ने खुली हवा में राहत की सांस ली और क्रोधित होते हुए पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? ऐसे तो मेरी जान चली जाती, इसमें सफल होने का कौन सा गुरु मंत्र छिपा हुआ है? सुकरात ने धैर्य भाव से समझाया, जब नदी के मध्य मैं तुम्हारा सिर पानी में डुबो रहा था तो तुम्हें सबसे अधिक किसकी जरूरत महसूस हो रही थी? सांस के लिए हवा की, व्यक्ति ने अविलंब जवाब दिया। सुकरात और भी गंभीर होते हुए बोले, सफलता के लिए यही गुरु मंत्र है। जीवन में देखे गए सपने को साकार करने के लिए तुम में उसी प्रकार की बेचैनी होनी चाहिए जो नदी के मध्य में तुम में सांस को पाने के लिए थी। सफल होने के लिए यही छटपटाहट सफलता का कालजयी गुरु मंत्र है। इस दुनिया में सफल होने का सपना कौन नहीं देखता है, लेकिन इसके लिए हम में त्याग, तत्परता, समर्पण का अभाव होता है। लिहाजा सफल होने के लिए जब आपका मन बेचैन रहने लगे, आपको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो ये मानकर चलिए कि आप जीवन में सफलता के सोपान पर आरूढ़ हो गए हैं।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में।

आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। भक्ति साधना नहीं है, भक्ति तो उपलब्धि है। प्रेम क्या है? प्रेम मन को कोमल बनाता है, तो इतना सुदृढ़ भी कर देता है कि मन स्वयं इन कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है, जो निरंतर आनंद की अनुभूति उत्पन्न करे, उसे प्रेम कहते हैं। भक्ति और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों स्थायी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस क्षण भक्ति जागती है, उसी क्षण परमात्मा के प्रति प्रेम उजागर हो जाता है।

भक्ति की शुरुआत आत्म आलोचना से होती है, जिसमें भक्त अपनी बुराइयों को समझकर उन्हें दूर करने का विश्वास रखता है।

सच्ची भक्ति जीवन में आशा और सकारात्मकता लाती है जो मन को कोमल और सुदृढ़ बनाती है। भक्ति हमें ये सिखाती है कि भगवान के सिवा कोई भी हमारे दुखों और आंसुओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है।

भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे थे। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी रांची से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: और 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, युवाओं में बढ़ता मधुमेह की बीमारी और सावधानियां। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर सुरेश राव और इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। सुबह सुरीली के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत 7:15 पर। खुला आकाश कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 7:45। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है राजभाषा हिंदी सामर्थ्य और सीमा। रामनिवास शुक्ल से पंकज मित्र की बातचीत आप सुनेंगे। समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनते हैं दिल्ली केंद्र से और प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे 8:30 पर। लोक रंग के अंतर्गत नागपुरी लोकगीत आप सुनेंगे 8:45 पर। कलाकार हैं जानकी देवी और साथी रसरंजन। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 9 बजे। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे सुरेश प्रसाद गुप्ता से राग अहिल्या बिलावल में ध्रुपद गायन। रचना 4 ताल में निबद्ध है और संगतकार हैं पखावज पर रामबचन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। समय है 9:30। आओ साथ चलें, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 10 बजे और इस कार्यक्रम में चर्चा होगी विकास हेतु आमजन की भूमिका। भेंट वार्ता भी आप सुनेंगे, मुख्य धारा से जुड़ने में आमजन का योगदान और भेंट वार्ताकार हैं पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के श्री अमन कुमार और DIG श्री अनीश गुप्ता। इनसे बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है। जोहार रांची ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और 11:10 पर आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन हमारे दिल्ली केंद्र से। 12 बजे का वक्त होगा महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी धूप में बाहर निकलते समय सावधानियां। भेंट वार्ता भी आप सुनेंगे, बदलती महिलाएं बदलता भारत, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है। 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 1 बजे हिंदी समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी समाचार। 1:10 पर प्रादेशिक समाचार। अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 1:20 पर। कलाकार हैं शिप्रा बोस, इनसे आज आप सुनेंगे मिश्र खमाज में ठुमरी और दादरा। सुगम संगीत में आप सुनेंगे चंद गजलें 1:45 पर। ये थे हमारे आज दोपहर तक प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 6:55 होने को है।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस

0: बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभाञ्च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
0: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन

0: गठबंधन के नेताओं के साथ लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, युवाओं में बढ़ती मधुमेह की बीमारी और सावधानियां। डॉक्टर सुरेश राव से बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
2: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, आजकल के इस बदलती जीवन शैली के दौर में हमारे युवा साथी मधुमेह की बीमारी के चपेट में आ जा रहे हैं। ये युवा जो हमारी बढ़ती भारत की तस्वीर है, ये बढ़ते भारत को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन जब यही युवा साथियों में मधुमेह की बीमारी से वो ग्रसित होने लग जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक शुभ संकेत नहीं है। तो आखिर युवाओं में मधुमेह की बीमारी क्यों बढ़ रही है और समय रहते हमारे युवा साथी सचेत कैसे हों, अपने जीवन शैली को कैसे सुधार करें ताकि इस बीमारी से वो अपनी दूरियां बनाए रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित है आयुष चिकित्सक डॉक्टर सुरेश राव। राव साहब स्वागत है।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। इस बदलती जीवन शैली में हमारे युवा लगातार मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस आगे बढ़ने के दौड़ में, इस राह में वो फिर बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं, और एक ऐसा ही बीमारी है मधुमेह। आखिर हमारे युवा साथी इस बीमारी से ग्रसित क्यों हो रहे हैं और विश्व परिदृश्य क्या कहता है?
3: डायबिटीज आज के टाइम में हमारे भारत में एक एपिडेमिक डिजीज बन गई है। ये आज के टाइम में जो हमारे युवा पीड़ित है उसको ज़्यादा ये प्रभावित कर रही है। इसकी मेन जो काउजेज है वो सबसे मेन तो है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है, मम्मी पापा या किसी भी फैमिली हिस्ट्री में, तो बेटे या बेटी को होने का जो चांसेस है वो 4-5% ज़्यादा बढ़ जाता है। और आजकल की जो जीवन शैली है, जैसे कि ज़्यादातर है ना फास्ट फूड, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हेल्दी डाइट नहीं है, जिसके वजह से आपको डायबिटीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जनरली डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 को आपको जेनेटिकली होती है, लेकिन डायबिटीज़ 2 जो है वो 90% इसी से पीड़ित होते हैं। ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होता है। अगर आपके खान पान, आपकी है ना लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो आपको डायबिटीज़ होने के 90% चांसेज होते हैं। तनाव ज़्यादातर, आपको वर्क स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, हर बार है ना उनको खाने पीने के लिए वैसा सहूलियत नहीं मिलती है, पढ़ाई के लिए वो बाहर जाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्थ को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं है आज के टाइम में, है भी तो उनके

0: टाइम ऑफ टेकिंग कम है, तो जिसके कारण आज के टाइम में आपकी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा ग्रसित है। एक डाटा देखेंगे तो भारत में हर साल जो कैलकुलेशन है 3.5 लाख जो है जनसंख्या है, उससे वो जनसंख्या आपको सिर्फ डायबिटीज़ के कारण डेथ हो रही है। WHO के हिसाब से 3.5 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ के कारण हो रही है। और अभी के लेटेस्ट न्यूज़ में आपको पता चलेगा, लेटेस्ट आपके है ना जो आंकड़े निकल रहे हैं उसमें आपको 10 से 12 करोड़ जो जनसंख्या है भारत में वो आपको प्री डायबिटिक, जिसको डायबिटिक हो सकता है या जो डायबिटीज से ग्रसित है, ये अभी आंकड़ा चल रहा है। तो ये आप सोच भी सकते हैं कि कितना मेजर प्रॉब्लम्स है इसमें। आप सिर्फ डायबिटीज़ के कारण सिर्फ एक ही चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता, डायबिटीज़ से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आती है, जिसके कारण आप हार्ट ज़्यादा दिक्कत करता है, किडनी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आइस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और आपके नसों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये सारी जो है मेन चीज़ें हैं जिसके कारण आज के टाइम में डायबिटीज़ जो है वो एक मेजर और एपिडेमिक डिजीज़ बन गई है।
1: ये जो डाटा है बड़ा है, चौंकाने वाले हैं और डराने वाले हैं। हमारे युवा साथी लगातार काम करते हैं और आईटी सेक्टर में खासकर देखा जाता है कि काम करने का जो तरीका है और काम करने का जो दिनचर्या है वो अलग होता है। कोई रात के वक्त काम करते हैं, कोई दिन के समय काम करते हैं और पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं और मन में हमेशा काम काम ही चलता रहता है। जी तो डॉक्टर साहब, कैसे हम व्यवस्थित करें? फास्ट फूड आज एक कॉमन चीज़ें हो गई हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ऑर्डर किया, खाना आपके टेबल पर आ गया, तो ये सहूलियत कहीं ना कहीं हमको बीमार कर रहा है।
0: इसकी एक है ना बहुत अच्छी है ना एक फार्मूला है जो हम लोग अभी डायबिटीज़ के लिए इसको यूज कर सकते हैं, WEIG। ये एक फार्मूला है, फार्मूला को अपने लाइफ में स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। W मतलब वॉक, आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स आप वॉक करें। E मतलब है ईटिंग, हेल्दी ईटिंग खाए, मतलब अच्छा फूडिंग खाए, हेल्दी फूड खाए। आई आइडियल वेट, आपका ओबेसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेट वैसा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस खतरा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, गेट जी, गेट मतलब हो गया कि आपको ये चीज़ें हैं कि आप डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं अर्ली डायग्नोसिस ही नहीं करते हैं, मतलब आपने हर 6 महीना में, साल भर में अपने बॉडी को मतलब कि आपका शुगर टेस्ट करना चाहिए, डायबिटीज़ टेस्ट होनी चाहती है। तो उससे क्या होता है कि आपको अर्ली डायग्नोसिस होने से आपका प्रिवेंशन, आपकी मैनेजमेंट, आपका कंट्रोलिंग सारा चीज़ हो सकता है। अगर आप ये फॉर्मूला अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आप डायबिटीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, शुरुआती लक्षण क्या दिख जाते हैं इसके और हमारे युवा साथी कैसे इन सब चीज़ों से पार पाएं? जैसा आपने बताया, वेट पर ध्यान देंगे, खान पान पर ध्यान देंगे और अपने आप को इतना एनर्जेटिक बनाएं ताकि ये बीमारी उन तक नहीं आए, क्योंकि यही युवा हमारे देश के भावी कर्णधार हैं।
0: राइट, देखिए अभी के टाइम में आपका जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में चेंजेस करेंगे तो आपको डायबिटीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप हेल्दी खाएं, आपके है ना फास्ट फूड कंज्यूम फूड्स ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि आप है ना अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें, वॉकिंग पर ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक जाए। थर्ड चीज़ जो है जो लाइफ स्टाइल है आपके है वर्क प्रेशर हो, तनाव हो, ये सारी चीज़ें कम हो, नींद प्रॉपर ले, ये सारी चीज़ें जो है जो आपके आपके लाइफ स्टाइल पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डायबिटीज़ का स्टार्टिंग जो साइन एंड सिम्टम है या लक्षण जो आपको देखने को मिलता है, पेशेंट को है ना बार बार यूरिन की प्रॉब्लम्स आती है, बार बार इसको यूरिन पास आउट करना पड़ता है, थकावट ज़्यादा रहती है, हर चीज़ में लगेगा कि मैंने कितना ज़्यादा है ना वर्क कर लिया,
1: थकान महसूस
0: हो रही है, खाने का हर है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे में उनको भूख लग रही है लेकिन वेट है ना बढ़ नहीं रहा, वेट है ना सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, पैर उर में घुटनों उठनों में या शरीर में दर्द उर्द स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो मुख्य है आपका जो साइन एंड सिम्टम बोले या लक्षण बोले ये देखने को मिलता है।
1: ये शुरुआती लक्षण यदि हमारी युवा साथी में दिखने लग जाता है तो युवा साथी आप सावधान हो जाइए और एक छोटा सा टेस्ट आप ज़रूर करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात कर रहे हैं, खान पान बहुत बदल गया है, हेल्दी डाइट में सुबह में, दोपहर में, रात में कौन कौन चीज़ को समाहित किया जाए अपने खान पान में?
0: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हमारे खान पान में, जितना हो सके घर की फूडिंग ज़्यादा यूज करें, बाहर के है ना कंज्यूम फूड्स पैकेजिंग वो यूज़ नहीं करें, जंक फूड एकदम नहीं। दूसरी चीज़ स्मोकिंग हो, अल्कोहलिक ये सब नहीं यूज करना है। घर में हेल्दी डाइट में चावल का इस्तेमाल कम करें, जितना हो सके जो चीनी हो या मैदे की बनी हुई प्रोडक्ट्स है या मैदे से जो भी बन रहा है वो उसको इस्तेमाल हम लोग कम करेंगे। खाने में हम लोग नॉर्मली जो घर में चलता है रोटी चावल, चावल में भी थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बाजरे की रोटी हो, सब्जी में हरी ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज करें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, ये सारी चीज़ें जो है आप इस्तेमाल करें अपने हेल्दी डाइट में।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे युवा साथियों को कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। यदि आप बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं, ज़्यादा समय तक लगातार यदि आप बैठकर कार्य करते हैं और अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बीमारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
0: ये तो सही है, आज के ना युवा पीढ़ी को मैं यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके तनाव फ्री रहें, आप स्ट्रेस नहीं लें, नींद प्रॉपर लें, काम अपनी जगह पर है, हेल्थ अपनी जगह है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो आप कोई भी चीज़ में, कोई भी सेक्टर हो, आईआईटी सेक्टर हो, कोई भी चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने हेल्थ को पहले ध्यान दें, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें, कुछ भी आपको करना है तो कर सकते हैं।
1: तो मित्रों, खान पान का ध्यान रखिएगा और नियमित समय पर भोजन, समय पर नींद निकालना और व्यायाम आप लगातार करते रहते हैं तो लगभग 100% तक आप बीमारी से दूर रहेंगे।
0: हाँ, इससे कंट्रोल कर सकते हैं जी, जी। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज हो भी गई है तो उसमें भी अगर आपकी खान पान अच्छी रही, आपका हेल्दी डाइट रहा, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, समय पर खाना खा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। ऑल टोटल हमारी जो भी चीज़ें हैं वो आपके डाइट पर डिपेंड करता है। मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करते हैं, अपने हेल्थ को अगर आप प्रायोरिटी देते हैं तो आपको आपके है ना ये डायबिटीज होने के चांसेस 99% कम रहेगी
1: जी। काम के साथ साथ यदि आप अपने स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त ध्यान देते हैं, जितना आप अपने काम पर ध्यान देते हैं उतना ही आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और फिर हम एक विकसित भारत के निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश राव, आयुष चिकित्सक, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।
0: थैंक यू।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे युवाओं में बढ़ती मधुमेह की बीमारी और सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुरेश राव और इनसे बातचीत की थी संजीव कुमार लाल ने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली बस थोड़ी ही देर में।

सुबह सुरीली कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपकी दोस्त रचना, आपकी सुबह को सुरीली बनाने के लिए। जी हाँ, कुछ खूबसूरत गीतों के साथ जिसे सुनकर सच में आपकी सुबह सुरीली हो जाएगी। तो दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो पक्षियों की चहचहाट हमें सुनाई देती है और हमारे कानों में मधुर रस खोलती है। यकीन मानिए तो ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत संगीत है। जब कोयल बोलती है तो उसकी मीठी कूक सुनकर ऐसा लगता है मानो वो बहुत प्यार से आपको नींद से जगा रही है।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

संदेश के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुरीली में। दोस्तों, प्रकृति हमारी दुनिया की खूबसूरत तस्वीर है जिस पर जीवन की हर कहानी बनी है और ये हमेशा से ही हमें प्रेरणा देती है और हमें आश्चर्य से भर भी देती है। जिस सुंदरता को हम प्रकृति में देख पाते हैं, वैसी सुंदरता का वर्णन करना शायद संभव ना हो सके। हमारे चारों ओर जो भी मौजूद है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उस सभी चीज़ें प्रकृति में आती हैं। पानी, हवा, पहाड़, पेड़, फूल, आसमान आदि सभी प्रकृति का हिस्सा है और इस सुंदरता का वर्णन करना संभव तो नहीं, लेकिन इन्हें महसूस हम कर सकते हैं और इन हंसी वादियों का आनंद हम ले सकते हैं।

दोस्तों, प्रकृति हमारे चारों तरफ है और पेड़, फूल, नदियाँ, पहाड़ और तरह तरह के जानवर मिलकर हमारी धरती को जीवंत और रंगीन बनाते हैं। वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं और पक्षी खुशी से गाते हैं। गर्मियों में हम पार्क और बागों में धूप का मजा लेते हैं। शरद ऋतु में पेड़ों के पत्ते लाल, पीले और सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और सर्दियों में बर्फ धरती को सफेद चादर की तरह ढक देती है। प्रकृति सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होती, बल्कि हमें मन की शांति भी देती है। प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताने से मन खुश हो जाता है और तनाव भी दूर होता है।

वाकई में दोस्तों, प्रकृति की खूबसूरती देखकर हर किसी का दिल और मन तरोताजा हो जाता है। और प्रकृति को माँ का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि वह बिना किसी अपेक्षा के आपको प्यार, खुशी, खुशहाल जीवन देने का प्रयास करती है। प्रकृति कई रंगों का मेल है, और जिसको अच्छा रखने के लिए आप जितने अहम कदम उठाएंगे, उतना ही सरल जीवन भी जी पाएंगे। प्रकृति के एक और, जहाँ हरे भरे पहाड़ हैं, तो वहीं बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं, झरने हैं, झीलें हैं, हरियाली है। और इन सब की सुंदरता देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि वहाँ चले जाएं। और यकीन मानिए, अगर आप इन झीलों के बीच हो, तो वो नज़ारा कितना ही सुंदर हो।

श्रोता और इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सुरीली यहीं संपन्न होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति तो बहुत खूबसूरत है और इसकी सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें भी अपने प्रयास बनाए रखने होंगे, प्रकृति में संतुलन बनाए रखना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे और स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम इसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। अब इसी के साथ ही अपनी दोस्त रचना को दीजिए विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राम निवास शुक्ल से पंकज मित्र की बातचीत। विषय है राजभाषा, हिंदी सामर्थ्य और सीमा।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि आज के संदर्भ में हिंदी की सामर्थ्य और व्यापकता क्या है, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राम निवास शुक्ल जी को, जो पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं राजभाषा विभाग के, और राजभाषा से चूंकि इनका बहुत लंबा अनुभव है, सबका पड़ता रहा है इससे। तो शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो ये कि आपका राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में बहुत लंबा अनुभव रहा है और बहुत सारी बाधाएं भी रही हैं इस दिशा में, तो आप हमें ये बताएं कि राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में आपके अनुभव कैसे रहे हैं।
1: धन्यवाद पंकज जी। सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी रांची का साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस राजभाषा विषय पर आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। जहाँ तक कि इस विषय का प्रश्न है कि राजभाषा के कार्यान्वयन का कैसा अनुभव रहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे अपनी सेवा काल में राजभाषा कार्यान्वयन का ही कार्य देखना पड़ा, क्योंकि राजभाषा से संबंधित जब हम बात करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं, एक अनुवाद का पक्ष है और दूसरा कार्यान्वयन का पक्ष है। बड़े मंत्रालयों में जहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिनको केवल अनुवाद का कार्य करना पड़ता है, और समय आने पर उनको कुछ समय के लिए राजभाषा कार्यान्वयन का भी कार्य देखना होता है। जहाँ तक मेरे ये सेवाकाल का प्रश्न रहा, शुरू से मैं अनुवादक के पद पर कार्यरत हुआ और वहाँ से लेकर एक लंबी यात्रा सेवाकाल की रही। और इसमें जहाँ तक कार्यान्वयन का प्रश्न है, मैं दो अहम पदों पर रहा हूँ जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, और वो पद थे एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में उप निदेशक का कार्यान्वयन। वहाँ पर मैं गाजियाबाद में पदस्थ था और मुझे 7 राज्य मिले हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। इन प्रदेशों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना होता था। तो उस दौरान मैंने ये पाया कि वास्तव में कि हर कार्यालय में जा जाकर कि वहाँ पर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दशा और दिशा क्या है, तो प्राय ये देखने को मिलता है कि अच्छा काम हो रहा है। संसाधन भी आजकल काफ़ी राजभाषा हिंदी के पास में है, और लेकिन बहुत कुछ करना भी है, क्योंकि जब निरीक्षण की बात आती है, चाहे वो संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण हो, चाहे मंत्रालय से हो, चाहे वो क्षेत्रीय कानून कार्यालय से हो, वहाँ पर एक सजी समरी स्थिति देखने को मिलती है, और वो खास तौर से आंकड़ों के आधार पर होती है। और आंकड़ों के आधार पर जब स्थिति होती है और सही वस्तु स्थिति जब देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर कभी कभी दिखाई देता है। मैं वहां पर वही अनुरोध करता हूं कि वो उनमें तालमेल होना चाहिए, जो आप आंकड़े दे रहे हैं उसके अनुरूप ही आपकी स्थिति हो और उसका कार्यान्वयन हो, तब हमारा जो लक्ष्य है उसको हम सही रूप में, सही परिप्रेक्ष्य में हासिल कर सकते हैं। दूसरा हमें था संसदीय राजभाषा समिति, जिसमें पूरे भारत वर्ष का भ्रमण करना होता है और वहाँ निरीक्षण करना होता है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं 30 सांसद होते हैं, 20 लोकसभा के हैं, 10 राज्यसभा के हैं, और ये समितियों में 3 उप समितियाँ होती हैं, प्रथम उप समिति, द्वितीय और तृतीय। और ये संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट जो है सीधे महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अभी तक करीब 12 खंड जो है उनकी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत हो चुकी है। तो ये संसदीय राजभाषा समिति ने बहुत कार्य किया है
0: जी। तो शुक्ला जी, हम लोग ये देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में जो राजभाषा का कार्य है वो ज़्यादातर अनुवाद के सहारे चलता है, जो मूल रूप में हिंदी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी बहुत कम हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए कि मूल हिंदी में लोग ज़्यादा काम करें, और अनुवाद तो एक तरीका है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मूल हिंदी में काम करने वाले लोग हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये कैसे संभव हो?
1: अनुवाद जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है, जो कहीं न कहीं आप देखते हैं कि दो भाषाओं, दो संस्कृतियों को जोड़ने का एक सेतु का काम करता है अनुवाद। लेकिन वही अनुवाद जब रोजमर्रा के कामकाज में हम सहारा लेते हैं किसी भाषा को लेकर, तो उसमें भाषा का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। कोशिश ये होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में साफ लिखा है कि देवनागरी में लिखित हिंदी इस देश की राजभाषा है। भारत सरकार की अपेक्षा है कि हमारा सारा कामकाज जो है वो राजभाषा हिंदी में निष्पादित हो। धीरे धीरे हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अनुवाद का प्रश्न है, अनुवाद के सहारे जब हम लेते हैं तो विशेष परिस्थितियों में तो ठीक है अनुवाद का हम सारा ले लें, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में जब अनुवाद पर हम आश्रित हो जाते हैं तो राजभाषा हिंदी का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अपेक्षा ये की जाती है कि हम धीरे धीरे, भारत सरकार की अपेक्षा है कि हर अधिकारी कर्मचारी अपना कामकाज जो है अपनी राजभाषा हिंदी में प्रारंभ कर दे और अधिक से अधिक उसमें निष्पादित करें।
0: एक प्रश्न और इसके साथ ही दिमाग में आ रहा है कि हिंदी का प्रचार प्रसार तो बहुत है, लेकिन राजभाषा के रूप में ज़्यादातर जगहों पे ये हो रहा है कि हमारे देश में ही आज़ादी के इतने साल बीत गए फिर भी वो राजभाषा हिंदी उस तरह से वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई जिसका जिसकी वो अधिकारिणी थी।
1: देखिए, इस संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ और हमारा संविधान 1950 में बना। हमारे संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में देखेंगे तो उसमें राजभाषा हिंदी के प्रावधान मिलेंगे। भारत सरकार ने पुरजोर कोशिश की है और कर रही है कि इस दिशा में जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और धीरे धीरे जो राजभाषा हिंदी है उसमें सारा कामकाज होने लगे। भारत सरकार ने बहुत संसाधन भी जुटाए हैं। आप देखेंगे कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बना है जिसमें जितने भी विभाग हमारे सरकारी विभाग होते हैं उनमें जो लंबित काम है, जो परफॉर्मा है, बहुत सारी नीतियां हैं जो अंग्रेजी में चली आ रही हैं, उनके अनुवाद कार्य करने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बनाया है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत बना हुआ है जो आपको राजभाषा हिंदी का प्रशिक्षण देता है। आपका एक केंद्रीय विश्व आपका सचिवालय बना है मॉरिशस में, वो भी इस दिशा में कार्यरत है कि विश्व हिंदी सम्मेलन जितने हो रहे हैं और राजभाषा हिंदी को एक पूरे विश्व पटल पर जो है उसको लाने के लिए भरसक प्रयास उसका है। आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा अपने में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, भारत सरकार ने ये किया है। आपको इस दिशा में बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने 6 समितियां बनाई हैं राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर। उसमें पहली समिति है आपका केंद्रीय हिंदी समिति जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं और वो उसकी उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होती है। दूसरी है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति जिसके अध्यक्ष जो होते हैं राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। तीसरी जो है आपका हिंदी सलाहकार समिति है, हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति बनी हुई है जिसकी अध्यक्षता वहाँ के जो मंत्री महोदय होते हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, हर नगर में समितियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो हर मंत्रालय में होती है, और एक है आपकी जो बड़े स्तर पर होती है। तो इस प्रकार से 6 समितियां बनी हैं। ये समितियां भी पुरजोर कार्य कर रही हैं। तो स्वतंत्रता के बाद कार्य तो बहुत हुआ है, लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम 200 वर्ष लगाए हैं अपनी राजभाषा अंग्रेजी को थोपने के लिए, हमें अभी जो 76 वर्ष हुए हैं उसमें काम तो बहुत हुआ है, लेकिन जो हम अपेक्षाएं कर रहे हैं कि हिंदी तो हमारे इस देश की भाषा है, कामकाज होना चाहिए, उसमें निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप अभी बहुत प्रयास करना बाकी है। और उसके लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे संविधान में, जैसा कि आप जानते हैं, जब संविधान बना तो अपेक्षा ये की गई थी 15 वर्ष के बाद में अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाएगी और हिंदी में सारा कामकाज होने लगेगा। लेकिन 15 वर्ष जैसे 1965 में होने वाले थे, भारत सरकार ने देखा कि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म के मानने वाले हैं और भाषा बड़ा संवेदनशील पहलू होता है। कहा गया है कि भाषा किसी भी देश और समाज को जोड़ने और तोड़ने की दोनों संभावित शक्तियां इसमें विराजमान होती हैं। इस दोहरी शक्ति को पहचानते हुए भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का कार्य प्रेरणा और प्रोत्साहन के आधार पर किया है। इसलिए 1963 में एक राजभाषा अधिनियम पारित हुआ

0: कि संसदीय जब सत्र चलता था संसद का, तो मैनुअल टाइपराइटर पर हम लोग काम करते थे,
1: जी
0: उसमें संशोधन होता था तो पूरा फिर दोबारा टाइप करना पड़ता था। आज आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर की वजह से बहुत साधन मिल गए हैं, हमें पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है, और उसमें जैसे मेल हमें कहीं भेजनी होती है तो बहुत सुविधा है कि बिना अविलंब जो है वो हम अपना मेल भेज देते हैं। तो अब पत्र जो भेजते थे जिसमें बहुत समय लगता था, उसकी जगह पर हमने मेल और इसका सारा ले लिया है।
1: जी
0: तो राजभाषा हिंदी इसमें बहुत सफल हुई है, और आने वाला समय भी बड़ा स्वर्णिम है कि राजभाषा के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि हिंदी इसमें अपना एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है।
1: एक भूमिका हिंदी की और है कि जो देश की सामाजिक संस्कृति के योगदान में, क्या
0: जी,
1: लगता है आपको हिंदी कितनी कारगर महत्वपूर्ण भूमिका
0: सामाजिक
1: निभाती
0: संस्कृति कहा जाता है कि हर भाषा
1: है?
0: किसी भी समाज और देश की संस्कृति की वाहक हुआ करती है। जब व्यक्ति भाषा बोलता है तो वो केवल भाषा नहीं बोलता है, भाषा के माध्यम से उस व्यक्ति की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार मुखरित होते हैं।
1: बिल्कुल
0: इसलिए भाषा जो है वो संस्कृति की वाहक है। जब राजभाषा हिंदी के विकास की बात हुई तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 351 आप देखेंगे तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भाषा को विकास कैसे किया जाए, विकसित कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो उसमें लिखा है कि हिंदी का विकास सुनिश्चित करना ताकि वह इस देश की सामाजिक संस्कृति की सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, और उसके लिए मुख्यतः संस्कृत से गौरता, जो हमारी संविधान की अष्टम अनुसूची है 8th शेड्यूल, उसमें 22 भाषाएं हैं, उनसे शब्द ग्रहण करते हुए राजभाषा हिंदी का विकास सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। तो हमने ये ध्यान रखा है वहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने कि जितनी भी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनसे ऊर्जा लेकर राजभाषा हिंदी आगे बढ़ेगी। तो एक पूरे देश का एक प्रतिबिंब जो है राजभाषा हिंदी में आपको मिलेगा, चाहे वो किसी प्रदेश का रहने वाला हो, जब राजभाषा हिंदी पढ़ेगा तो उसे लगेगा इसमें तो हमारी भाषा के शब्द हैं, और वो उससे सहज रूप से जुड़ सकेगा। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जैसे पावती शब्द आया एक्नॉलेजमेंट के लिए,
1: हाँ
0: पावती शब्द हिंदी का नहीं है, ये शुद्ध जो है मराठी का है, मराठी से हमने लिया है। अब मराठी भाषाभाषी जब इसको पढ़ेगा कि पावती शब्द इसमें आया है तो कहेगा अरे ये तो हमारी भाषा का शब्द है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये सामसिकता जो है राजभाषा हिंदी इसकी वाहक है, और आज पूरे तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है इस देश की सामाजिक संस्कृति की समवायिका है, और इस रूप में उसका विकास जो है वो बहुत अच्छे उसमें हुआ है, और आज सारी भाषाओं को लेकर चल रही है। किसी ने कहा है कि बड़ा अच्छा लगता हुआ बताते हुए कि हिंदी संस्कृत का आशीर्वाद लेकर अरबी फारसी के शब्दों को आत्मसात करते हुए, उसके बाद में आपका खड़ी बोली का उच्चारण ग्रहण करते हुए, ब्रजभाषा का बांकपन तो अवधि का मिठास लिए हुए, इस धरती पर बसने वाले करोड़ों लोगों के सपनों की एक ऐसी भाषा है जो सपने भी दिखाती है और उन सपनों को साकार भी करती है। ये वो भाषा है जो सारी भाषाओं को लेकर चल रही है, सारी आपस में सहोदरा हैं, किसी प्रकार का इनमें अंतर नहीं है। इसलिए सारी भाषाओं, प्रादेशिक भाषाएं हमारे देश की जो है उनसे ऊर्जा लेकर राजभाषा हिंदी एक आगे अपना पदार्पण कर रही है।
1: जी तो बात तो हिंदी के बारे में चलती है तो बहुत लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है अब। तो इसी खूबसूरत बात के साथ कि हिंदी किस तरह से विश्व पटल पर भी अपने अपना स्थान बना रही है, और इस उम्मीद के साथ भी जिस तरह की बात आपने हिंदी के बारे में कही, तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोग हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो उसी में सफलता इस कार्यक्रम की भी है, और हम हिंदी सेवी के रूप में, हिंदी भाषी के रूप में सफल भी हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद पंकज जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश, विषय था राजभाषा हिंदी सामर्थ्य और सीमा। रामनिवास शुक्ल से पंकज मित्र की बातचीत आप सुन रहे थे इस विषय पर। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

चाहेंगे कि आज 11:10 पर आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दो बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। नॉनस्टॉप अंताक्षरी ये कार्यक्रम होगा 3 बजे। और 3:30 पर रांची मेलोडीज में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आओ साथ चलें कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 4:02 पर। सांझ सरगम के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुनेंगे 4:35 पर। 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी, सबसे बड़ी पूंजी है अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी व्यायाम। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक ये कार्यक्रम होगा 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी लेंगे, सावधानी ही सुरक्षा, सड़क पर सतर्कता जरूरी। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। 6:02 पर कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी दुधारू पशुओं की देखभाल और टपक सिंचाई से किसानों को लाभ। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर डी के रसिया। भेंट करता है कृष्ण जीवन पौराणिक। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। 6:30 पर हमारी दुनिया कार्यक्रम में आज चर्चा होगी गर्मी के मौसम में खान पान और पंच परगनिया वार्ता। सशक्त नारी से बनेगा सशक्त समाज। वार्ताकार हैं पराग किशोर सिंह और प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। 7 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। आज का ये कार्यक्रम होगा उरांव भाषा में। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और रात्रि 8 बजे रजनीगंधा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सुनहरी यादें और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सविता राय से आप सुनेंगे राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रूपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
9: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
3: सेमीफाइनल में कलेश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under 17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a gathering

0: Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work-from-home practices. The remarks come against the backdrop of record-high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे आज दान की जरूरत नहीं है लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो कोई भी कार्यक्रम हो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे सोना नहीं खरीदेंगे विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा
0: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv today, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga at Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow will also be organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will arrive Somnath from Jamnagar by air. After landing at the helipad, he will greet the public during a roadshow up to Veer Hamirji Goyal Circle. Afterward, the Prime Minister will pay floral tribute to statue of Sardar Vallabhbhai Patel who envisioned the reconstruction of the Somnath Temple. Mr. Modi will perform special prayers at the temple and will also conduct the Kumbhabhishek ceremony and flag hoisting on the temple spire. On this occasion, the Indian Air Force Surya Kiran Aerobatic Team will present a thrilling air show in the sky of Somnath. After the worship rituals, the Prime Minister will also address a public meeting. He will release a special commemorative postal stamp and a special 75 rupees commemorative coin. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
0: Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and an auditorium. Mr. Modi will also visit various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, dining area and e-library. Prime Minister Modi will also address the gathering. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Hemant Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. The swearing-in ceremony will be held at the Veterinary College playground in Kanapara and is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nabin, among others. West Bengal Chief Minister Shivendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat in Nabana today. We have more from our correspondent.
3: After Saturday's swearing-in, West Bengal's new government is set to begin its administrative journey. Chief Minister Shubhendu Adhikari will hold the first cabinet meeting today at Navanno. At the meeting, portfolios for five newly sworn-in ministers are likely to be allocated and decisions on other departments are expected. Sources say the BJP's election promises will be high on the agenda, including the rollout of the Ayushman Bharat Health Scheme, the Annapurna Bhandar and implementation of the 7th Pay Commission for state employees. Today, the Chief Minister will also meet secretaries, district magistrates and senior police officers to review the pace of administrative work and the law and order situation. Newly elected BJP legislatures are also being asked to attend the meeting. Sandeep Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Moreover, Congress and left parties have strongly rejected TMC Supremo Mamata Banerjee's call for a united opposition front against the BJP. Ms. Banerjee, in a video message, urged all opposition forces, including Congress, CPI-M and ultra-left groups, to join hands against what she described as the first enemy. Meanwhile, the Special Investigation Team, or SIT, has arrested three people in connection with the murder of Chandranath Rath, personal assistant to Shubhendu Adhikari. Three miscreants were apprehended from Uttar Pradesh. The arrested trio are notorious as sharpshooters. Detectives are interrogating them repeatedly. However, efforts are underway to find out who had hired them for the killing. In Tamil Nadu, the first session of the newly elected assembly will begin today. Pro-Tem Speaker M.V. Karupaya will administer oaths to newly elected MLAs. The speaker will be elected today or tomorrow after all the members take the oath. The new government, led by TVK Chief C. Joseph Vijay, will have to prove their majority before the 13th of this month. Union Home Minister Amit Shah has extended greetings to technocrats and tech-savvy youth on the occasion of National Technology Day today. In a social media post, Mr. Shah said that the government is driving India's growth by harnessing innovative prowess through a slew of game-changing initiatives. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AI News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. India now ranks third globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments such as solar cells, wafers, and polysilicon. According to data from the Ministry of New and Renewable Energy, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts. Uttarakhand administration has urged the Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department, IMD, amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after. Taking cognizance of the bad weather, Garhwal Divisional Commissioner Vinay Shankar Pandey has appealed to devotees and tourists that they must get the latest information about the weather during their journey and plan it with utmost care. In our bilingual live phone-in program, Public Speak, today, we will bring an insightful discussion on fire safety awareness, reducing risks and preventing disasters, with fire advisor in the Ministry of Home Affairs, Prashant Lunkar, and director in Delhi Fire Services, Atul Garg. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone number 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with hashtag AskAIR. US President Donald Trump has described Iran's latest peace proposal as totally unacceptable as efforts continue to secure a deal to end the months-long conflict in West Asia. Mr. Trump wrote on Truth Social that he has read Iran's response from what he called its so-called representatives and said that he does not like it, calling it totally unacceptable. More from our correspondent.
4: Iran earlier said it has sent its response to the latest United States proposal aimed at ending the conflict in West Asia. The response was conveyed through Pakistan, which has been acting as a mediator between Tehran and Washington. Iran's ISNA news agency said Tehran's response focuses on ending the conflict and ensuring maritime security in the Strait of Hormuz, a key global oil shipping route. Iranian President Masoud Pezeshkian said that dialogue with the West should not be viewed as surrender or retreat. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with President Trump last night after Iran submitted its response to the latest U.S. ceasefire proposal. According to Israeli officials, the two leaders discussed ongoing negotiations and regional security concerns. Israeli Prime Minister said President Trump agreed on the need to remove Tehran's stockpile of highly enriched uranium, which remains a key issue in the negotiations. Referring to the military situation, President Trump described Iran as militarily defeated, claiming that the country's defensive and offensive capabilities have been systematically dismantled. Ashish Abraham for Akashwani News, Delhi.
0: Meanwhile, Mr. Trump has warned that the U.S. will target Iran if they try to reach the country's highly enriched uranium, saying that the nuclear material is under constant surveillance by the U.S. military. On to sports now. In football, India to play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup, marking the country's first ever qualification to a FIFA World Cup on merit in women's football. On the other hand, in men's football, India suffered a 3-0 defeat to Uzbekistan in the second Group D match of the AFC Under-17 Asian Cup in Jeddah yesterday. With this, India's hopes for qualifying for the FIFA Under-17 World Cup ended. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
5: Thank you, Saira. All newspapers have widely covered the swearing-in ceremony of actor-turned-politician Vijay, as also the news related to evacuations on the cruise ship hit by hantavirus. Hindustan Times headlines, Vijay sworn in, vows new beginning for Tamil Nadu. While the Tribune says Talapati Vijay dons new role as Tamil Nadu boss, promises only one power center. Himanta, elected NDA leader, to take oath as Assam chief minister tomorrow, writes the Hindu. The same paper also quotes the new Bengal CM Suvendu Adhikari in its headline, Era of Trust Starts, says Suvendu ahead of cabinet meet. PM Modi urges citizens to cut fuel use, revive COVID-era measures, writes the Pioneer. The Statesman reports, six new ministers inducted into Chief Minister Yogi Ministry in UP, two others promoted. The Hindu, in an editorial titled Cost to Access, writes that the cost of accessing medical care remains high. The Union Labour Ministry has announced that it will provide a free annual health checkup to workers aged 40 years or more. Commendable though the initiative is, its success is not guaranteed. At present, only 31 crore of 94 crore workers are on the eSHRAM portal, whose integration with ESIC is still in its early stages in many states. The program does not address the opportunity costs of accessing healthcare, forcing workers to continue contending with lost wages. And finally, Indian women's recurve team stuns China at the Archery World Cup to win gold in Shanghai, writes the Statesman. A proud moment indeed for Indian sports. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की अपील की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना नहीं खरीदने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम के जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग कार्य की सराहना की। झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग की सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आज होगी बैठक। लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सीधी रेल सुविधा। और संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज टू में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट में पेट्रोल, गैस और डीजल के इस्तेमाल पर संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि पश्चिम एशिया युद्ध के असर को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने कल हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमें मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की अधिक जरूरत है।
1: वैश्विक संकट के इस समय में कुछ संकल्प लेने होंगे। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें।
6: प्रधानमंत्री ने मौजूदा संकट को देखते हुए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे।
6: रांची नगर निगम ने शहरी विकास और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम द्वारा किए गए जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग कार्य के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है। बता दें कि रांची नगर निगम ने सभी शहरी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य पूरा किया है। इसमें नगर निगम की जमीन, भवन, बाजार, कार्यालय, बस टर्मिनल, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज और मैप किया गया। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर सभी जिलों में पानी और बिजली संकट को लेकर 12 मई को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की आयोजित बैठक में दिशा निर्देश जारी किया गया। रांची में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने को लेकर मार्गदर्शन भी दिया। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बालू घाटों का संचालन लंबित रहने और अवैध कारोबार बढ़ने की शिकायतों के मद्देनजर खान सचिव अरवा राजकमल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। बैठक में जिला खनन पदाधिकारियों, बीडीओ और सफल बोलीदाताओं को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 229 बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया है। सांसद कालीचरण सिंह ने कल लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को लातेहार स्टेशन पर रुकेगी जबकि नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रत्येक शनिवार को होगा। इस सुविधा से लातेहार और आसपास के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस से सफर करने में सहूलियत मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र महिलाओं को लाभ देने के लिए भौतिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से 18 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 19 से 24 मई तक रिपोर्ट संकलन और अपात्र लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। 29 मई तक आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। खूंटी पुलिस प्रशासन ने पंजाब के जालंधर में 1.5 वर्ष से बंधुआ मजदूर बनाकर रखे गए सनिका पूर्ति और उसके परिवार को सकुशल मुक्त करा लिया है। इस बचाव अभियान में समाज सेवी लक्ष्मी बाखला का सहयोग रहा। खूंटी महिला थाना प्रभारी फूलमणि टोप्पो ने बताया कि सनिका पूर्ति को जालंधर में बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी।
7: ये लोग 1-1.5 साल पहले जलंधर में ये बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल के अंतर्गत उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलता था। जब भी ये छुट्टी के लिए बोलते थे तो उन्हें नकार दिया जाता था। पुलिस अधीक्षक महोदय खुटी के निर्देश अनुसार कलजीत सिंह के घर से रेस्क्यू किए।
6: झारखंड सीआईडी ने साइबर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 8,52,00,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। सीआईडी के अनुसार आरोपी लोगों को फर्जी वेबसाइट पर नकली मुनाफा दिखाकर निवेश के नाम पर रकम जमा करवाता था। मौसम विभाग ने झारखंड में मई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।
8: इस बार जो मई के महीने का जो प्रेडिक्शन आया है उसमें जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है और जो बारिश है वो सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। तो ओवरऑल जैसे थोड़ा सा राहत की खबर है झारखंड वासियों के लिए कि बीच बीच में आपको थंडर एक्टिविटी के साथ में बारिश देखने को मिलेगा और टेम्परेचर भी उससे थोड़ा मेंटेन रहेगा।
6: शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम अनिल मोहोद ने मेजबान चीन को हराकर देश को गौरवान्वित किया है। अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और प्रतिभा को देश की बेटियों के लिए प्रेरणादायी बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने देशवासियों से प्रधानमंत्री की पेट्रोल, डीजल और गैस के उपयोग पर नियंत्रण रखने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने राज्य के 168 शहरी SHC में प्रसव की सुविधा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रांची के कोकर स्थित खुरहा टोली से 18 माह की बच्ची के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है राज्य में नमक की कालाबाजारी पर सरकार सख्त होगी जांच। दैनिक जागरण ने 21 बच्चों के साथ मानव तस्कर की गिरफ्तारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की अपील की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम के GIS आधारित एसेट मैपिंग कार्य की सराहना की। झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग की सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आज होगी बैठक। लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सीधी रेल सुविधा। और शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ रचना और आगे का सफर आप मेरे साथ तय करेंगे।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक रंग के अंतर्गत नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं जानकी देवी और साथी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

जानकी देवी और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन।

रसरंजन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आजा नचले फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: संदेश के बाद आपका फिर से स्वागत है रस रंजन में। अगला गीत आइए अब सुनते हैं बचना ए हसीनों फिल्म से। अन्विता दत्त के बोल हैं, विशाल और शेखर का संगीत है और आवाजें हैं KK और शिल्पा राव की।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस समय आप सुन रहे हैं रस रंजन, आइए अब सुनते हैं बैंग बैंग फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं ऐश किंग, शिल्पा राव और शेखर रवजियानी। गीत के बोल लिखे हैं अन्विता दत्त ने और संगीत है विशाल और शेखर का।

जावेद अख्तर के लिखे गीतों को संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने। फिल्म का नाम है चलते चलते और आवाज़ें हैं अभिजीत और साथियों की।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन। अगला गीत आइए अब सुनते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। आवाज है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीतकार है विशाल शेखर।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में सुरेश प्रसाद गुप्ता से राग अलहैया बिलावल में ध्रुपद गायन। बोल है मोतियन की छाला लगी, रचना चार ताल में निबद्ध है और संगतकार हैं पखावज पर राम भजन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे सुरेश प्रसाद गुप्ता से राग अलहिया बिलावर में ध्रुपद गायन। बोल थे मोतियन की झाला लगी, रचना चार ताल में निबद्ध थी। संगीतकार थे पखावज पर रामवचन पाठक और हारमोनियम पर गायत्री पाठक। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

मीडियो वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा विकास हेतु आमजन की भूमिका, भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे, मुख्य धारा से जुड़ने में आमजन का योगदान। भेंटवार्ताकार हैं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार और डीआईजी श्री अनीश गुप्ता। इनसे बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने। प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की और प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें।

0: कार्यक्रम आवसा चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, सुरक्षा चाहे वह हमारे देश की हो, राज्य, समाज या फिर खुद की, बेहद जरूरी है। सुरक्षा दुरुस्त तभी रह सकती है जब प्रशासन चुस्त और सजग हो, लेकिन साथ ही साथ आम जन की सजगता भी सुरक्षा हेतु उतनी ही जरूरी है। श्रोताओं, हमारे यहाँ उग्रवाद की भी गंभीर समस्या है। इसे दूर करने एवं स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हमारे प्रशासन की अहम भूमिका है। मुख्य धारा से हमारे भटके हुए लोगों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु सरकार द्वारा कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि समाज से भटके लोगों को नई दिशा और दृढ़ता प्रदान की जा सके। श्रोताओं, सुरक्षा और भटकाओ, इन्हीं विषयों पर आज हमने बातचीत की है पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार से। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम आवसा चले में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार
0: सर, जहाँ तक प्रशासन और आम जन की बात है, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की बात होती है जब हमारी सुरक्षा की बात खड़ी होती है, और साथ ही साथ विकास के लिए भी प्रशासन और आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी हो जाती है, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जहाँ तक आमजनों को जोड़ने की बात है, विकास और सुरक्षा कोई भी मुद्दा हो, आमजन जब जुड़ेंगे तो उसे एक अलग तरह का स्ट्रेंथ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चलता है तो प्रशासन 10 कदम चलने को तैयार होता है, पर प्रशासन को स्ट्रेंथ लोग ही देते हैं। कभी सुरक्षा के मामले में कभी दंगा होता है, कभी कम्युनल इश्यूज आ जाते हैं, कई बार तो समाज के ही कुछ लोग खड़े होते हैं जो पुलिस को सपोर्ट करते हैं, और पुलिस का बल बढ़ता है और फिर पुलिस उन चीज़ों को डील कर पाती है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर पाती है। क्राइम जैसे इशूज में भी लोग खबर देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को कहीं ना कहीं कि किस तरह के अपराधी कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उस खबर के आधार पर कई बार बड़ी उपलब्धियां होती है, और वो समाज के लिए और प्रशासन के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकास और सुरक्षा के मामले में लोगों को जोड़ना एक अहम चीज है हमारे लिए।
0: ये तो बात बिल्कुल सही है सर, और देखा गया है कि विकास के मार्ग में अपराध बहुत बड़ा रुकावट बनकर आता है, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये तो अपराध और किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म भी कहीं ना कहीं विकास को रोकता है। हम देखते हैं कई सारे स्टेट्स हैं, पहले झारखंड भी नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ करता था, तो नक्सलिज्म के कारण सड़क का डेवलपमेंट, एजुकेशन के एरिया में डेवलपमेंट, और भी कई हिस्सों में पुलिस और प्रशासन, सिविल प्रशासन भी अंदर के हिस्सों में पहुंच नहीं पाती थी। कई सारे जंगल के हिस्से हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग जाने से डरते थे, तो जहाँ पे भी क्राइम ज़्यादा है, अगर क्राइम ज़्यादा है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे आपके एरिया में आके। बड़े जो लोग, बड़ी जो कंपनियाँ हैं, वो आके क्रिमिनल से डरेंगी, उन्हें पैसे देंगी, तो जो माहौल होता है वो नहीं बन पाता है विकास का। तो क्राइम और एक्सट्रीमिज्म से डील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर किसी भी समाज को विकास के रास्ते पर ले जाना है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है सर, और हमारे झारखंड राज्य की बात अगर कहें तो यहाँ उग्रवाद की समस्या बड़े दिनों से चली आ रही है। इसमें बहुत सारी सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं अभी भी उग्रवाद का सफाया नहीं हो सका है। आपको क्या लगता है कि उग्रवाद की समस्या कैसे उत्पन्न होती है, क्या वजह है उसकी?
1: देखिए, जब हम लोग अंदर के हिस्सों में जाते हैं, कई सारे गांवों में जाते हैं, तो देखते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, इन चीज़ों का जो क्रिमिनल्स हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो डेवलपमेंट इसका बहुत बड़ा काट होगा मेरे ख्याल से। अगर लोग, जो डेवलपमेंट है वो आंतरिक कोनों तक जाएगा, अंदर तक पहुँचेगा, तो धीरे धीरे ये जो समस्याएं हैं ये कम होगी। और उसके अलावा सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से ऑपरेशंस चलाना और पुलिस जो कार्रवाई करती है वो कार्रवाई पैरेलल चलता रहे, तो धीरे धीरे ये समस्याएं कम ही होंगी
0: जी। और सर, आपको क्या लगता है कि अगर मुख्य धारा से जोड़ने की बात अगर उठाई जाए, जो लोग मुख्य धारा से भटक चुके हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, हमारा तो ये कहना है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज में जो नेता हैं, समाज में जो बुद्धिजीवी हैं और जो लोग विकास के रास्ते पर चल चुके हैं और दुनिया को देख चुके हैं, वो लोग ऐसे लोगों को भटकने से बचा सकते हैं जो गलत राह पर जा रहे हैं। बाकी पुलिस और प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी रहती है कि हम लोग अंदर से अंदर तक गांवों तक जाएं, लोगों से मिले जुलें, उन्हें बताएं कि वो बाहर आएं, देखें दुनिया में क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसको समझने का प्रयास करें। तो प्रशासन और पुलिस को भी इस दिशा में और भी कई सारे काम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके। और समाज के जो लोग हैं उनका एक बहुत ही अहम रोल है कि उन लोगों को सही दिशा दिखाना और प्रशासन से और सहयोग लेना, पुलिस से और सहयोग लेना और इसको निकाल कर लोगों तक पहुंचाना। तो सबका एक सहयोग होगा तभी जाकर इस तरह की समस्याओं का अंतिम समाधान निकल पाएगा।
0: जी सर, अब मैं बात करूंगी आमजन की। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपनी समस्या पुलिस के सामने रखने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या तो वो डर कहें या संकोच कहें, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, पुलिस का डर तो सही बात है, कई लोगों को थाने जाने में भी डर लगता है, ऐसा हमने भी देखा है, सुना है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो डर लगता था हमें पुलिस वालों से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन उनकी मदद के लिए बना है, उनकी सेवा के लिए बना है। उन्हें कोई भी परेशानी हो तो वो जरूर आएँ पुलिस के पास और प्रशासन के पास, और यदि उनकी समस्याएँ सॉल्व नहीं होती है, निचले स्तर पर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो वरीय अधिकारियों से वो जरूर मिले ताकि हम लोग उनकी समस्याओं का जिस तरह से भी हो निदान कर पाएँ, जो भी पॉसिबल हो हम लोग उसको कर पाएँ। तो जितना वो हम लोगों से जुड़ेंगे हम लोग के लिए उतना आसान होगा कि हम उनकी समस्याओं को समझें, और हमारी यही अपील होगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और अपनी समस्याओं को रखें।
0: सर, आप अपनी ओर से माताओं और बहनों को विशेष तौर से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, महिलाओं का सुरक्षित रहना मेरे अनुसार बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी समाज की सुरक्षा के लिए। 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है, और महिलाएं अगर सुदृढ़ और सुरक्षित होंगी तभी हम किसी समाज को या किसी शहर को सुरक्षित मान सकते हैं। कई सारी मुहिमें भी चलाई गई हैं, पुलिस ने कई सारी मुहिमें चलाई हैं कि कॉलेजेस में, आसपास और कहीं भी महिलाओं को कोई समस्या होती है तो उसका हम लोग निदान करते हैं। तो महिलाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों अगर कोई समस्या होती है तो जरूर प्रशासन के सामने रखें। आपके लिए महिला थाना बनाया गया है।

0: महिला थाना में आप जाकर जो समस्याएं आप पुरुषों के सामने नहीं रख पाते हैं अच्छी तरीके से, वहां महिला पदाधिकारियों से मिलकर रखें। और किसी तरह की अगर इमीडिएट आपको सिक्योरिटी या सुरक्षा या किसी तरह की परेशानी होती है तो डायल 100 का प्रयोग करें और 100 डायल में अपनी समस्या रखें ताकि आप तक कोई अफसर, पुलिस अफसर पहुंच सके और आपकी परेशानियों को जान सके।
1: सर, एक और गंभीर समस्या हमारे झारखंड राज्य की है और वो है पलायन की। लोग, चाहे वो बच्चों का हो, किशोरावस्था में बच्चों का हो या फिर युवावस्था के लोग हों, कई बार देखा जाता है कि दलालों के जरिए या फिर खुद स्वयं माता पिता भी बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं, या वो गरीबी कहे या शिक्षा कहे या किसी वजह से। तो आप इस पलायन को रोकने के लिए आप क्या अपनी ओर से सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, तो जो पलायन हो रहा है, जनरली गरीबी या अभाव में लोग ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर कमाने के लिए भेज देते हैं। तो सरकार भी इवन प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है वो हमारे स्टेट में जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पर काम करें और बाहर ना जाएं, और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और धीरे धीरे रोजगार जब जनरेट होगा तो लोग खुद ही बाहर जाना कम करेंगे। बाकी अगर किसी दलाल के माध्यम से गलत तरीके से किसी को बाहर ले जाया जा रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। हमारे यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, अलग से उसका थाना बना हुआ है जहां अफसर बैठते हैं और ऐसे मामलों की तहकीकात करते हैं। तो इस तरह के अगर कोई भी मामले लोगों के पास आते हैं तो वो इसकी जानकारी आहतु थाना में दें ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सके, और साथ ही साथ सरकार का जो प्रयास हमेशा रहेगा रोजगार की तरफ, वो भी इन मामलों को कहीं ना कहीं डील करेगा।
1: सर, कई बार देखा जाता है कि लोग थाने में जाते हैं अपनी शिकायतों को लेकर या समस्या को लेकर, उनकी तरफ से ये बातें भी सुनने को आती हैं कि जब हम अपनी शिकायतें दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ पुलिस अफसर हमारी बातों को ध्यान नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में वो, अगर उस थाने में अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जा सकते हैं?
0: देखिए, थाना में कई बार कुछ शर हो सकता है कि किसी की बात को ठीक से नहीं सुन रहा हूँ, शिकायतें कभी कभी आती भी हैं। तो उस तरह के अफसरों को, थाना प्रभारियों को तो डायरेक्टली इसको डील करने के लिए कहा जाता है, आप थाना प्रभारी से मिलें, अपनी बात रखें। थाना प्रभारी से अगर आपको कोई शिकायत है, आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, तो आप वरीय पदाधिकारियों में DSP बैठते हैं हर एक सब डिवीजन के लिए, और उसके ऊपर SP रैंक के ऑफिसर बैठते हैं, तो आप उनसे जरूर मिलें ताकि हम लोग भी आपकी समस्याओं को समझ सकें, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो हम लोग उसको डायरेक्टली डील कर सकें। और यदि कोई भी अफसर किसी के साथ कुछ गलत करता है या गलत तरीके से व्यवहार करता है तो हम लोग उसके लिए भी कार्रवाई करते हैं।
1: सर, पुलिस और यानी प्रशासन और आम जन के बीच भागीदारी और सामंजस्य बिल्कुल अच्छी बनी रहे और उनके बीच एक पारदर्शिता रहे, इसके लिए आप अंत में हमारे जो श्रोता अभी रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन हर कदम में आपके साथ चलने को तैयार है। आप अगर एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। बस आप अपनी बातों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें और चीज़ों को और भी पारदर्शी बना सकें। उसके अलावा कोई भी अगर समस्या हो और कोई भी आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हो तो आप डायल 100 का इस्तेमाल जरूर करें।
1: सर, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बहुत ही काफी विस्तार से सारी बातें बताई कि किस तरह हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हमारी बातें हो रही थी पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार से, और अब इस बातचीत के बाद श्रोताओं, आइए आपको सुनवाती हूँ एक गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम आओ साथ चले में। आज कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही हैं मुख्य धारा से भटकाव के संबंध में। श्रोताओं, मुख्य धारा से भटकाव समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी है, इसके लिए प्रशासन की ओर से सफल प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए इन्हीं विषयों पर अब हम बातचीत करते हैं श्री अनीश गुप्ता जी से। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि मुख्य धारा से भटकाव आखिर क्यों हो जाता है, क्या वजह है इसकी, और किसे हम मानते हैं कि मुख्य धारा से अमुक युवक या युवती या कोई किशोर भटक चुका है।
1: यहाँ पे जो लोग ऐसे संगठन में चले जाते हैं जो कि झारखंड सरकार, भारत सरकार द्वारा अनलॉफुल घोषित किए गए हैं और जिनके द्वारा आपराधिक कृत किए जाते हैं और उनको उग्रवाद की श्रेणी में रखा गया है, इन संगठनों से जुड़े हुए जो युवक युवतियां होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो मुख्य धारा से भटक गए हैं। और इसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में प्रावधान भी किए गए हैं ऐसे संगठनों को बैंड, मतलब अनलॉफुल डिक्लेयर करने के लिए।
0: सर ये बात तो बिल्कुल सही है और तकरीबन अब इसको लेकर जागरूकता भी आ रही है। एक बात और है कि नक्सलवाद की क्या परिभाषा है, बहुत लोग ये भी अभी तक नहीं जान पाए हैं कि नक्सलवाद आखिर है क्या।
1: देखिए, ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड एक संघर्ष है जिसमें कि इनके द्वारा बंदूक का प्रयोग किया जाता है और सीधा सीधा इनका जो लड़ाई है वो व्यवस्था के साथ है, जिसमें कि पुलिस और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ इनकी शुरुआती तौर पे ये अपने हथियार और एम्यूनिशन इत्यादि के लिए संघर्ष करते हैं। और ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जो कि बनी थी विलय से, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी, जो कि 2004 में दोनों का विलय हुआ, उसके बाद सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ जो इस विचारधारा को प्रोपेगेट करती है, जिसके क्रियावादी इस विचारधारा के लिए संघर्ष करते हैं। और ये पूरी तरह से बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा इसको अवैध घोषित किया गया है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसमें जो इसके संगठन का प्रचार प्रसार करते हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इसकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हेतु विभिन्न धाराएं भी बनी हुई हैं।
0: सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरह की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है।
1: देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत बहुत से सेक्शंस हैं, 10, सेक्शन 10, सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 21, जिसमें संगठन जो कि बैंड घोषित किए गए हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके क्रियावादियों को संरक्षण देते हैं या उनकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, सभी को इन अलग अलग सेक्शंस में कड़ी से कड़ी सजा के धाराएं दी गई हैं, जिसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।
0: सर ये भी देखा गया है कि जब मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कोई युवक या युवती करते हैं कि हम मुख्य धारा से जुड़ कर रहें, समाज के बीच रहें, परिवार के बीच रहें, तो वैसे में सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी हैं जैसे आत्मसमर्पण नीति वगैरह, तो आत्मसमर्पण नीति क्या है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: देखिए, झारखंड राज्य काफी लंबे समय से ये नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, जिसके चलते बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है, बहुत से जो मासूम युवक युवतियां हैं इस विचारधारा की चपेट में आए हैं और समाज से भटक गए हैं। ऐसे भटके हुए युवक युवतियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही होलिस्टिक और जिसे बोला जाएगा पूरा रिहैबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है जो काफ़ी कारगर हुई है। और इसकी पॉलिसी के चलते बहुत से, मतलब कि आप देखेंगे कि स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर से लेकर एरिया कमेटी मेंबर्स और उनसे नीचे के स्तर से भी जो इनके क्रियावादी हैं वो सरेंडर किए हैं। ये पॉलिसी उनको न केवल सरेंडर के समय आर्थिक प्रोत्साहन देती है बल्कि उनके पूरे परिवार के रिहैबिलिटेशन के लिए, जैसे उनके लिए शहरी क्षेत्र में आवासन हेतु ज़मीन की व्यवस्था करवाना, निशुल्क उनकी शिक्षा, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि वो किसी तरह के ट्रेड में निपुण हो सके और आगे अपने सरेंडर के बाद जीवन में एक कारगर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं उनको निशुल्क प्रदान की जाती हैं, इंश्योरेंस सरेंडर्ड जो क्रियावादी है उसके लिए, उसके सभी डिपेंडेंट्स के लिए भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था इस पॉलिसी के तहत की गई है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। और सर एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जब मुख्य धारा से जुड़कर रहने का प्रयास, जो मुख्य धारा से भटक चुके थे और बहुत सारी यातनाएं सहने के बाद जब वो अपने परिवार के बीच और समाज के बीच आते हैं, तो देखा गया है कि समाज वाले और परिवार वाले उन्हें अपनाने से कतराते हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, इसमें चूंकि ये सरेंडर पॉलिसी के तहत बहुत से लोगों ने पहले भी लाभ लिया है और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉलिसी का लाभ लें और जो मुख्य धारा से भटक गए हैं जाने अनजाने में, किसी के बहकावे में आकर या किसी अपनी निजी समस्या के चलते किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं, वो इसका लाभ लें। उनको इनफैक्ट जो केसेस उन पे हैं उनमें भी अधिवक्ता उनके फीस इत्यादि में भी मदद दी जाती है। और कतराने का एक कारण ये भी देखा गया है कि वो उनको एक भय रहता है कि संगठन के द्वारा उनके परिवार को या उनको हानि पहुंचाई जा सकती है, तो उसमें उनको सुरक्षा प्रदान करने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि यदि वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं तो शहरी क्षेत्र में जहाँ पे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सरकार के द्वारा 4 डेसिमल तक जमीन भी उनको गृह निर्माण के लिए दी जाती है।
0: सर मैं ये जानना चाहूंगी कि पुनर्वासित करने वाली जो योजना है इसमें क्या उम्र वर्ग को बांटा गया है या जितने भी आत्मसमर्पण कर रहे लोग हैं उन सबों के लिए है?
1: देखिए, इसमें कोई एज के आधार पर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। जो सीपीआई माओविस्ट में अलग अलग रैंक होल्ड करते हैं, जैसे कि चूंकि ये एक संगठन है, इसका अपना एक संगठनात्मक ढांचा है जिसमें कि सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, आपका स्पेशल एरिया कमिटीज हैं, रीजनल कमेटी है, जोनल कमेटी है, एरिया कमेटी है, तो हर एक लेवल पे जो क्रियावादी हैं उनके लिए जो पुरस्कार घोषित किया गया है उसके रैंक के हिसाब से उतना पुरस्कार की राशि भी उसको सरेंडर के टाइम में दी जाती है। उसके अलावा सरेंडर प्रोत्साहन जो है उसमें भी कम से कम 2.5 लाख का जो है वो शुरुआती तौर पे उसको सरेंडर के समय में पहली किस्त में 50,000 रुपये और उसके बाद एक एक वर्ष में 1 लाख रुपया दिया जाता है। और रैंक के हिसाब से ही उसमें जो आर्थिक लाभ है, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि उसका जो उसमें रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड है वो उसके रैंक के, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितना वो सक्रिय रहा है उसके आधार पर डिक्लेयर होता है, तो वो राशि उसको उसके रैंक के हिसाब से दी जाती है। अन्य जितने भी लाभ हैं वो सभी जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जो सरेंडर करना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध है।
0: सर रेडियो के माध्यम से जो श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, विशेष तौर से हमारे ग्रामीण भाई बहन जो बेहद भोले भाले और शहरी वातावरण से वाकिफ नहीं है, वैसे लोगों को मुख्य धारा से जुड़ कर रहने के लिए और विकास हेतु तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे भाई बहनों से यही आग्रह करूंगा कि माओवादी जो या नक्सली जो हैं ये एक मुखौटा ओढ़कर आते हैं, उनकी समस्याओं पे उनको मंथन करवाते हैं और उनको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका अंतिम चरण या तो जेल है या मुठभेड़ में मारा जाना है। ऐसे जो भी संगठन हैं जो कि इस तरह से उनको प्रशासन व्यवस्था और उनके समाज के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका विरोध करें, उनके बहकावे में ना आएं और अपने निकटतम जो थाना है, ब्लॉक हैं और अन्य जो सरकारी एजेंसीज उपलब्ध हैं उनसे संपर्क करें और सरकार और जो पुलिस प्रशासन है ये आपकी हर पॉसिबल सहयोग और सहायता करें।
0: सर अंत में जो श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आपके मार्फत उन तक ये संदेश पहुंचे कि किस तरह वो विकास हेतु अपना योगदान कर सकते हैं और कैसे जागरूकता एक दूसरे के बीच ला सकते हैं।
1: देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड सरकार की एक बहुत ही बढ़िया एक सरेंडर पॉलिसी है, जिसको युवक अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, उनके जानकारी में कोई भी ऐसे युवक युवती हैं जो मुख्यधारा से भटके हुए हैं, उन तक इस पॉलिसी को ज़रूर लेकर जाएं। और कई ऐसे क्षेत्र जहां पे उग्रवाद की समस्या रही है, सरकार के द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन क्षेत्र के ग्रामीणों को सीधे दिया जा रहा है। और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत भी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पे जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि सड़क है, पुल पुलिया है या और अन्य कौशल विकास की योजनाएं हैं, जिससे कि हमारे जो यूथ है वो लाभान्वित हो सकते हैं, वो उसका ज़रूर लाभ उठाएं और किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से संपर्क कर वो इन सब योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं।
0: सर, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बेहद गंभीर विषय जो नक्सलवाद का है और सुरक्षा और विकास, इन सारे विषयों के बारे में विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आज हमारे राष्ट्र, समाज एवं राज्य के समक्ष विकास एक अहम मुद्दा है, लेकिन विकास हेतु विकास के मार्ग में कोई बाधा ना आए, इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। आज उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इससे निपटने के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक योजनाओं को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। तो श्रोताओं, इस हेतु आमजन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज, अपने गांवों में लोगों के सुख दुख में भाग लें, उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर रहने के लाभ के बारे में समझाएं, आपस में समस्याओं का आदान प्रदान कर इसका निदान ढूंढें, प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं ताकि लोग आपस में अपनी बातों को साझा कर लाभ उठा सकें। आज हमारी बातें हुई कैसे हम समाज की मुख्यधारा से जुड़कर रहें और अगर हम में भटकाव आ भी गया हो तो किस प्रकार निडर होकर हम फिर समाज की मुख्य धारा में वापस लौट सकते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु बनाई गई योजनाओं का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम अवसर चलने का वक्त अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी चर्चा, विकास हेतु आमजन की भूमिका और भेंट वार्ता भी आपने सुनी, मुख्य धारा से जुड़ने में आमजन का योगदान। भेंट वार्ताकार थे हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार और इनसे बातचीत की थी सिंधु मिश्रा ने। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की और प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं विनीता और मेरे साथ है
1: मैं हूँ रचना।
0: आप सबको हमारा जोहार
1: नमस्कार।
0: और रचना कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं?
0: एकदम ठीक। और थोड़ी सी राहत हो चुकी है ना?
1: बहुत राहत हो चुकी, थोड़ी सी नहीं, बहुत राहत है।
0: तो काफी अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए जानकारियों से भरे इस प्रोग्राम में आगे बढ़े, उससे पहले एक खूबसूरत सा सॉन्ग।
1: बिल्कुल।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी बातों के साथ करते हैं, क्यों रचना?
7: बिल्कुल, अच्छी बात है हो तो दिन भी आपका अच्छे से बीतेगा।
6: बिल्कुल, तो बताइए, जिंदगी को कहते हैं ना खुल

0: मिलकर जीने के लिए छोटा सा उसूल बना लेना चाहिए। रोज कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही, हमें अच्छी बातें ही जीवन में याद रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बुरी बातें याद रखते हैं।
0: सही सही कहा।
1: ये होता है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छी बातें याद रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और अगर लगे कि कुछ बुरा हो रहा है तो उसे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी।
1: बहुत सही, बिल्कुल सही कहा।

0: तो रचना, अब कुछ बातें मौसम की करते हैं।
1: मौसम के बारे में बात करना तो जरूरी है, क्योंकि अभी मौसम का जो मिजाज है ना, बदल चुका है।
0: बिल्कुल, जहां गर्मी ने, चढ़ती गर्मी ने हमें डरा दिया था, अब लोगों को सुकून सा आ गया है।
1: बिल्कुल, जो भी अभी मौसम बदला है और बारिश हो रही है बीच से, उससे तापमान में काफी गिरावट आई है और अच्छा मौसम भी हो गया, लोगों को काफी राहत भी मिली
0: बिल्कुल,
1: है।
0: और अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार।
1: मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि ये जो मई महीना है इसमें अच्छी बारिश होगी, मतलब काफी बारिश होने
0: काफी
1: की
0: बारिश
1: संभावना
0: होगी,
1: होने
0: और
1: संभावना है।
0: रविवार को यानी कि कल रांची के कुछ भागों में तो ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश हुई है।
1: और ये ओलावृष्टि काफी बड़ी भी थी, उससे काफी नुकसान भी हुआ है ऐसा कहा जा रहा है,
0: कहा
1: बताया
0: जा
1: जा
0: रहा
1: रहा
0: है
1: है।
0: ये बेमौसम की बरसात होने से किसान भाइयों को तो नुकसान हो ही रहा है, जिससे कि सब्जियों और फलों को काफी नुकसान पहुंचा है उनकी
1: और
0: तो।
1: हाँ, ये बातें हैं भी। और देखो, इतनी हवा बारिश हो रही है ना, तो जो पेड़ होते हैं, सूखे पेड़ होते हैं, वो भी कहीं गिर
0: गिर
1: जाते
0: जाते
1: हैं, तो
0: हैं।
1: ऐसे इतनी बारिश हो रही है, अगर ऐसा मौसम पहले से बताया जा रहा है तो लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए, उस समय अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, और हम सब आम और लीची का जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं, इस मौसम ने तो हमारे इंतजार पे सही में
1: पानी
0: ओलावृष्टि
1: फेर
0: कर
1: दिया है।
0: दिया। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात भी है ना, राहत मिल रही है गर्मी से, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं इस मौसम में, हम तो यही कहेंगे, और इस मौसम का भी आनंद ले।
1: इतनी जो धूप है उससे मौसम सुहाना हुआ है,
0: हाँ
1: उसका
0: हाँ
1: आनंद आप ले और साथ ही साथ हमारे साथ इस गीत का आनंद भी ले।
0: बिल्कुल।

0: और अब कुछ बातें आज के दिन की करते हैं, क्यों रचना?
1: बिल्कुल, इतिहास
0: आज
1: में क्या हो रहा है वो
0: हाँ
1: जानना भी जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: 11 मई यानी कि साल का 131वां दिन है आज, और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं दर्ज है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज ही के दिन 1752 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी।
1: और 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संघर्ष हुई थी। 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत कर दी थी।
0: और 11 मई मतलब आज ही के दिन 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया था। और आज ही के दिन 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था।
1: और आज ही के दिन 1988 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था। और 1995 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु
0: और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो रचना और भी बातें हम बताएंगे आज के दिन की, पर उससे पहले
1: सुन लेते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: जी हाँ, बातें हो रही हैं आज के इतिहास की। तो आज ही के दिन 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का फैसला लिया था। और इसी साल यानी कि 1998 में ही यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना था।
1: और आज के दिन 2010 में भारत की आबादी 1 अरब पर पहुंची थी, और नई दिल्ली में इसी दिन एक बच्ची ने जन्म लिया था जिसे देश का 1 अरबवां नागरिक करार घोषित किया गया था।
0: बिल्कुल।
1: और आज के दिन 2008 में न्यूयॉर्क के कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार कर लिया था।

0: हाँ, तो रचना, आपने अभी जो बताया कि 2000 में भारत की आबादी 1 अरब पर पहुंच गई थी, और जिस बच्ची का जन्म हुआ था उस बच्ची का नाम आस्था था,
1: बड़ा ही
0: और वो
1: खूबसूरत नाम था।
0: काफ़ी फेमस हुई है ना। अभी भी आप अगर सर्च करोगे तो उस बच्ची का नाम ज़रूर मिलेगा। तो अब जन्मदिन की बातें भी थोड़ी सी कर लेते हैं, है ना।
1: तो आज ही के दिन 1918 में मृणालिनी साराभाई, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी, उनका जन्म हुआ था। और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: और आज ही के दिन 1933 में भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक सागर सरहदी का जन्म हुआ था। उन्होंने कभी कभी चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी थी। तो क्यों ना उनके फिल्म का एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो बात हो रही है आज के इतिहास की, तो अब दोस्तों आपको बता दें कि आज का दिन किस वजह से भी है खास। तो आज के दिन यानी 11 मई को ही हर वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षणों और भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की याद दिलाता है। ये दिवस भारत की आत्मनिर्भरता, नवाचार और इंजीनियरिंग क्षमता को समर्पित है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित किया था।
1: बिल्कुल, और ये दिन भारत के आत्मनिर्भर भारतीय अभियान को मजबूती देने वाली तकनीकी को उजागर करता है, और साथ ही ये दिन देश के तकनीकी विकास की नींव रखने वाले दूरदर्शियों को श्रद्धांजलि देने और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसका उपयोग करने का आह्वान भी करता है। तो रचना, आज और हमारे पास तो समय नहीं है कि हम और बातें करें, क्योंकि वक्त हो गया है। तो अब चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि दुनिया में अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, और छोड़ना तो और भी मुश्किल होता है, और अगर मिल गए तो उन्हें भूल जाना और मुश्किल। तो हमें क्या करना चाहिए कि अच्छे और सच्चे लोग अगर आपको मिले हैं तो अपनी ज़िंदगी से उन्हें जाने मत दीजिएगा, प्यार से संभाल कर रखिएगा, है ना?
0: बिल्कुल। और इन बातों के साथ ही जोहार रांची में आज बस इतना ही। अब अपनी दोस्त रचना
1: और विनीता
0: को दीजिए इजाजत।
1: जोहार,
0: जोहार,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्लयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं विश्वेशं च शिवाले। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating.

0: participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026. And Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important, the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है, इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं, वहां पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार है वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में। कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे

0: जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parva, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honourable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहां पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहां पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा, सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे, वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहां पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed.

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च।

विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तः।

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं, इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of Rs. 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal, Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in

0: which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है. आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन.

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT द रेड एंड व्हाइट Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणवक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंडे से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव है। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिसपे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और और साथ ही जोश भी भर दिया है और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं।

0: लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th of May 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस द होप दैट द टेम्पल विल लिव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ही ऑल्सो सेड that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream, but taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधा रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव

0: का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसे भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया में खो जाए, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाए। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक।

0: जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा और सूर्य लोक जिसे सह लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं तो पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्राण। जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है।
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है। अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की। तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है, बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वयंभू

0: ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को, तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यहाँ आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतमतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य हैं, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम अमीशम भजे लियते यत्र विश्वम, आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप दिया था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाठक ने बार बार जीता है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे, और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था,

साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की प्रगति आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग में अलग अलग जीवों के संकल्प में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी भीमदेव, कभी राजा महिपाल प्रथम, कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान

मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है।

0: साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ी अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: दी Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Hara Hara Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति प्वाइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा के साथ और एसवाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन के आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगी संजीव कुमार लाल को दी जमानत। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मांगा मंतव्य। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत 17 से अधिक पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत मिलने के बाद आलमगीर आलम लगभग 2 वर्ष के बाद जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव कुमार लाल के बेल को भी स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने रांची नगर निगम की जनगणना 2027 की तैयारियों की सराहना की है। निदेशालय ने रांची नगर निगम की सक्रियता, कार्यशैली और समयबद्ध कार्य निष्पादन की प्रशंसा की है। झारखंड जनगणना संचालन के निदेशक प्रभात कुमार ने नगर आयुक्त सुशांत गौरव को पत्र भेजकर कहा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों में रांची नगर निगम ने राज्यभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि यह सराहना हमारे कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी गठित होने के साथ ही कांग्रेस संगठन में आंतरिक असंतोष जारी है। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पार्टी के अंदर उचित पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मैसेज दिया है कि राजनीति में सबकी आकांक्षाओं को पूरा करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किल है।
2: आदमी की अपनी आकांक्षाएं रहती है, सबकी आकांक्षा किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। करने वाला तो कुछ लीडर ही रहते हैं जो इन निर्णयों को लेते हैं, नेता ही रहते हैं, उनके माथे पर यह आरोप आता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
0: वहीं नवनियुक्त महासचिव और वरिष्ठ दलित नेता निरंजन पासवान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने संवेदनशीलता के साथ नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया है।
3: पार्टी ने विभिन्न प्रकार के सोच विचार के लोग हैं, प्रभारी जी ने जो सोच समझ सबको काम भी बांटा है। लोगों को थोड़ा समझना होगा, पार्टी के अंदर रहकर हमको कोई काम करना है तो काम करेंगे। अब इसमें कुछ लोग नाराज है तो उसके प्रति भी सोचा जाएगा।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मंतव्य मांगा है। उन्होंने लिखा है कि भाषा विवाद समाज और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा है, ऐसे में भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट नियमावली में शामिल करने पर पार्टी का निर्णय जानना आवश्यक है। झारखंड विधानसभा की प्राकलन समिति ने दुमका में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समिति ने योजनाओं के पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर सभापति सहलिट्टी पारा, विधायक हेमलाल मुर्मू, बोरियो विधायक लुम्बिन हेम्ब्रम, घाटशिला विधायक समीर मोहंती और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित कई

0: जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया निवासी अंशुमान कुमार सिंह ने यूपीएससी की भारतीय वन सेवा की परीक्षा में देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है। आकाशवाणी से बातचीत में अंशुमान कुमार ने अपनी सफलता के लिए अपनाई गई रणनीति साझा की।
1: इसके तीन फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अलग अलग फेजेस से अलग अलग स्ट्रेटजी है प्रिपेयर करने का। तो मेरी कुछ कोर स्ट्रेटजी जो तीनों फेज में मुझे काम आया, उसमें ये था कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें एंड उनको मल्टीपल टाइम रिविजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें। इंटरव्यू के लिए आप अपने पे काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें और आप मेंटली रिलैक्स रहें।
0: राजधानी रांची के कोकर स्थित खुरहा टोली से 18 माह की लापता बच्ची अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रांची पुलिस ने बच्ची से जुड़ी जानकारी और सुराग देने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जमशेदपुर पुलिस ने बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांधीनगर बस्ती में छापेमारी के दौरान संतोष सिंह को पकड़ा गया। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी और अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
2: विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास अलग अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है, जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है और 4 मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंडिकेट है, इसमें कई अन्य लोग भी शामिल है जिनके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है और आने वाले दिनों में उनको रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा।
0: पलामू जिले की पुलिस ने आपराधिक गिरोह में शामिल लोगों की सूची तैयार की है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए गए हैं।
3: हमने अलग अलग कांड के तरीके से जो लिस्टिंग की है, जिसमें कि जैसे अपराध जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एनडीपीएस या अन्य जो भी अपराध है, इन सभी अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है। इन अपराधियों के विरुद्ध में निगरानी प्रस्ताव खोलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके पश्चात इनके खिलाफ पीसीसी की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई, थाना हाजिरी की कार्रवाई उसको स्टार्ट किया जाएगा।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची के बेड़ो प्रखंड के टेंगरिया में आयोजित 21 पढ़ा जेठ जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जत्रा केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी समाज की परंपरा, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 1000 की गिरावट के साथ 76,300 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 233 अंक गिरकर 23,942 पर आ गया है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक समेत कुल 17 पदक हासिल किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम में झारखंड की संदीपा, सुगन, खिली, पुष्पा, श्रुति और नीलम का चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगी संजीव कुमार लाल को दी जमानत। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मांगा मंतव्य। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत 17 से अधिक पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसमें आज आप सुनेंगे सिप्रा बोस से ठुमरी और दादरा।

0: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आइए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पे संपर्क करें, 9863-47-5217। नंबर एक बार फिर नोट करें, 9863-47 527।
1: आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, और आइए अब सुनते हैं दादरा सिप्रा बोस से।

0: अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना ठुमरी और दादरा सिप्रा बोस से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy.
4: laughs> अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
5: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल हरिहरन की आवाज में।

0: In meeting today, we have taken 6 major decisions, including the transfer of land to the BSF. The land will be transferred to the MHA within the next 45 days. Once this is accomplished, the BSF will complete the border fencing and the ongoing issue of illegal infiltration will be resolved within a short period.
1: Illegal infiltrators ka jo hamari problem chal raha hai, ye bhi kuch din ke andar resolve ho jayega.
2: Mr. Rodhikari announced the implementation of the centre's flagship Ayushman Bharat Health Scheme and several other schemes of the Union Government in the state. The Cabinet also approved a proposal for a 5-year extension in the age limit of school job applicants. In the newly elected Legislative Assembly of Tamil Nadu today, more than 100 members were sworn in after the pro-tem Speaker Karupaya invited the members. Chief Minister C. Joseph Vijay and the Cabinet members, Opposition Leader Udayanidhi Stalin, former Chief Ministers Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam took the oath today. Prominent members Premalata Vijayakanth, Soumya Anbumani and leaders of the alliance also took oath. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. The Prime Minister made the 7 appeals to the nation while addressing a function in Hyderabad yesterday. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है, उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
2: इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज आल्सो require foreign exchange in view of the ongoing global uncertainties. He was addressing the CII Annual Business Summit in New Delhi today.
4: We as citizens, as our Prime Minister has asked all of us to, can reduce our expenditure on everything that requires foreign exchange to be spent. And in our lives, in our own ways of working, we can identify whatever we can do to preserve the foreign exchange. Simultaneously, we must also earn the foreign exchange more and more. Both things have to go in parallel. So I'll request all of you to take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The centre has notified the implementation of the Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, VBG Ramji. The Act will be rolled out nationwide from the 1st of July this year. The Rural Development Ministry said the Act, which guarantees 125 days of wage employment every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
5: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: To encourage greater participation of women workers, the Vikasit Bharat G. Ramji Act incorporates an important provision for childcare support at work sites. A woman worker will be appointed to take care of the children wherever five or more children below the age of five are present. Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting of the informal empowered group of ministers constituted to monitor the situation in West Asia. The meeting was held to review the evolving situation in the region. Union ministers Jagat Prakash Nadda, Hardeep Singh Puri, Sarbananda Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh and K. Ram Mohan Naidu attended the meeting. In Himachal Pradesh, six people were killed and four others, including two children, were seriously injured when their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district. The injured have been admitted to Tanda Medical College. Among the deceased, five were tourists from Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district in Himachal Pradesh. The accident occurred in the wee hours today. SP Chamba Vijay Saklani said it was raining heavily in the area at the time of the accident. He added that rescue and relief operations were launched immediately after the incident. Police are investigating the cause of the accident. The country's economy has stayed resilient despite global headwinds. According to an SBI research report released today, the economy is projected to grow by 6.6% in the fiscal year 2026-27. The report also estimates real GDP growth at nearly 7.2% in the fourth quarter of the last fiscal year. National Technology Day is being celebrated today. On this day in 1998, India successfully tested its nuclear bombs in Pokhran, Rajasthan. The day celebrates the country's scientific achievements, technological advancements, and growing innovation ecosystem. More from our correspondent.
6: This day serves as a reminder of the significant role that technological advancements play in the country's progress and development. It memorializes the contributions of scientists, engineers, and innovators to India's technological expertise and the launch of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. It also memorializes the sixth global nuclear test, demonstrating India's global position. National Technology Day aims to highlight the role of technology in daily life, encouraging youth interest in science and technology. The day also raises awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
3: यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
7: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
3: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
7: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
7: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
8: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
7: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
9: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
7: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है फौजी भाइयों के लिए समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजी फिल्म के गीत के साथ, सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

लगे रहो मुन्ना भाई, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, प्रणव विश्वास की आवाज में। संगीत शांतनु मोइत्रू का है और इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने।

और आइए अब सुनते हैं केसरी फिल्म का गीत बी प्राक की आवाज़ में। संगीत आर को प्रभु मुखर्जी का है और इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ जिम्मेदार खनन की आवश्यकता पर जोर दिया। नक्सल मुक्त होने के बाद अब गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ विकास की राह पर है। राज्य की गृह सचिव वंदना दादिल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 मई को इस क्षेत्र का दौरा करेंगी। वे बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना की समीक्षा और नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए बैठक करेंगी। जमशेदपुर के एग्रिको में टाटा स्टील के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी बेटे और गर्भवती बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी रविंद्र सिंह रात भर शवों के साथ घर में रहा और सुबह खुद ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

रामगढ़ पुलिस ने गोला थाना क्षेत्र में चल रही अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि एसआईटी की छापेमारी में 250 पेटी शराब, भारी मात्रा में स्पिरिट और नकली स्टिकर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों में सघन जांच अभियान चलाया। राजनगर में छापेमारी के दौरान कई संस्थानों में हेल्थ प्रोफाइल और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। हेंसल स्थित आयुषी क्लिनिक अवैध रूप से संचालित पाया गया। विभाग ने दोषी संस्थानों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित कई जिलों में अगले 24 घंटों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की और वज्रपात की आशंका जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है।

0: कार्यक्रम आवसा चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, सुरक्षा चाहे वह हमारे देश की हो, राज्य, समाज या फिर खुद की, बेहद जरूरी है। सुरक्षा दुरुस्त तभी रह सकती है जब प्रशासन चुस्त और सजग हो, लेकिन साथ ही साथ आम जन की सजगता भी सुरक्षा हेतु उतनी ही जरूरी है। श्रोताओं, हमारे यहाँ उग्रवाद की भी गंभीर समस्या है। इसे दूर करने एवं स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हमारे प्रशासन की अहम भूमिका है। मुख्य धारा से हमारे भटके हुए लोगों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु सरकार द्वारा कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि समाज से भटके लोगों को नई दिशा और दृढ़ता प्रदान की जा सके। श्रोताओं, सुरक्षा और भटकाओ, इन्हीं विषयों पर आज हमने बातचीत की है पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार से। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम आवसा चले में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार
0: सर, जहाँ तक प्रशासन और आम जन की बात है, इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की बात होती है जब हमारी सुरक्षा की बात खड़ी होती है, और साथ ही साथ विकास के लिए भी प्रशासन और आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी हो जाती है, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जहाँ तक आमजनों को जोड़ने की बात है, विकास और सुरक्षा कोई भी मुद्दा हो, आमजन जब जुड़ेंगे तो उसे एक अलग तरह का स्ट्रेंथ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चलता है तो प्रशासन 10 कदम चलने को तैयार होता है, पर प्रशासन को स्ट्रेंथ लोग ही देते हैं। कभी सुरक्षा के मामले में कभी दंगा होता है, कभी कम्युनल इश्यूज आ जाते हैं, कई बार तो समाज के ही कुछ लोग खड़े होते हैं जो पुलिस को सपोर्ट करते हैं, और पुलिस का बल बढ़ता है और फिर पुलिस उन चीज़ों को डील कर पाती है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर पाती है। क्राइम जैसे इशूज़ में भी लोग खबर देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को कहीं ना कहीं कि किस तरह के अपराधी कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उस खबर के आधार पर कई बार बड़ी उपलब्धियां होती है, और वो समाज के लिए और प्रशासन के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकास और सुरक्षा के मामले में लोगों को जोड़ना एक अहम चीज है हमारे लिए।
0: ये तो बात बिल्कुल सही है सर, और देखा गया है कि विकास के मार्ग में अपराध बहुत बड़ा रुकावट बनकर आता है, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये तो अपराध और किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म भी कहीं ना कहीं विकास को रोकता है। हम देखते हैं कई सारे स्टेट्स हैं, पहले झारखंड भी नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ करता था, तो नक्सलिज्म के कारण सड़क का डेवलपमेंट, एजुकेशन के एरिया में डेवलपमेंट, और भी कई हिस्सों में पुलिस और प्रशासन, सिविल प्रशासन भी अंदर के हिस्सों में पहुंच नहीं पाती थी। कई सारे जंगल के हिस्से हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग जाने से डरते थे, तो जहाँ पे भी क्राइम ज़्यादा है, अगर क्राइम ज़्यादा है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे आपके एरिया में आके। बड़े जो लोग, बड़ी जो कंपनियाँ हैं, वो आके क्रिमिनल से डरेंगी, उन्हें पैसे देंगी, तो जो माहौल होता है वो नहीं बन पाता है विकास का। तो क्राइम और एक्सट्रीमिज्म से डील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर किसी भी समाज को विकास के रास्ते पर ले जाना है।

0: ये बात तो बिल्कुल सही है सर। और हमारे झारखंड राज्य की बात अगर कहें तो यहाँ उग्रवाद की समस्या बड़े दिनों से चली आ रही है। इसमें बहुत सारी सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं अभी भी उग्रवाद का सफाया नहीं हो सका है। आपको क्या लगता है कि उग्रवाद की समस्या कैसे उत्पन्न होती है, क्या वजह है उसकी?
1: देखिए, जब हम लोग अंदर के हिस्सों में जाते हैं, कई सारे गांवों में जाते हैं, तो देखते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, इन चीज़ों का जो क्रिमिनल्स हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फ़ायदा उठाते हैं,
0: जी
1: और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो डेवलपमेंट इसका बहुत बड़ा काट होगा मेरे ख्याल से। अगर लोग जो डेवलपमेंट है वो आंतरिक कोनों तक जाएगा, अंदर तक पहुँचेगा, तो धीरे धीरे ये जो समस्याएं हैं ये कम होगी। और उसके अलावा सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से ऑपरेशंस चलाना और पुलिस जो कार्रवाई करती है वो कार्रवाई पैरेलल चलता रहे, तो धीरे
0: जी
1: धीरे ये समस्याएं कम ही होंगी।
0: जी और सर आपको क्या लगता है कि अगर मुख्य धारा से जोड़ने की बात अगर उठाई जाए, जो लोग मुख्य धारा से भटक चुके हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, हमारा तो ये कहना है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज में जो नेता हैं, समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, और जो लोग विकास के रास्ते पर चल चुके हैं और दुनिया को देख चुके हैं, वो लोग ऐसे लोगों को भटकने से बचा सकते हैं जो गलत राह पर जा रहे हैं। बाकी पुलिस और प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी रहती है कि हम लोग अंदर से अंदर तक गांवों तक जाएं, लोगों से मिले जुलें, उन्हें बताएं कि वो बाहर आएं, देखें दुनिया में क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसको समझने का प्रयास करें। तो प्रशासन और पुलिस को भी इस दिशा में और भी कई सारे काम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके। और समाज के जो लोग हैं उनका एक बहुत ही अहम रोल है कि उन लोगों को सही दिशा दिखाना और प्रशासन से और सहयोग लेना, पुलिस से और सहयोग लेना, और इसको निकाल कर लोगों तक पहुँचाना। तो सबका एक सहयोग होगा तभी जाकर इस तरह की समस्याओं का अंतिम समाधान निकल पाएगा।
0: जी सर, अब मैं बात करूंगी आमजन की। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपनी समस्या पुलिस के सामने रखने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या तो वो डर कहें या संकोच कहें, आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, पुलिस का डर तो सही बात है, कई लोगों को थाने जाने में भी डर लगता है, ऐसा हमने भी देखा है, सुना है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो डर लगता था हमें पुलिस वालों से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन उनकी मदद के लिए बना है, उनकी सेवा के लिए बना है। उन्हें कोई भी परेशानी हो तो वो जरूर आए पुलिस के पास और प्रशासन के पास, और यदि उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं होती है, निचले स्तर पर उन्हें कोई परेशानी होती है, तो वरीय अधिकारियों से वो जरूर मिले, ताकि हम लोग उनकी समस्याओं का जिस तरह से भी हो निदान कर पाएं, जो भी पॉसिबल हो हम लोग उसको कर पाए। तो जितना वो हम लोगों से जुड़ेंगे हम लोग के लिए उतना आसान होगा कि हम उनकी समस्याओं को समझें, और हमारी यही अपील होगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और अपनी समस्याओं को रखें।
0: सर आप अपनी ओर से माताओं और बहनों को विशेष तौर से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, महिलाओं का सुरक्षित रहना मेरे अनुसार बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी समाज की सुरक्षा के लिए। 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है, और महिलाएं अगर सुदृढ़ और सुरक्षित होंगी तभी हम किसी समाज को या किसी शहर को सुरक्षित मान सकते हैं। कई सारी मुहिमें भी चलाई गई हैं, पुलिस ने कई सारी मुहिमें चलाई हैं कि कॉलेजेस में, आसपास और कहीं भी महिलाओं को कोई समस्या होती है तो उसका हम लोग निदान करते हैं। तो महिलाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों अगर कोई समस्या होती है तो जरूर प्रशासन के सामने रखें। आपके लिए महिला थाना बनाया गया है, महिला थाना में आप जाकर जो समस्याएं आप पुरुषों के सामने नहीं रख पाते हैं अच्छी तरीके से, वहां महिला पदाधिकारियों से मिलकर रखें, और किसी तरह की अगर इमीडिएट आपको सिक्योरिटी या सुरक्षा या किसी तरह की परेशानी होती है तो डायल 100 का प्रयोग करें और 100 डायल में अपनी समस्या रखें, ताकि आप तक कोई अफसर, पुलिस अफसर पहुंच सके और आपकी परेशानियों को जान सके।
0: सर एक और गंभीर समस्या हमारे झारखंड राज्य की है और वो है पलायन की। लोग चाहे वो बच्चों का हो, किशोरावस्था में बच्चों का हो या फिर युवावस्था के लोग हो, कई बार देखा जाता है कि दलालों के जरिए या फिर खुद स्वयं माता पिता भी बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं, या वो गरीबी कहे या शिक्षा कहे या किसी वजह से। तो आप इस पलायन को रोकने के लिए आप क्या अपनी ओर से सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, तो जो पलायन हो रहा है, जनरली गरीबी और अभाव में लोग ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर कमाने के लिए भेज देते हैं। तो सरकार भी इवन प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है वो हमारे स्टेट में जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं पर काम करें और बाहर ना जाएं। और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और धीरे धीरे रोज़गार जब जनरेट होगा तो लोग खुद ही बाहर जाना कम करेंगे। बाकी अगर किसी दलाल

0: के माध्यम से गलत तरीके से किसी को बाहर ले जाया जा रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। हमारे यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, अलग से उसका थाना बना हुआ है जहाँ अफसर बैठते हैं और ऐसे मामलों की तहकीकात करते हैं। तो इस तरह के अगर कोई भी मामले लोगों के पास आते हैं तो वो इसकी जानकारी अहातु थाना में दें ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सके, और साथ ही साथ सरकार का जो प्रयास हमेशा रहेगा रोजगार की तरफ, वो भी इन मामलों को कहीं ना कहीं डील करेगा।
1: सर, कई बार देखा जाता है कि लोग थाने में जाते हैं अपनी शिकायतों को लेकर या समस्या को लेकर, उनकी तरफ से ये बातें भी सुनने को आती हैं कि जब हम अपनी शिकायतें दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ पुलिस अफसर हमारी बातों को ध्यान नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में वो अगर उस थाने में अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जा सकते हैं?
0: देखिए, थाना में कई बार कुछ अफसर हो सकता है कि किसी की बात को ठीक से नहीं सुन रहा हो, शिकायतें कभी कभी आती भी हैं, तो उस तरह के अफसरों को, थाना प्रभारियों को तो डायरेक्टली इसको डील करने के लिए कहा जाता है। आप थाना प्रभारी से मिलें, अपनी बात रखें। थाना प्रभारी से अगर आपको कोई शिकायत है, आपकी समस्या हल नहीं हो रही है, तो आप वरीय पदाधिकारियों में DSP बैठते हैं हर एक सर्किल, हर एक सब डिवीजन के लिए, और उसके ऊपर SP रैंक के ऑफिसर बैठते हैं, तो आप उनसे जरूर मिलें ताकि हम लोग भी आपकी समस्याओं को समझ सकें, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो हम लोग उसको डायरेक्टली डील कर सकें। और यदि यदि कोई भी अफसर किसी के साथ कुछ गलत करता है या गलत तरीके से व्यवहार करता है तो हम लोग उसके लिए भी कार्रवाई करते हैं।
1: सर, पुलिस और यानी प्रशासन और आम जन के बीच भागीदारी और सामंजस्य बिल्कुल अच्छी बनी रहे और उनके बीच एक पारदर्शिता रहे, इसके लिए आप अंत में हमारे जो श्रोता अभी रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन हर कदम में आपके साथ चलने को तैयार है। आप अगर एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। बस आप अपनी बातों को हम तक पहुँचाएँ ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें और चीज़ों को और भी पारदर्शी बना सकें। उसके अलावा कोई भी अगर समस्या हो और कोई भी आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हो तो आप डायल 100 का इस्तेमाल जरूर करें।
1: सर, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बहुत ही काफी विस्तार से सारी बातें बताई कि किस तरह हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हमारी बातें हो रही थी पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार से, और अब इस बातचीत के बाद श्रोताओं आइए आपको सुनवाती हूँ एक गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम आओ साथ चले में। आज कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही हैं मुख्य धारा से भटकाव के संबंध में। श्रोताओं, मुख्य धारा से भटकाव समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी है, इसके लिए प्रशासन की ओर से सफल प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए इन्हीं विषयों पर अब हम बातचीत करते हैं श्री अनीश गुप्ता जी से। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि मुख्य धारा से भटकाओ आखिर क्यों हो जाता है, क्या वजह है इसकी, और किसे हम मानते हैं कि मुख्य धारा से अमुक युवक या युवती या कोई किशोर भटक चुका है।
1: यहाँ पे जो लोग ऐसे संगठन में चले जाते हैं जो कि झारखंड सरकार, भारत सरकार द्वारा अनलॉफुल घोषित किए गए हैं और जिनके द्वारा आपराधिक कृत किए जाते हैं और उनको उग्रवाद की श्रेणी में रखा गया है, इन संगठनों से जुड़े हुए जो युवक युवतियां होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो मुख्य धारा से भटक गए हैं। और इसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में प्रावधान भी किए गए हैं ऐसे संगठनों को बैंड, मतलब अनलॉफुल डिक्लेयर करने।
0: सर ये बात तो बिल्कुल सही है और तकरीबन अब इसको लेकर जागरूकता भी आ रही है। एक बात और है कि नक्सलवाद की क्या परिभाषा है, बहुत लोग ये भी अभी तक नहीं जान पाए हैं कि नक्सलवाद आखिर है क्या।
1: देखिए, ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड एक संघर्ष है जिसमें कि इनके द्वारा बंदूक का प्रयोग किया जाता है और सीधा सीधा इनका जो लड़ाई है वो व्यवस्था के साथ है, जिसमें कि पुलिस और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ इनकी शुरुआती तौर पे ये अपने हथियार और एम्यूनिशन इत्यादि के लिए संघर्ष करते हैं। और ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जो कि बनी थी विलय से, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC, जो कि 2004 में दोनों का विलय हुआ, उसके बाद सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ जो इस विचारधारा को प्रोपेगेट करती है, जिसके क्रियावादी इस विचारधारा के लिए संघर्ष करते हैं। और ये पूरी तरह से बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा इसको अवैध घोषित किया गया है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसमें जो इसके संगठन का प्रचार प्रसार करते हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इसकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हेतु विभिन्न धाराएं भी बनी हुई हैं।
0: सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरह की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है।
1: देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत बहुत से सेक्शंस हैं, 10, सेक्शन 10, सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 21, जिसमें संगठन जो कि बैंड घोषित किए गए हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके क्रियावादियों को संरक्षण देते हैं या उनकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, सभी को इन अलग अलग सेक्शंस में कड़ी से कड़ी सजा के धाराएं दी गई हैं, जिसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।
0: सर ये भी देखा गया है कि जब मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कोई युवक या युवती करते हैं कि हम मुख्य धारा से जुड़कर रहें, समाज के बीच रहें, परिवार के बीच रहें, तो वैसे में सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी हैं जैसे आत्मसमर्पण नीति वगैरह, तो आत्मसमर्पण नीति क्या है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: देखिए, झारखंड राज्य काफी लंबे समय से ये नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, जिसके चलते बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई है, बहुत से जो मासूम युवक युवतियां हैं इस विचारधारा की चपेट में आए हैं और समाज से भटक गए हैं। ऐसे भटके हुए युवक युवतियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही होलिस्टिक और जिसे बोला जाएगा पूरा रिहैबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है जो काफ़ी कारगर हुई है। और इसकी पॉलिसी के चलते बहुत से, मतलब कि आप देखेंगे कि स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर से लेकर एरिया कमेटी मेंबर्स और उनसे नीचे के स्तर से भी जो इनके क्रियावादी हैं वो सरेंडर किए हैं। ये पॉलिसी उनको न केवल सरेंडर के समय आर्थिक प्रोत्साहन देती है बल्कि उनके पूरे परिवार के रिहैबिलिटेशन के लिए, जैसे उनके लिए शहरी क्षेत्र में आवासन हेतु ज़मीन की व्यवस्था करवाना, निशुल्क उनकी शिक्षा, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि वो किसी तरह के ट्रेड में निपुण हो सके और आगे अपने सरेंडर के बाद जीवन में एक कारगर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं उनको निशुल्क प्रदान की जाती हैं, इंश्योरेंस सरेंडर्ड जो क्रियावादी है उसके लिए, उसके सभी डिपेंडेंट्स के लिए भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था इस पॉलिसी के तहत की गई है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। और सर एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जब मुख्य धारा से जुड़कर रहने का प्रयास, जो मुख्य धारा से भटक चुके थे और बहुत सारी यातनाएं सहने के बाद जब वो अपने परिवार के बीच और समाज के बीच आते हैं, तो देखा गया है कि समाज वाले और परिवार वाले उन्हें अपनाने से कतराते हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, इसमें चूंकि ये सरेंडर पॉलिसी के तहत बहुत से लोगों ने पहले भी लाभ लिया है और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉलिसी का लाभ लें और जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, जाने अनजाने में किसी के बहकावे में आकर या किसी अपनी निजी समस्या के चलते किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं, वो इसका लाभ लें। उनको इनफैक्ट जो केसेस उन पे हैं उनमें भी अधिवक्ता उनके फीस इत्यादि में भी मदद दी जाती है। और कतराने का एक कारण ये भी देखा गया है कि वो उनको एक भय रहता है कि संगठन के द्वारा उनके परिवार को या उनको हानि पहुंचाई जा सकती है, तो उसमें उनको सुरक्षा प्रदान करने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि यदि वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं तो शहरी क्षेत्र में जहाँ पे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सरकार के द्वारा 4 डेसिमल तक जमीन भी उनको गृह निर्माण के लिए दी जाती है।
0: सर मैं ये जानना चाहूंगी कि पुनर्वासित करने वाली जो योजना है इसमें क्या उम्र वर्ग को बांटा गया है या जितने भी आत्मसमर्पण कर रहे लोग हैं उन सबों के लिए है?
1: देखिए, इसमें कोई एज के आधार पर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। जो सीपीआई माओवेस्ट में अलग अलग रैंक होल्ड करते हैं, जैसे कि चूंकि ये एक संगठन है, इसका अपना एक संगठनात्मक ढांचा है जिसमें कि सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, आपका स्पेशल एरिया कमिटीज़ हैं, रीजनल कमेटी है, जोनल कमेटी है, एरिया कमेटी है, तो हर एक लेवल पे जो क्रियावादी हैं उनके लिए जो पुरस्कार घोषित किया गया है उसके रैंक के हिसाब से उतना पुरस्कार की राशि भी उसको सरेंडर के टाइम में दी जाती है। उसके अलावा सरेंडर प्रोत्साहन जो है उसमें भी कम से कम 2.5 लाख का जो है वो शुरुआती तौर पे उसको सरेंडर के समय में पहली किस्त में 50,000 रुपये और उसके बाद एक एक वर्ष में 1 लाख रुपया दिया जाता है। और रैंक के हिसाब से ही उसमें जो आर्थिक लाभ है, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि उसका जो उसमें रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड है वो उसके रैंक के, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितना वो सक्रिय रहा है उसके आधार पर डिक्लेयर होता है, तो वो राशि उसको उसके रैंक के हिसाब से दी जाती है। अन्य जितने भी लाभ हैं वो सभी जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जो सरेंडर करना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध है।
0: सर, रेडियो के माध्यम से जो श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, विशेष तौर से हमारे ग्रामीण भाई बहन जो बेहद भोले भाले और शहरी वातावरण से वाकिफ नहीं है, वैसे लोगों को मुख्य धारा से जुड़ कर रहने के लिए और विकास हेतु आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे भाई बहनों से यही आग्रह करूंगा कि माओवादी जो या नक्सली

0: जो हैं ये एक मुखौटा ओढ़कर आते हैं, उनकी समस्याओं पे उनको मंथन करवाते हैं और उनको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका अंतिम चरण या तो जेल है या मुठभेड़ में मारा जाना है। ऐसे जो भी संगठन हैं जो कि इस तरह से उनको प्रशासन व्यवस्था और उनके समाज के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका विरोध करें, उनके बहकावे में ना आएं और अपने निकटतम जो थाना है, ब्लॉक है और अन्य जो सरकारी एजेंसीज उपलब्ध हैं उनसे संपर्क करें और सरकार और जो पुलिस प्रशासन है ये आपकी हर पॉसिबल सहयोग और सहायता।
1: सर, अंत में जो श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आपके मार्फत उन तक ये संदेश पहुंचे कि किस तरह वो विकास हेतु अपना योगदान कर सकते हैं और कैसे जागरूकता एक दूसरे के बीच ला सकते हैं।
0: देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड सरकार की एक बहुत ही बढ़िया एक सरेंडर पॉलिसी है जिसको युवक अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, उनके जानकारी में कोई भी ऐसे युवक युवती हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं उन तक इस पॉलिसी को ज़रूर लेकर जाएं और कई ऐसे क्षेत्र जहां पे उग्रवाद की समस्या रही है, सरकार के द्वारा फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान भी चलाया जा रहा है जिसमें कि विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन क्षेत्र के ग्रामीणों को सीधे दिया जा रहा है और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत भी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पे जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि सड़क है, पुल पुलिया है या और अन्य कौशल विकास की योजनाएं हैं जिससे कि हमारे जो यूथ है वो लाभान्वित हो सकते हैं, वो उसका जरूर लाभ उठाएं और किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से संपर्क कर वो इन सब योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं।
1: सर, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बेहद गंभीर विषय जो नक्सलवाद का है और सुरक्षा और विकास, इन सारे विषयों के बारे में विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज हमारे राष्ट्र, समाज एवं राज्य के समक्ष विकास एक अहम मुद्दा है, लेकिन विकास हेतु विकास के मार्ग में कोई बाधा ना आए इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। आज उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इससे निपटने के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक योजनाओं को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। तो श्रोताओं, इस हेतु आमजन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज, अपने गांवों में लोगों के सुख दुख में भाग लें, उन्हें मुख्य धारा से जुड़कर रहने के लाभ के बारे में समझाएं, आपस में समस्याओं का आदान प्रदान कर इसका निदान ढूंढें, प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं ताकि लोग आपस में अपनी बातों को साझा कर लाभ उठा सकें। आज हमारी बातें हुई कैसे हम समाज की मुख्य धारा से जुड़कर रहें और अगर हम में भटकाव आ भी गया हो तो किस प्रकार निडर होकर हम फिर समाज की मुख्य धारा में वापस लौट सकते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु बनाई गई योजनाओं का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम आवसा चलने का वक्त अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज के विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

के 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे।

5:30 का समय होगा कार्यक्रम श्रमिक लोग का। प्रस्तुति होंगी प्रशांत गौरव की। 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। प्रस्तुति होंगी संजीव कुमार लाल की। 6:30 का समय होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का। प्रस्तुत करता होंगे संजीव कुमार लाल।

सात बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 का समय होगा उरांव भाषा में आदिवासी अखड़ा। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रदीप कुमार। सात बजकर 45 मिनट का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:45 का समय होगा समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 का समय होगा उर्दू में समाचार। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। कलाकार होंगी सविता राय। 11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भूत बंगला के इस खूबसूरत से गीत के साथ। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने, आवाजें हैं निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की।

आइए अब सुनते हैं सैयारा फिल्म से ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने, शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है तनिष्क बख्शी ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे सरगम। सांझे सरगम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हसी तो फसी से। आवाजें हैं चिन्मयी श्रीपदा और शेखर रेजवानी की। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अब आइए सुनते हैं पति पत्नी और वो फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिखा है कुमार ने, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रात्रि केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करगट्टा। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष 30% कम बारिश के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को कम सिंचाई वाली फसलें उगाने की सलाह दी है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के करमटोली में 5 करोड़ की लागत वाले धुमकुड़िया भवन समेत 4 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण से जनजातीय संस्कृति संरक्षित होगी। राज्य में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इसे पशुपालन घोटाले जैसा बड़ा गबन बताते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने और प्रभावशाली दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रांची के कोकर से 18 माह की बच्ची के लापता होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साहू ने कहा कि अगर समय सीमा

वह बच्ची नहीं मिली तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में गुमला जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आज नगर भवन में मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों और शिक्षकों को कड़े परिश्रम को दिया है। सिमडेगा पुलिस ने गांजा तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए करीब 43 किलो गांजा जब्त किया है। एसपी श्रीकांत खोटरे ने बताया कि ओडिशा से बिहार ले जाई जा रही इस खेप के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युव वाणी में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम युव वाणी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और मैं हूँ आपकी दोस्त रंजीत
1: और मैं श्वेता।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, आज हम आपसे ढेर सारी जानकारियाँ साझा करेंगे और साथ ही कुछ प्यारे प्यारे गाने भी सुनेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।
1: बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दौलत की जो दुनिया की हर संपत्ति से ज़्यादा कीमती है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है सबसे बड़ी पूंजी अच्छा स्वास्थ्य।
0: बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हम पैसा कमाने, बड़ा घर बनाने और सफल बनने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो जीवन की कोई भी खुशी पूरी नहीं लगती है। क्यों श्वेता?
1: बिल्कुल, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वस्थ शरीर ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सोचिए अगर हमारे पास बहुत पैसा हो लेकिन शरीर बीमार हो तो क्या हम उस पैसे का आनंद ले पाएंगे? नहीं ना, इसीलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खाने पीने, सोने और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देर रात तक जागना, मोबाइल और लैपटॉप में लगे रहना और जंक फूड खाना और तनाव में रहना, ये सब धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर बना रहा है।
0: बिल्कुल दोस्तों,
1: लेकिन अच्छी बात तो यह है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसे तो हम बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य जरूर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आसान से तरीके। और सबसे पहला है संतुलित भोजन। हमारा भोजन ही वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध और प्रोटीन से भरे भोजन शरीर को ताकत देते हैं। वहीं ज़्यादा तेल, मसाले और जंक फूड से शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना घर का ताजा और पौष्टिक भोजन ही खाएं।
1: बिल्कुल, दूसरा है नियमित व्यायाम। सुबह की सैर, योग और हल्का व्यायाम शरीर को फिट रखने में मदद करता है। सिर्फ 30 मिनट्स का व्यायाम हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। योग और प्राणायाम ना केवल शरीर बल्कि मन को भी शांत रखता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, और अब है पर्याप्त नींद। अच्छी नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो शरीर थका हुआ महसूस करता है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें।
1: और फिर आता है तनाव से दूर कैसे रहें। आजकल तनाव हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन ज़रूरी है तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, ताकि संगीत सुनिए और किताबें पढ़िए, और जिससे आपका सकारात्मक सोच बनी रहती है।

बिल्कुल दोस्तों, और मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन याद रखिए, अगर आज हम स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कल बीमारी के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए दोस्तों। और स्वास्थ्य पर बातें तो हम और भी करेंगे। आइए यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: आज की
1: है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: Cena.
1: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए समय निकालना भूलते जा रहे हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप और घंटों बैठकर काम करने की आदत ना हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना रही है, बल्कि उसे और ज़्यादा परेशानी में डाल रही है। ऐसे में व्यायाम यानी एक्सरसाइज हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन जाता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, व्यायाम केवल शरीर को फिट रखने के लिए नहीं है, बल्कि मन को शांत और तनाव मुक्त रखने के लिए भी ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मजबूत होती है।
1: बिल्कुल। अब सवाल यह है कि आखिर व्यायाम कौन कौन से करने चाहिए। जैसे सबसे आसान और सबसे अच्छा व्यायाम है सुबह की सैर करना। रोज़ 20 से 30 मिनट तेज चलना हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, इससे मोटापा कम होता है और शरीर सक्रिय हो रहता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा योग भी बहुत लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, योग हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। प्राणायाम करने से सांस संबंधी समस्याएं कम होती हैं और मानसिक तनाव भी दूर होता है।
1: बिल्कुल, वही बुजुर्ग लोगों के लिए हल्का व्यायाम व्यायाम और योग बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर में लचीलापन बना रहता है और जोड़ों का दर्द भी कम होता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, व्यायाम का मतलब केवल जिम जाना या सीढ़ियाँ पर चलना, घर का काम करना नहीं है। आप साइकिल चलाएं, नृत्य करें, ये सब भी अच्छे व्यायाम हैं।
1: स्वस्थ तन और सकारात्मक मन ही जीवन को खुशहाल बनाते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सच्ची समृद्धि है।
2: बिल्कुल दोस्तों,
1: तो श्रोताओं, इतिहास हर दिन अपने भीतर कई कहानियां और सीख समेटे होता है। 11 मई भी उन्हीं दिनों में से एक है जिससे विज्ञान, राजनीति, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।
2: बिल्कुल दोस्तों, और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की, तो 1885 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास का जन्म हुआ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल, 1951 वर्षों बाद पूर्वनियमित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया।
2: और दोस्तों, 1962 में महान शिक्षित दार्शनिक और विद्वान डॉक्टर सर्वपाली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
1: बिल्कुल, 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दिखाया, जो अपनी वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति का परिचय दिया। हर साल 11 मई को राष्ट्र प्रौद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है।
2: दोस्तों, अब चलते हैं विश्व की ओर। 330 ईस्वी में आज रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन वन ने कॉन्स्टेंटिनोपल को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी घोषित की थी और आज ये शहर इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है।
1: बिल्कुल, 1949 में इसराइल संयुक्त राष्ट्र का संदेश बना, जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया।
2: और दोस्तों, 1981 में प्रसिद्ध रेगे गायक बॉब मार्ले का निधन हुआ। उनका संगीत आज भी शांति और मानवता का संदेश देता है।
1: बिल्कुल, 1997 में IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप ग्रे गैर्व कॉर्पस को हराकर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है।
2: बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: और दोस्तों अब चलिए देश दुनिया की हलचल पर नजर डालते हैं और आपकी और हमारी दोनों की जानकारी को बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन टेक्निक मानी जा रही है।
1: भारतीय धावक तेजस तीर्षर ने चेन्नई में आयोजित इंडियन एथलीट सीरीज में 110 मीटर हर्डल प्रतियोगिता जीतकर शानदार वापसी की।
0: और दोस्तों इंडियन पोस्ट द्वारा डिजिपिन डिजिटल एड्रेस प्रणाली शुरू की गई है। यह नई डिजिटल व्यवस्था भविष्य में सटीक लोकेशन पहचान में मदद करेगी।
1: बिल्कुल, देश में नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों और कंपनियों दोनों को फायदा मिलेगा।
0: और दोस्तों मौसम विभाग ने संभावित सुपर एल नीनो के कारण इस वर्ष मानसून प्रभावित होने की आशंका जताई है, जिसका असर खेती और खाद कीमतों पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल, साउथ कोरिया ने अधिकतर टोकन पर अपने पहले ह्यूमनॉइड प्लॉट भिक्षुक गाभी को देश पैदा किया, जिसमें 130 सेंटीमीटर ऊंची इस ह्यूमनॉइड को चीन ने यूनाइटेड जीआई प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके विकसित किए गए हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, और स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल और एआई फर्म सर्वम ने भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, जिसका नाम है पाथ फाइंडर, बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। और इस सैटेलाइट का वजन 200 केजी होगा और इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर हम बात करेंगे।

0: दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच हमें मजबूत बनाती है। खुद पर विश्वास रखें, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें, परिवार और दोस्तों के साथ समय जरूर बिताएं। कभी भी अपने मन की बात मन में दबाकर ना रखें, और अगर तनाव महसूस हो तो अपने प्रियजनों से जरूर बात करें। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त तरनजीत
1: और श्वेता
0: को इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार श्रमिक साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम श्रमिक लोक में। कार्यक्रम में आज हम हैं योगेश्वर और हमारे साथ हैं प्रीति। नमस्कार प्रीति।
1: नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को प्रीति का भी प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं सावधानी ही सुरक्षा है। आप जिसके प्रति सावधान रहते हैं उससे सुरक्षित रहते हैं। अब चाहे आपकी जो सावधानी है वो स्वास्थ्य के प्रति हो या फिर सड़क की।
0: सही कहा, सड़क पर सतर्कता और सावधानी आपकी और दूसरों की जान बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रीति, यातायात के जो नियम होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, ये नहीं कि यातायात के नियम किसी राहगीर को परेशान करने के लिए होता है। यदि हम नियम का पालन करेंगे तो खुद तो सुरक्षित रहेंगे ही, दूसरे को भी सुरक्षित रखने में हम सहायक होंगे।
1: लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम सभी जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कुछ दूसरी वजह जो होती है वो हावी हो जाती है। जैसे कि आप घर से देर से निकले हैं, कहीं जल्दी पहुंचना है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या वाहन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो और भी बहुत सारे तरह की वजह होती है।
0: खासकर श्रमिक साथियों की हम बात करें तो ऐसा होता है कि काम पर जाना है और सुबह तैयार होने में हम देरी कर
1: देर हो जाती
0: तो
1: है,
0: तो ऐसी स्थिति में जल्दबाजी होती है कि काम पर हमें जल्द पहुंचना है, और नहीं तो फिर हमें परेशानी होगी, काम पर लोग नहीं रखेंगे या फिर कम मजदूरी देंगे। तो इन परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है कि हम समय से तैयार हो जाएं और समय से पहले घर से निकले और सही समय पर कार्यस्थल पर पहुँचे, तो कहीं भी परेशानी नहीं होगी, कहीं भी दुर्घटना की संभावना
1: नहीं होगी। बिल्कुल। और अगर आप समय पर निकलेंगे तो आपका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो हर काम अच्छा होता है। और दोस्तों, जब सड़क पार करते हैं आप तो सबसे पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर देखकर ही आगे बढ़ें। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, या कहीं कहीं पे पैदल यात्री पुल भी बना होता है उसका प्रयोग करें।
0: बिल्कुल, जो ट्रैफिक का नियम है कि ट्रैफिक लाइट है, जो संकेत है और जो नियम लिखे होते हैं उसका पालन जरूर करें। खासकर गाड़ी चलाते समय जो है मोबाइल से बातें तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। खासकर जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें अधिकांशतः दुर्घटनाएं मोबाइल के कारण ही हो रही हैं, क्योंकि कई बार आप देखें कि लोग मोबाइल से बात करेंगे गर्दन के
1: बात
0: पास
1: जब आप
0: लगा
1: करते हैं ना
0: करके,
1: तो ध्यान भटक ही जाता है,
0: उसे ध्यान ही भटकता है और आपके जो शारीरिक समस्याएँ हैं खासकर गर्दन के पास स्पोन्डिलाइटिस कई तरह की समस्याएँ आ जाती है। तो हम अस्वस्थ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जरूरी है कि हम मोबाइल का हम यूज जो प्रयोग है वो हम नहीं करें। यदि बहुत ज़रूरी भी है, कहीं से फ़ोन आ रहा है बात करनी, तो एक साइड में हम चले जाएं। हाँ। गाड़ी को रोक करके हम बात कर
1: या मिनिमाइज
0: करें,
1: बिल्कुल कम बिल्कुल। शब्दों में बात को खत्म करें, क्योंकि आप सड़क पर हैं और सड़क पर दुर्घटना जब होती है ना तो सिर्फ आपकी जान नहीं जाती बल्कि आसपास के लोगों की भी जान जाती है जिनकी गलती नहीं होती।
0: और जब भी वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग तो जरूर करें, क्योंकि हेलमेट सुरक्षा के लिए बने हैं, न कि पुलिस से बचाने के लिए।
1: लोगों की ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि भाई पुलिस तो आगे नहीं पकड़ रहा, अगर पकड़ रहा तो भाई।
0: कई लोगों को देखेंगे प्रीति कि जब पहिया वाहन चलाएंगे तो हेलमेट को हैंडल में लटका लेंगे और जब चौक के पास पहुंचेंगे तो हेलमेट पहन लेंगे, लेकिन चौक के पहुंचने के पहले ही यदि दुर्घटना हो जाती है और हेलमेट हम पहने हुए रहते हैं तो हेलमेट हमें बचाने में सहायक होता है। पुलिस का भय तो अलग है, लेकिन पहला भय होनी चाहिए कि हमें क्षति पहुंच सकती है या दूसरे को क्षति पहुंच सकती है।
1: जब हेलमेट की बात की ना आपने तो मुझे भी एक बात याद आ रही है कि एक हमारे पड़ोसी हैं, वो जा रहे थे तो मैंने कहा कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो वो कहते हैं कि सब्जी लाने ही तो जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अरे भाई, तो सब्जी लाने आप जा रहे हैं, आपको पता है, दुर्घटना को तो नहीं पता।
0: नहीं पता,
1: दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, इसलिए हेलमेट जो है वो हमेशा लगाएं। लोगों को लगता है पास में जा रहे हैं, बगल में जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाओं का कोई समय नहीं होता
0: नहीं
1: दोस्तों, हमेशा सतर्क रहें।
0: और जब भी चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगा लें, क्योंकि अचानक जब ब्रेक लगता है ना तो उस समय सामने की ओर झुकते हैं और उस समय काफी क्षति पहुंचती है। तो सीट बेल्ट यदि हम लगा लेते हैं तो अचानक ब्रेक लगने के बाद
1: बॉडी कंट्रोल में रहता है,
0: कंट्रोल में रहता है और सामने की ओर झुकने के बाद चोट नहीं लगती। तो जो नियम बने हैं उसका पालन जरूर करना चाहिए।
1: और दोस्तों हमेशा निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं, क्योंकि तेज रफ्तार दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। और हमेशा याद रखें, नशीले पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है।
0: आपने देखा होगा प्रीति कि जहाँ स्कूल होते हैं वहाँ पर लिखा होता है गति सीमा, या फिर जहाँ पर मिलिट्री कैंप होते हैं वहाँ पर ही गति सीमा लिखा होता है, लेकिन उसी

0: वहाँ पर ही नहीं बल्कि हर जगह गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। जो सीमा से बाहर हम जाते हैं तो फिर दुर्घटना हो जाती है और परेशानियाँ होती है। और नशीला पदार्थ तो हम बिल्कुल ही नहीं करें, चूँकि नशा तो नाश का कारण होता है और नशा कर देने के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो उसी स्थिति में तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों याद रखें, सतर्कता, सावधानी और समझदारी ही सड़क पर आपके सच्चे साथी हैं। सुरक्षित रहें, जिम्मेदार बने।
0: बिल्कुल, तो बातें और करेंगे, इसके पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आपने देखा होगा जब हमारा मन खुश होता है तो हमें बड़ी परेशानी भी छोटे लगने लगती है। यानी अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो अपने आसपास भी सकारात्मकता ही फैलाते हैं।
1: और देखा जाए तो सकारात्मक माहौल से मजबूत कार्य संस्कृति का निर्माण भी होता है, जो किसी भी संगठन की सफलता, उत्पादकता और कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए बहुत ही जरूरी है।
0: सही कहा, सकारात्मक माहौल में कर्मचारी अधिक प्रेरित होते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता और गति बढ़ती है। तनाव मुक्त वातावरण कर्मचारियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है और आपसी विश्वास को भी बढ़ाता है।
1: दोस्तों, ये तो बातें हुई मजबूत कार्य संस्कृति से हमें क्या लाभ होते हैं, पर इसे बनाया कैसे जाए?
0: बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि बनाया कैसे जाए, ये बहुत ज़रूरी है। संगठन के मूल मूल्यों को परिभाषित करें और उनका पालन करें। कर्मचारियों के छोटे बड़े प्रयासों और उपलब्धियों की प्रशंसा करें।
1: फीडबैक लेने और देने की पारदर्शी व्यवस्था अपनाएं, लचीले समय को बढ़ावा दें और व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करें। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण का सम्मान करें और एक सुरक्षित माहौल दें।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी जो प्रबंधन है वो व्यक्तिगत जीवन को उतना बढ़ावा नहीं देती। उन्हें लगता है कि भाई ऑफिस में जो काम है वो तो आपको करना ही है।
1: बिल्कुल
0: तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, हमें तो लगता है कि समय समय पर टीम बिल्डिंग गतिविधियाँ और सामाजिक समारोह भी जो हैं वो कार्यक्रम जो ऑफिस वगैरह में आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें।
1: बिल्कुल। और इससे क्या है ना कि कार्य क्षमता और कार्य कुशलता जो है बढ़ती है और इससे उत्पादन
0: हाँ,
1: का
0: लोग
1: भी
0: खुश
1: होता
0: होते
1: है।
0: हैं, काम मन लगा के करते हैं। और एक ये भी बात होती है ना कि एक सुरक्षित माहौल जो है वो इंसान को बहुत अंदर से मजबूत बनाता है कि हाँ, सही जगह पे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। और अब आइए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रावधान। भेंटवार्ताकार हैं अधिवक्ता खुशबू कुमारी और इनसे बातचीत कर रहे हैं योगेश्वर राम।
1: किसी भी कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का ख्याल रखना अनिवार्य होता है, खासकर महिलाओं के लिए। कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुविधाओं का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक बेहतर कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कानून में क्या प्रावधान है, चलिए आज इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे बीच हैं अधिवक्ता खुशबू चौधरी। खुशबू जी, आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार सर, सभी मित्रों को भी मेरा नमस्कार।
1: आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, प्रावधान कानून में है इसके लिए।
2: जैसा कि पहले हम बता दें कि महिलाएं जब काम करने जाती हैं तो सबसे पहले हमारा जैसा पहला हमारे देश की जो मानसिकता है, अगर महिलाएं काम करने योग्य भी हैं, वो अगर कहीं काम करने जाना चाहती हैं, तो उनके लिए हमारी विचारधाराएं एकदम अलग हो जाती हैं कि अरे ये महिला काम करने जा रही है, मतलब इसका चरित्र, इसका छवि, एक छवि हमारे मन में बहुत गलत आ जाती है,
1: बिल्कुल
2: जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान एक सामान्य जीवन का सबको अधिकार दिया है, जहाँ सभी नागरिक एक समान हैं, जहाँ महिलाओं और पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसीलिए महिलाओं को भी कार्य करने का उतना ही सामान्य अधिकार है जितना पुरुषों को।
1: खुशबू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जितना अधिकार पुरुषों का है, उतना अधिकार महिलाओं का भी है। इसलिए कहते हैं ना कि समाज की गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिया बनाया गया है, और जब तक दोनों पहिया समान रूप से नहीं चलेगा, तब तक समाज का बेहतर होना, समाज का विकास होना मुश्किल हो जाता है। खुशबू जी, कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें आप क्या देख रही हैं कि क्या सुविधाएं महिलाओं को होनी चाहिए, क्या के बेहतरी के लिए प्रावधान किए गए हैं?
2: सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सामने जब एक महिला कार्य करने कार्यस्थल पर जाती हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो,
1: जी
2: महिलाएं चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना पहुंच जाएं, पर उन्हें एक अलग नजरिए से क्यों आंका जाता है।
1: बिल्कुल,
2: महिलाएं भी उतनी ही योग्य हो सकती हैं जितना पुरुष हो सकता है, बल्कि हमारे समाज में आज पुरुषों से आगे एक महिला है। सबसे पहले मैं आपको समस्या के बारे में बताना चाहूंगी कि महिलाएं जब जाती हैं किसी कार्यस्थल में तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब महिलाएं अपने घर से ही विचार बनाती हैं कि मुझे कार्य करने जाना है तो घर से ही उनके सामने समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे उनके साथ उनके बच्चे का अस्तित्व जुड़ा है, परिवार का अस्तित्व जुड़ा है, उन्हें सबको की देख रेख पालन पोषण करते हुए उन्हें अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने की चिंता, प्रथम चिंता उनके घर के दरवाजे से ही शुरू होती है।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: और जब हम अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं तो वहां भी असामान्यता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई महिला अगर कार्यस्थल पर गई है तो कार्यस्थल पर महिलाओं और पुरुष के लिए एक भीड़भाड़ में कार्य करना भी बहुत संभव नहीं हो पाता है। जैसे महिलाएं जो कि शर्म ही उनका गहना है, अगर कहीं महिलाएं कार्यस्थल पर जा रही हैं तो उनके लिए सुचारू रूप से एक अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पुरुषों का जाना निषेध हो, या जहां महिलाओं और पुरुष के बैठने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और मानसिक तौर पर स्ट्रांग फील कर सके कि हाँ मैं हूँ। और लोग जैसे कि, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे, हमने जो पाया सर कि एक ही ओहदे पर महिला और पुरुष दोनों जब एक ही कार्य करते हैं परंतु वेतन दोनों का असामान्य क्यों होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी सवाल है
2: ये, बहुत बड़ा सवाल है। महिला भी उतना ही समय उतने ही मेहनत से अपने कार्य को पूर्ण कर रही है जितने समय में पुरुष ने पूरा किया, तो वेतन असामान्य नहीं होना चाहिए। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कार्य में अरुचि होने लगती है कि हमने भी उतना ही मेहनत किया पर हमें वेतन कम क्यों। इसके लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा ये प्रावधान बनाया कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। अगर पुरुष और महिला एक समान कार्य कर रही हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए, चाहे महिला बड़े ओहदे पे हो, सरकारी सर्विस में हो, या एक महिला जो घर पे काम कर रही हो, जो भवन निर्माण में काम कर रही हो, जो ईंटा ढो रही है, मजदूर हैं, उनको कम से कम न्यूनतम दर पे सामान्य वेतन की व्यवस्था 1948 में हमारे कानून ने किया है। ये समस्या एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान कानून ने किया है और जिसका यदि पालन हो तो बहुत अच्छे से उज्जवल भविष्य नजर आता है। दूसरे सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, क्योंकि महिलाएं पुरुष अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसकी माँ पे छोड़कर चले जाते हैं, परंतु माँ किस पे अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़े। माँ जहाँ भी जाती हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाती हैं, तो महिलाएं जब योग्य हैं कार्य करने के लिए, हमारे सरकार ने, हमारे कानून ने ये प्रावधान किया है कि जिन महिलाओं के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों को देख रेख करने के लिए, या किसी कार्यस्थल में 20 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं तो वहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क हो, उनके देखने के लिए एक क्रेस हो, जहां पर उसी महिलाओं के बीच में से कोई एक या किसी अन्य को नियुक्त करे जो उनके बच्चों का देख रेख करे। जब महिलाएं, तभी महिलाएं अपने मानसिक रूप से संतुलित होकर कार्य कर पाएंगी, क्योंकि महिलाओं का कार्य से पहला दायित्व है उनके बच्चों का पालन पोषण। उनका आधा ध्यान अपने बच्चों पर यदि रहेगा तो शायद वो अपने कार्य को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाएगी। ये समस्या दूसरी समस्या थी जिसका निदान हमारे कानून ने किया, जो संविधान बनाने वाले ने भी सोचा इसीलिए। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आई है वो यौन शोषण की समस्या है।
1: बिल्कुल,
2: आज लड़कियां, अगर लड़कियां या महिलाएं या बुजुर्ग महिलाएं भी अगर किसी अच्छे ओहदे

0: हैं या कोई कार्य करने जा रही हैं। जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को सरकारी नौकरी ही मिल जाए।
1: जी
0: घर की स्थिति को सुधारने या सामान्य रूप से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोग प्राइवेट संस्थानों में भी काम करते हैं, लोग ठेकेदार के अंदर भी काम करते हैं, ईंटा बालू ढो के भी अपने जीवन यापन के लिए महिलाएं तत्पर रहती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमने ये महसूस किया कि जैसे महिलाएं किसी ठेकेदार के अंदर कार्य कर रही हैं, तो ठेकेदार उसे एक गंदी नजर से देखने लगता है या प्रमोशन का लालच देकर बॉस उसे गलत कार्य कराना चाहता
1: जी,
0: है। तो इस तरह की बातें हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया
1: और
0: है।
1: इससे उनकी कार्यक्षमता और
0: कार्य
1: कार्यकुशलता
0: क्षमता
1: प्रभावित
0: में
1: होती है।
0: प्रभावित होती है उससे, और महिलाएं खुद एक असमंजस में फंस जाती हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। सबसे बड़ी समस्या, मैं ये समस्या महिलाएं अपने आप में फेस करती हैं, पर उनके मन में एक सवाल होता है कि मैं इस समस्या का समाधान किसके पास जाके बोलूं,
1: जी
0: क्योंकि कहने को तो यह भारत देश है जहां माताएं पूजी जाती हैं, परंतु ये पुरुष प्रधान देश बन गया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्चर गादपि
0: जी
1: गरीयसी,
0: जी
1: है
0: सर,
1: ना।
0: परंतु अब मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि विशाखा समिति अधिनियम के अनुसार आधार पर एक समिति का गठन किया जाता है, जो कि 2013 में ये अधिनियम भी लाया गया कि
1: जी
0: यदि किसी भी संस्थान में महिलाओं का शोषण हो। अच्छा, मैं एक बात और कहना
1: जी
0: चाहूंगी कि शोषण जरूरी नहीं है कि छूके या उसके साथ गलत व्यवहार करके,
1: जी
0: या
1: जी
0: नहीं, शब्दों से भी महिलाओं का
1: बिल्कुल
0: शोषण किया
1: बिल्कुल
0: जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: मैंने जो महसूस किया है कि महिलाएं और पुरुष एक ही टेबल पे बैठ के कार्य कर रहे हैं, तो दो पुरुष ऐसे अश्लील बातें कर रहे हैं जिससे महिलाएं शर्मसार हो जा रही हैं। ये सबको देखते हुए जो प्रावधान बनाया गया है हमारे यहाँ
1: उससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिक पताड़ना बढ़ती है
0: बढ़ती
1: और
0: है।
1: कार्य करने की क्षमता कम हो जाती
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल सही, उनकी कार्य करने की क्षमता जब घटने लगती है, तो जाहिर सी बात है जब मन ही अशांत है तो कार्य कैसा होगा।
1: बिल्कुल
0: अगर हमने अशांत मन से भी एक गृहिणी सब्जी बनाने जाए तो नमक और मिर्ची का अंदाज भूल जाती है। तो
1: बिल्कुल
0: यह तो
1: सही
0: कागज
1: है।
0: कलम की बातें हैं, इसमें
1: जी
0: तो लोग अवश्य ही गलती कर देंगे।
1: जी
0: इसीलिए लोग कहते हैं कि क्या प्रताड़ना मैंने किया, मैंने उसे क्या छुआ, या
1: जी
0: मैंने उसे क्या अश्लील फोटो भेजी, या लेटर
1: जी
0: लिखा, या मैसेज किया। नहीं, नजरों से भी आपने अश्लीलता का प्रचार किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शर्म कपड़ों में नहीं, नजरों में होती है।
1: जी।
0: तो ये पालन सिर्फ महिलाएं ना करें, पुरुष के लिए भी एक चीज है।
1: और खुशबू जी, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी का
0: जी
1: घर
0: सर,
1: परिवार है और हर किसी के घर में माताएं हैं, बहनें हैं। चूंकि महिलाओं का कई रिश्ते बन जाते हैं और हर किसी के साथ है, हर किसी को सोचने समझने की जरूरत है कि हम जैसे अपने घर में व्यवहार करते हैं, कार्यस्थल पर भी हम अन्य महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही
0: बिल्कुल
1: सम्मान दें और उसी दृष्टि से देखें ताकि उनका आत्मन बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, उनकी कार्यक्षमता कार्यकुशलता बढ़े और जहां पर वे कार्य कर रही हैं उस कार्य में वृद्धि हो ताकि वहां का जो प्रबंधन है उसका भी
0: जी
1: लाभ हो। यदि कार्य ही बेहतर नहीं होगा, कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमता घट जाएगी और कार्य बेहतर नहीं होगा तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रबंधन को भी झेलना पड़ेगा। तो प्रबंधन का भी कर्तव्य बनता है कि
0: जी
1: हम वैसी व्यवस्था करें ताकि महिलाएं जो है खुले मन से काम करें और उनके साथ किसी भी तरह की मन में ये बातें ना आए कि हमारे साथ कहीं पर गलत सोच या गलत व्यवहार की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। खुशबू जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप
0: जी
1: कई गांव क्षेत्रों में जाती हैं और वहां के लोगों को जागरूक भी करती हैं, तो वहां भी लोग कार्य करते हैं, क्या
0: जी
1: कुछ आप देख रही हैं कि कानून का क्या असर पड़ रहा है अभी लोगों पर?
0: जी मैं कहना चाहूंगी कि पहले जैसे जब तक कोई प्रावधान महिलाओं के सुरक्षा के हित में नहीं किए जाते
1: जी
0: थे, तब क्या था कि अलग से महिलाओं के लिए एक शौचालय भी नहीं था,
1: बिल्कुल
0: जहां महिलाएं काम कर रही हैं तो जाएं, या जहां वो फ्रेश महसूस करें, अलग एक
1: जी
0: कोई जगह का कुछ भी नहीं था सर। लेकिन अब जब से यह प्रावधान या कानून बना दिया गया है, जब से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, महिलाओं की मानसिकता और ऊपर हो गई है, वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रही हैं, और अब वो किसी से डरती नहीं है ठेकेदार से, क्योंकि उनको
1: बिल्कुल
0: पता है कि यदि ये गलती करेंगे तो इनके लिए हमारे कानून में सजा भी है।
1: जी
0: और कहीं ना कहीं पुरुषों के मन में या कार्य करने वाले पुरुषों के मन में भी इस बात की भावना आई है कि ये गलत अगर हम करेंगे तो हमारे पीछे एक दंड प्रावधान लगा दिया गया है।
1: बिल्कुल। अच्छा, किसी कार्यस्थल पर मान लेते हैं कि कानून तो बने हैं लेकिन प्रावधान प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया है, तो क्या चुप रहने की जरूरत है या आवाज उठाने की?
0: जी नहीं, चुप तो कभी रहना ही नहीं चाहिए सर। मैं कहूंगी कि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी
1: जी
0: कि जैसे महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है,

0: और उनकी वो महिला अब उस महिला से जाके 3 महीने के अंदर कोई भी शिकायत दर्ज कर सकती है। वो जरूरी नहीं है कि वो उसी कार्यस्थल में कहाँ उनके साथ क्या घटित हुआ, वो कुछ भी जाके अपनी महिलाओं को और नियोक्ता को की ये जिम्मेदारी है कि आंतरिक समिति संगठन भी करें
1: जी
0: कि पहले मामला अंदर से ही सही हो जाए,
1: जी
0: जो गलतियां हो रही हैं उनके कार्यस्थल में या उनके ऑफिस में, वो सब चीज़ों को वो अंदर ही एक समिति गठन करें जहां पर किसी महिला को ये महसूस होता है ये पुरुष से मुझे समस्या है या मेरे कॉलीग ने मुझसे बदतमीजी की या ये अश्लील बातें या अश्लील
1: जी
0: हरकत कर रहे हैं, तो उस समिति को जाके वो बता सकती हैं, ये प्रावधान है, वो बता सकती हैं और उसके लिए उचित कदम उठा के उसे या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसके वेतन को रोक कर उसे सजा दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान अब सभी जगह स्थापित कर दिया गया है।
1: खुशबू चौधरी जी, आपने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रावधान से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: श्रीमती साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। इसी कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के अपने मित्र योगेश्वर
5: और प्रीति को दीजिए इजाजत।
4: नमस्कार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। जामताड़ा में आज आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिले के कला केंद्रों और धुमकुड़िया भवनों के लिए ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का वितरण किया। रांची विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्लस्टर सिस्टम का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने की मांग की। परिषद का आरोप है कि क्लस्टरिंग से शिक्षा का केंद्रीकरण होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्रों और छात्राओं को भारी परेशानी होगी। साहिबगंज के उपायुक्त ने NH-80 को जर्जर स्थिति से उबारने की पहल की है। उन्होंने बताया कि मदन साही के पास सड़क को फिलहाल चलने लायक बनाने के लिए समतलीकरण किया गया है। देवघर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जिले की प्रमुख रेल, सड़क और कोयला परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन और देवघर बासुकीनाथ राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सरायकेला के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिवलाल कुंकल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 3 ANM का तबादला भी किया गया है। देवघर पुलिस ने मोबाइल लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 11 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साहिबगंज के नगर पालिका कन्या उच्च विद्यालय में आज मेरा युवा भारत की ओर से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को तकनीक और डिजिटल नवाचार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7

0: पेड़ लगाओ, धरती के हरियाली बनाओ।
1: खेती बारी सुन भैया, सब भाई बहन मन के युवराज बटले जोहार, और हमर संगे सुकेश दादा के भी जोहार।
0: जोहार युवराज भाई, और संगे संगे खेती करवैया भाई बहन मन के भी जोहार। का हाल समाचार है?
1: हाल समाचार दादा एकदम नगद है, और कहल जाए तो हमरे का जो किसान मन है उमन कर भी नगदे हुई, लेकिन देखो आज के मौसम करवट लेवल से हमरे का जे देखो हमरे खेती बाड़ी करीला तो खेती में तो नुकसान हुआ थे।
0: देखो खेती में नुकसान हुआ थे, बात कर ली कि नुकसान कैसे हुआ थे। बरखा तो ठीक है, लेकिन बरखा कर संगे संगे जे मैंने पत्थर करा थे कर बरखा हुआ थे, ओला जे गिरा थे,
1: ओला जे वृष्टि
0: उकर
1: हुआ
0: से खेती बाड़ी के बहुत ही नुकसान करे लाई है और होए भी जा है। इकर से जे किसान भाई बहन मन जे इतना गर्मी कर दिन में भी जे खेती बाड़ी कर रहे हैं अपन पसीना बहा के, और उकर फसल जे है ये ओला कर चलते चौपट हो जाते हैं।
1: खास करके देखब दादा कि तरबूज कर खेती, खरबूजा कर, खीरा कर, ककड़ी कर, और जो फल वाला वृक्ष है जैसे अम्बा हो गया, लीची हो गया, इस सब में एकदम दोहरा मार पड़ है। कल के देखो एखने जो एक सीजन है जो फल एखन निकलत है, तो फले में अगर बड़का बड़का ओला गिर जाए तो का हुए तो पूरा सीधे नुकसान हो जाते है। और देखब तो इन्हें एक सप्ताह से इतना जोर ओलावृष्टि हुआ था कि सब फल के झाड़ देव थे, सब जितना भी अम्बा है, लीची है, सबके बर्बाद कर दिलक। तो से ले देखो कहूँ ना कहूँ नुकसान हुआ थे।
0: जे काल परसों जे बरखा कर संगे संगे आंधी और ओला कर प्रकोप से खेती बाड़ी के नुकसान तो हो ही, संगे संगे जे फल वृक्ष मन के भी और फल मन के भी बहुत अधिक नुकसान पहुँचाए जाए। अखन जे फल निकले वाला है, जैसे देखो आम होलक, लीची होलक, अखन बात कर ले कि आम लीची मनकर ई मनकर बहुत ही नुकसान हो जाए है। काहे कि उनके झाड़ भी देते समय पूर्व, दूसर चीज है जे पेड़ में भी रह जाए है उके जे ओला पड़ जाए तो उके खराब होकर संभावना बनल है। और जहाँ सब्जी कर खेती कर बात करत थी, तो सब्जी कर खेती में अखन जे फसल लागल है उ मन के भी बहुत अधिक क्षति पहुँचाया जाता है।
1: तो यही सब का कारण का है कि हमारे के जगह किसान भाई बहन मन है वो सबके दोहरा मार झेले पड़े। एक तो बाजार से ब्याज में पैसा उठाना, चाहे कोनो करके पैसा बड़ा मुश्किल से जुगाड़ करे ना, दूसर चीज के मौसमी जब मार पड़े ला उकर से उभर नहीं पावे ना, और हमारे का किसान की स्थिति बेकार हो जाए ला।
0: देखो किसान का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाए ला, तो है चलते किसान भाई बहन के भी चाहिए कि खेती बाड़ी तो करो ही, संगे संगे देखो मान पशु मन कर जैसे गाय होलक, बकरी होलक, मुर्गी होलक, ई मन के भी पालन कर सके ना, ताकि उकर से उकर अतिरिक्त आयकर जरिया भी बन सकेला है नी। बात अलग कि जैसे गाय कर बात कर रही थी, गाय जे दुधारू गाय हैं ऊ मन कर राखे खियाए पियाए उ मन के संतुलित रूप से उनका होना चाहिए। जहाँ उन पशु मन के रखल जाएला वो घर यानी कि जे गुहाल गहिला वो हवादार होना चाहिए, और सब तरफ से हवादार के संगे संगे जहाँ उ मन के रखल जाएला बैठेना वो जगह भी साफ सुथरा हमेशा होना चाहिए।
1: मतलब कहल जा सकेला कि जितना भी दुधारू पशु मन है उमन का सही देख रेख, सही बेराव करे के चाहिए, और खास करके उमन का जो आवास प्रबंधन है, रहे वाला जो ठाँव है वो एकदम साफ सुथरा हुए के चाहिए। अगर जैसे देखब दादा कि हमारे जहाँ उमन रहे ना, जैसे हमारे गुहार घर के हिला वो अगर गंदगी है तो पशु मन में भी एक प्रभाव पड़ेला। जे दुधारू पशु है दूध देवे कम कर देवे ना, गंदगी के वजह से संक्रमित हो जाए ना, तेकर चलते का होएला कि उमन कर जो क्षमता है दूध देवे कर वो घटते चल जाएला। और कोशिश करना चाहिए कि हमेशा गुहार घर के कम से कम एक बेर डेली ढोए के चाहिए, और जो उमन का जो गुहार घर का जो फर्श है से कि हमेशा ढलान नुमा बनाए के चाहिए। तेकर से कहा कि जैसे उमन पेशाब करत है, पैखाना करत है, और हमारे पानी से जो धोला वो सड़ से मतलब बही जाए के चाहिए,
0: धोबिला और जे नाली मन बनाल जाएगा तो सामने रही हर नाली में ही छोड़ दिले, उकरे में देखू नाली कचरा हो जाए और वह नाली में जैसे सड़ा धाय जाएगा, और किसिम किसिम कर जीव हुआ पन पैना जे दुधारू पशु मन कर खातिर का है नुकसानदेह है, तो ऊ सब के भी नाली में भी बाहक रखे, जबकि ऊ जगह से उनके दूर हटाए के चाहिए। दूसर चीज है कि उनकर खाए पिए कर जे प्रबंध होना चाहिए, सूखा चारा ही निकलाना चाहिए, संगे संगे पानी तो भरपूर आजकल गर्मी कर दिन है के भरपूर पानी कर मात्रा होना चाहिए मन के पिए के लिए टाइम पर टाइम, और खाए पिए में भी। और दूसर चीज़ है कि एखन गर्मी कर दिन में हरा चारा कर प्रबंध भी उतना नहीं हो पावेला, तो सूखा चारा के भी पानी में भिंगाए के ओके जे भी और खाद्य पदार्थ है उनसे मिला मिलो के दुधारू पशु मन के खिलाए चाहिए।
1: तो कहल जाए तो कुल मिला के भोजन वोमन कर खान पान प्रबंधन और आवास प्रबंधन के ऊपर विशेष देख रेख ध्यान देवे के जरूरी है। जैसे देखिए हमारे का करीला को कखनो गाय कर दूध दुहिला तो के बिना धोले भी हमारे दूध दुह लेवीला तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए जब भी हमारे दूध दुह थी तो ओकर थान के पोटास कर पानी से धोए के चाहिए। एक का होला कि संक्रमण जो संक्रमण का खतरा रहेगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
0: थान कर संगे संगे देखो पूरा शरीर के भी धोना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए पशु मन कर, काहे अगर उके साफ नहीं करब तो उकरो में तो संक्रमित होकर संभावना बनल रहेला, और उ मन के भी अपने मन से भी उ रहेक में भी मन का असहज महसूस होला। तो जुराज भाई देखो समय तो बैठल नहीं रहेला, कार्यक्रम के भी आगे
1: बढ़ाए तो नहीं सिराई काल के ढेर दिन बाद भेटा है तो, लेकिन हमरे गोट कर ले नहीं चले हमरे के जो किसान भाई बहन मन है वो मन भी आश्रम होवे कि उमन ले रिज रंग कर हमरे का व्यवस्था कह रही।
0: तो चलो नागपुरी लोक गीत सुनाई देती देवदास विश्वकर्मा और संग बनकर गावल गीत के।

0: এখন হামারে বান শুনাত রহি নাগপুরি লোকগীত দেবদাস বিশ্বকর্মা ও সঙ্গী মনকর গাওয়াল গীত রহে। তো কার্যক্রম মে আগে বড়িলা, লেকিন উকাসে পহলে এক সূচনা হে, আর উ সূচনা হে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দিব্যান কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র মোরাবাদীবাট সে। তো যুবরাজ ভাই, এ সূচনা যে হে সে কে বতাই দেব।
1: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দিব্যান কৃষি কেন্দ্র মোরাবাদী রাঁচি দ্বারা 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए कृषि एवं कृषि संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु आधुनिक उन्नत कृषि विज्ञान तकनीक द्वारा समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास, लाह उत्पादक, मशरूम उत्पादक, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पादक, मत्स्य पालन, माली मुर्गियों का स्वास्थ्य प्रबंधन, गोपालक, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, सुपरवाइजर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है। यह आवासीय प्रशिक्षण निःशुल्क है। किसी भी राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि ST इसमें भाग ले सकते हैं। प्रत्येक माह के 1 तारीख से नामांकन प्रारंभ होता है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। आवश्यक दस्तावेज आधार, जन्म एवं जाति प्रमाण पत्र तथा फोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची। अपने कौशल को निखारे एवं आत्मनिर्भर बनाए।
0: ती रहे सूचना। अब कार्यक्रम में हमारे मन आगे बढ़ी ला। युवराज भाई देखू, एखन गर्मी का दिन भी है, भले खन सप्ताह भर से बरखा तो बीच बीच में आते जाते, और किसान मन ले जे फसल लगाना खेती कराना उ मन ले गर्मी कर मौसम में पानी कर अकाल पड़ जाएगा। काहे जल स्रोत जो है कुआं हो तालाब हो इमन कर नीचे चल जाएगा, तो उमन के पटवन में भी असुविधा होगा। और जे पहले पारंपरिक जे कृषि पटवन करत रही मोटर से चाहे कुंड से भी सिंचाई करत रही,
1: चाहे नहर से हुआ जे भी रहे पहले
0: का, विशेषकर जिसे मोटर से चलाते रहे और खेत में पटाते रहे तो पानी का अनावश्यक बर्बादी होते रहे, पानी का मात्रा अधिक जाते रहे और खेत में पानी जहाँ तहाँ चल जाते रहे, उकर से पानी का बर्बादी भी होते रहे। लेकिन समय के साथ में तकनीकी कर में भी बदलाव होलग और खेती बाड़ी में भी, तो एखन जे कम पानी में अधिक क्षेत्र में जब खेती बाड़ी कर सकेला तो ये आसान काम होलक। ई कर ले है देखो रोड़े कर टपक सिंचाई व्यवस्था, टपक सिंचाई व्यवस्था से पानी सिर्फ पौधा कर जड़ में जाए और हमेशा नमी बनाए रही है नहीं
1: कहल जा सकेला। तो जब पानी का बर्बादी ही कर में पूर्णतः कर में सुरक्षित रहेला, पानी बर्बाद नहीं हुएला, जे जितना पौधा के पानी चाहिए उतना संपूर्ण मात्रा में टपक विधि से पानी पहुँचेला
0: पहुँचाया जा सकेला। तो चलो इकर से विस्तार से हमारे जानकारी करब टपक सिंचाई से किसान मन के लाभ बतावे डॉक्टर DK रुसैया, और एक से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान भाइयों नमस्कार। बूंद बूंद सिंचाई एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह विधि पानी की बचत के लिए बहुत कारगर है और पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना में अधिक कुशल है। टपक सिंचाई से फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है जिससे खरपतवार कम उगते हैं। आप पौधों को पानी के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं जिससे खाद का भी बेहतर उपयोग होता है और यह पानी के प्रभाव को भी नियंत्रण करता है। तो इसी टपक सिंचाई विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर DK रुसिया, कृषि इंजीनियरिंग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को टपक सिंचाई से खेती में क्या लाभ होता है उसके बारे में बताइए।
3: हमारे सुनने वाले किसान श्रोतागण, हमारे सारे महिला पुरुष और खेती से जुड़े जितने हमारे किसान साथी हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। मैं थोड़ा सा एक हल्का सा आपको बता दूं कि टपक सिंचाई जिसको हम लोग ड्रिप भी बोलते हैं, ड्रिप मतलब टपक होता है, यह एक एक बूंद करके पौधों की जड़ों के पास पानी ले जाता है। हमसे आपने अभी हमको सब कुछ बतलाया, किसान भाइयों को बतलाया कि ये टपक सिंचाई के क्या लाभ दिख रहे हैं। हमारा पौधा जब हम रोपते हैं या पौधा निकलता है, शुरुआत में उसकी जड़ बहुत छोटी होती है। अब हम वहाँ पे दूसरे संसाधनों से पानी देते हैं, नाली बना के देते हैं या बाढ़ नुमा हम लोग छोड़ देते हैं। वैसा करने से जड़ के काफ़ी नीचे तक पानी पहुंच जाता है और जड़ वहाँ अभी 15 दिन तक पहुंचने वाली नहीं है, पौधा छोटा है। हमारी पानी की बर्बादी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ जितना हमने उसके लिए पोषक तत्व जड़ों के आसपास दिया था, जो भी हमने नाइट्रोजन, पोटास, यूरिया, सल्फर, जो भी जिस फसल के लिए जो खाद की जरूरत है हमने दिया था, वो सब घुलकर नीचे बह के चली गई और हमारे पौधों के जड़ के आसपास कोई भोजन नहीं रहा। वैसी स्थिति में हम टपक सिंचाई का प्रयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार हमारी मिट्टी में हम लोग जहाँ तक जड़ बढ़ती है जिस पौधे की, हम वहाँ तक पानी गिराकर टपकाकर और नल को बंद कर देते हैं जिस पाइपलाइन से पानी आता है। वैसा करने से हमारी पूरी फसल में कतार से उतना ही पानी पहुँचता है जहाँ तक पौधे की जड़ रहती है। और पौधा और जो उर्वरक है, दो तरह से उर्वरक देते हैं। एक हम पौधा रोपने के पहले ही हम कतार में डाल देते हैं और दूसरा हम टपक सिंचाई के माध्यम से हम सीधे लिक्विड फर्टिलाइजर जो बोतल में आजकल उपलब्ध होता है, हम उसको देते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फर्टिगेशन भी बोलते हैं, जिसमें एक यूनिट लगी रहती है। हमको दो बातों का इस पर ध्यान देना पड़ता है
2: जी।
3: पहला कि हमारी हर पौधे के पास बूंद कितनी गिर रही है, हमको पैमाना तय करना पड़ता है कि अगर हम 10 मिनट के लिए टपक सिंचाई की टोटी खोलेंगे तो कितनी देर तक हमारी मिट्टी गीली हो जाएगी। ऐसा नहीं हो कि हमारी जड़ तक भी पानी ना पहुंच पाए, तब हम फिर थोड़ी देर बाद उसको सेट करेंगे, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट और बढ़ाएंगे। फिर अगले 15 दिन के बाद हमको थोड़ा सा या तो टपक की बूंद की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी या फिर हमको समय को थोड़ा बढ़ाना होगा लगाने के साथ साथ। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रेशर के सहारे कोई पंप लगा के दें। हम एक ऊपर 1000 लीटर की टंकी लगाकर और उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं टपक की लाइनों को। अधिकांश किसान इसको बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। 12, 15, 25 लाइन हम एक साथ दे रहे हैं। ये हर एक लाइन में 50-50, 40-40 पौधे, जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उतना रखते हुए, कतार से कतार की दूरी रखते हुए
2: जी।
3: हर एक लाइन में हम उसको लगाते चले जाते हैं और ऊपर से एक बार नल छोड़ते हैं और हम प्रैक्टिकल करते हैं, पहले प्रयोग करके देख लेते हैं कि कितनी बूंद गिराने के बाद, कितनी देर गिराने के बाद हमारी मिट्टी की कितनी सतह गीली होती है। उसके बाद उस टाइम को हम रिकॉर्ड करके और हम उसको बंद कर देते हैं
2: जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि किन किन फसलों में ये टपक सिंचाई लाभकारी है।
3: 3-4 तरह की फसल होती हैं ज्यादातर
2: जी।
3: एक लतरदार फसल भी है और एक हमारी खड़ी फसल भी है। खड़ी फसलों में हमारे बैंगन, मिर्चा, शिमला मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। लतरदार में हमारी ज्यादातर गर्मियों में या ठंड में होने वाली फसलें हैं। हम तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, नीनुआ, जितनी भी प्रकार की हमारी लतरदार सब्जी होती है, उनमें हम केवल हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एक लतर अगर 3 मीटर दूरी जाती है तो हमको अगले टपक का मुंह खोलना होगा 6 मीटर की दूरी पर
2: जी।
3: बाकी बीच के छिद्रों को बंद करके रखना होगा, क्योंकि उससे पानी की बर्बादी होगी हमारी और हम केवल वही मुंह खुला करेंगे। फिर हमारी कतार से कतार की दूरी भी हमको 6 मीटर रखना पड़ेगी अगर लतर 3 मीटर जाती है, फिर अगली कतार भी हमारी 6 मीटर की दूरी होगी ताकि एक कतार इधर से उतर जा रही, दूसरी कतार इधर से इधर आ रही है। हमको ज्यादातर जितनी भी टपक सिंचाई की योजनाएं अभी किसानों के खेत पे चल रही हैं, अभी अधिकांश लोग उसमें प्लास्टिक का मल्च भी प्रयोग कर रहे हैं।
2: प्लास्टिक मल्चिंग
3: ऐसा करने से हमारी जितनी भी खरपतवार में जो वृद्धि, अगर हम खुले में लगाते हैं टपक
2: जी,
3: तो खरपतवार में वृद्धि होती है, तो हमारा जो NPK है, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, ये सब घास तेजी से लेना चालू हो जाता है और पौधे को कम मिलता है। हम देखते हैं कि अगर मल्च लगा देते हैं तो सारा खाद हमारी मुख्य फसल लेती है, चाहे वो भिंडी हो, टमाटर हो, बैंगन हो, धनिया में भी लगाते हैं। अभी तो कई राज्यों में गेहूं में भी लोग लगाने लगे हैं। अभी तो देखिए कुछ समय बाद हम टपक सिंचाई से आपको धान भी बताएंगे, हम धान बताने के बाद आपको गेहूं लगवाएंगे, चना में भी हम दे रहे हैं
2: जी।
3: हमको अच्छी वृद्धि इससे मिलती है और जो खाद का उपयोग है वो फसल के द्वारा किया जाता है। हम आम, अमरूद, लीची, जो कुछ भी शुरुआती लगाते हैं, शुरू के 2 साल तक हम टपक सिंचाई के माध्यम से उनको बढ़ाते हैं ताकि पौधा की जड़ तक अच्छे से पानी मिले, ज्यादा न जाए और पौधा हमारा सूखा ना, और तेजी से वृद्धि होती है। हम नली के ही माध्यम से लिक्विड खाद भी देते हैं, ऐसा करने से बढ़ोतरी अच्छी मिलती है। और जब हम सादा लगाते हैं, अभी पहले क्या करते थे लोग, टपक सिंचाई की लाइन जा रही है और एक फसल की लाइन जा रही है
2: जी।
3: अभी हमने क्या किया है कि एक टपक की लाइन जाएगी और बाजू बीच में रहेगी और 2 फसल की लाइन उसके साथ साथ चलेंगी और हमारी टपक नली से पानी दोनों तरफ दोनों की जड़ के पास गिरता रहेगा। हमको बहुत इससे फायदा मिलता है। और जहां हम देखते हैं कि हम टमाटर में अच्छी खासी हमारी 4 गुना 5 गुना हमारा टमाटर मिलता है, हम भिंडी तोड़ते हैं जहां हम एक पौधे से 8 से 10 12 भिंडी तोड़ते हैं, वहां हम 22 से 24 भिंडी टपक सिंचाई के माध्यम से तोड़ते हैं
2: जी।
3: क्यों? खाद का उपयोग खरपतवार के द्वारा ना होकर हमारी मुख्य फसल के द्वारा होता है।
2: डॉक्टर साहब, टपक सिंचाई विधि से पानी की कितनी बचत होती है?
3: देखिए 60% तक, यह 65% तक हमने आका है। नॉर्मल तौर पे 50% तक हम बहुत बढ़िया से अपना पानी बचा लेते हैं। हमारे पास अगर छोटा सा पोखरा है, हम पोखरा से पंप लगा के पानी न देकर हम एक, जैसे हमारा जो घर में उपयोग होने वाले 1000 लीटर के सिंटेक्स टैंक है, उससे भी हम टपक सिंचाई की लाइन को कनेक्ट कर देते हैं, हमारा बहुत लाभकारी होता है। और 1000 लीटर पानी हमारे 1000 पौधों से ज़्यादा देने के लिए सफिशेंट होता है टपक के माध्यम से।
2: आपने तो बताया कि टपक सिंचाई से पानी की बचत होती है, लेकिन वैसे किसान हैं जिसके पास पानी की भरपूर मात्रा है,
3: हाँ,
2: क्या वो भी टपक सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं?
3: नदी और नाले के किनारे पानी बह रहा है, बहुत बड़ा तालाब है, कोई कमी किसी बात की नहीं है। देखिए मैं पहले भी किसान भाइयों, हम आपको बता चुके हैं कि हम धीरे धीरे करके टपक के माध्यम से जड़ तक पानी और भोजन पहुंचाते हैं
2: जी।
3: अगर हम बहाव पद्धति से दे देते हैं, फ्लड जिसको बाढ़ बोलते हैं, या हम फरों के नाली बनाकर देते हैं, या खेत के 4 कोने से पानी छोड़ते हैं, या प्रत्येक लाइन में हम एक एक नाली बना के छोड़ते हैं, हमारा पानी का नुकसान तो होता है, साथ में हमारी उर्वरा जो फर्टिलाइजर खाद है उसका नुकसान होता है और बढ़ोतरी पौधे की अच्छी नहीं हो पाती है, बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम इस बात पर प्रसन्न ना हो कि हमारे पास पानी बहुत है और हम टपक सिंचाई का प्रयोग ना करें
2: जी।
3: हमारे किसान भाइयों, आप टपक सिंचाई की विधि अपनाएं, मल्चिंग को भी अगर अपनाते हैं बहुत बढ़िया है, ठीक से वहां हर पौधे के पास आ रहा है या नहीं। जो कभी टमाटर लगाए हैं जिनकी टपक की दूरी पौधा से पौधा आधा हाथ की है, लेकिन आपको लगता नहीं हमको बैंगन लगाना है और दूरी चाहिए, आपको लगाना है कि आम, तो बाकी छिद्रों को बंद कर दें और बीच बीच में टपक नली को साफ करते रहें और जहां से बूंद गिरती है उनको एमीटर्स को चेक करते रहें कि पानी ठीक से वहां हर पौधे के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है।
2: जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को टपक सिंचाई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: एखन हमने मन जानकारी कर ली टपक सिंचाई से किसान मन के लाभ, बतात रहे हैं डॉक्टर डी के रुसैया, बात करत रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। इकरे संगे आइज हमरे कर खेती बाड़ी कार्यक्रम कर बेरा भी सिरालक, लेकिन सुनवैया भाई बहन मन कहीं न जा पाए, तुरंत हमारे मन हाजिर हुआ थी हमारी दुनिया कार्यक्रम में।
1: तो हमारी दुनिया कार्यक्रम में फिर से सब सुनवैया भाई बहन मन का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो दादा, एखन का है कि एखन गर्मी का मौसम चले लागल है और गर्मी कहले है मन में तरह तरह का सवाल उठे लागेला। सबसे पहला का है दिक्कत कि लू जो चलेला तो उकर से सबसे ज़्यादा नुकसान आदमी का शरीर के होएला। रोरे अगर समय सिरे नहीं निकला, दोपहर में निकला थी तो लू लगे का खतरा बढ़ जाएला। अगर लू से बचे के तो हमरे के खान पान और शरीर में उचित मात्रा कर पानी कर हमरे के रह चाहिए, तो उकरे से हमरे लू से बचाव कर सकीला।
0: देखो जोराज भाई, लू सिर्फ धूप मन जहाँ तेज धूप है हुए फिर लू नहीं मारेला। गर्मी का दिन कहले बात है कि पेट भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर जहाँ पेट खाली है और रौरे छाया में भी है, घर में भी है और धूप का असर तो घरों में भी होला, तो उकर से भी लू मर सकेला, लू कर प्रकोप हो सकेला। तो गर्मी कर मौसम में देखो, जहाँ तक संभावना है कि रसीला फल या पानीदार फल मनकर अधिक उपयोग करूँ और पानी से भरपूर जे फल कहल जाएला, तो आज कल देखो खीरा ककड़ी तरबूज इवन मिलवे करत है, इकर अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि साफ सुथरा पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जैसे एखन कर जे गर्मी कर जे मौसम है, एकर में अधिक तेल मसालेदार वाला सब्जी में भी भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए और से तला भुना चीज भी नहीं खाए उपयोग करे चाहिए, खाए भी नहीं चाहिए।
1: देखो दादा, कहा है कि गर्मी के मौसम में शरीर में बहुत बगरा पसीना निकलेला और पसीना पानी के रूप में निकल जाएला, तो पानी का कमी होल से डिहाइड्रेशन यानी कि वे का खतरा बढ़ जाएला। सेले हमरे के कोशिश करना चाहिए कि जितना मतलब समय सिरे पानी शरीर में घटक देवे के नहीं चाहिए। और गर्मी में सबसे जे खान पान है एकदम सादा युक्त हमरे के भोजन करे के चाहिए और खास करके कि तरल पदार्थ कर सेवन बगरा करे के चाहिए। जैसे हमरे ठंडा दिन होला में अगर तला भुना खाई लेवेला, मसालेदार खाई लेवेला, वो सब चीज़ हमरे के बाचे के चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमरे अगर खीरा तरबूज तो खाती, लेकिन संगे संगे का है कि हमरे के दही छाछ ये सब चीज़ शरीर में में मात्रा ये सब का रहे चाहिए का, लेकिन देखो ये सब चीज़ पेट का ठंडा रखेला और शरीर का शुद्ध रखेला। अगर पेट ठंडा रखी रही तो लू मारे का खतरा भी कम हो जाएगा। इकर में
0: देखो बाहर कर जे खाना, बाहर कहे का मतलब जैसे रोड़े कहीं चल जाए तो अधिकतर मन का सोचे चलो होटल में खाना खा लिया, होटल में कब कर बनल है, का से बना है, वो तेल कर कितना बार उपयोग करल जा है, तो वो चीज़ से परहेज रखना चाहिए। कोशिश करे खाए कि घर कर ही बनाल खाना खाना चाहिए, है नहीं? और घर में जहाँ भी खाना पीना खाती, तो आज कल गर्मी कर दिन में देखो जैसे फुदीना तो प्रयापरा सब जगह मिलेगा, फुदीना का चटनी खाओ, आजकल आम का भी चटनी मिलेगा,
1: कहा जा सकेला तो हल्का भोजन। हाँ, हल्का भोजन जैसे कि कद्दू का सब्जी हो गया, फुदीना का चटनी हो गया और भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, झिंगी हो गया, गोंगरा हो गया, जितना ये सब हल्का मतलब पानी युक्त जो सब्जी है वो सब कर प्रयोग ज्यादा करे चाहिए।
0: ये देखो इखन आम भी सब जगह उपलब्ध है, आम कर रोड़े बनाए सकीला उकर शरबत, बेल शरबत पी सकीला, सत्तू कर उपयोग कर सकीला, ताकि सत्तू के भी शरबत का रूप में उपयोग कर ले, पेट में भी वो मन भरल पुरल बुझाई और लू से भी चाहे गर्मी मारे से भी बचाए जा सकेला।
1: तो कुल मिला के कहल जा सकेला कि गर्मी के मौसम में खान पान में बदलाव करके हमारे अपन शरीर के ही शुद्ध नहीं रख सकेला, बल्कि क्या है कि भीषण गर्मी का दुष्प्रभाव से भी हमारे मन ओकर से बचाव कर सकेला।
0: बचाव करे के संगे संगे देखो सावधानी भी बहुत जरूरी है, अपन तन बदन सही रही तो सब काम हो। तो बातचीत कर ले तो नी काम चली, कार्यक्रम के भी आगे लेके जाए है से चलो कार्यक्रम का आगे बढ़ाई ला और एक नागपुरी लोकगीत सुनब रूना देवी और संगीमन कर गावल गीत के।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेला और हमने जानकारी करा सशक्त नारी से बनी सशक्त समाज।
3: वार्ताकार है पराग किशोर सिंह।
2: तो चलो

0: जानकारी करेला पंच परगनिया में।
1: आज के समय महिला सशक्तिकरण के बात करेक पहिल ई सवाल टाकर जवाब खोज लेना जरूरी हो जाएला कि का वास्तवे महिला सब अशक्त आहें कहाँ ऐसा तो नहीं कि अनजाने चाहे निजे स्वार्थक ते हैं इमन के कोनो साजिशे कारण कमजोर देखाए कोशिश करल जाते हैं। इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता के विकास के संगे संगे ताको तावला के अधिकार मिला है आर धीरे धीरे एह नियम के अपनाए कहन पुरुष जाति निजे शारीरिक बनावटे फायदा उठाए कहन महिला सब के दयाम दर्जाए लाइन कहन ठाड़ कर दिया है आर महिला सबो के निजे नसीब आर नियति मान लिया है। केवल भारत ही नहीं बरं दुनिया भर के नारी सोबे खिलाफ भेदभाव आर शोषणक नीति केर बोलबाला रोया है। हाँ इटा जरूर कहे पारी कि मापदंड के तरीका आलेदा जरूर रहेला। सीता लेख ले कहन द्रौपदी तक के पुरुषवादी मानसिकता केर सामना करे पड़ा है। प्रत्येक युगे पुरुष एक वर्चस्व केर कीमत नारी सब के चुकाए पड़ा है चाहे चुकाएक तहें मजबूर हो पड़ा है। सही तहें बोधय नदी नारी सिंहधारी हेकय ताड़न केर अधिकारी आर नारी तोर एह कहनी आचराय दूध आर आँखें पानी रकम कहतुक गिला गढ़ल जाए हुई। इ कथा गिला के सब्जायक तहें इटा काफ़ी है के जे हमरेक देशे देवी समान पूजनीय नारी केर आदर आर सम्मान मेहन ढेर पतन होया है। दुनिया आबादी केर एक चौथाई गाँवैया महिला आर बालिका सोबे यहाँ मिन्तुक इ सोभे गिला आर्थिक सामाजिक आर राजनीतिक सूचकांक केर हिसाबे सोबलेक हेटेक स्तर यहाँ कमाई शिक्षा स्वास्थ्य सेवा आर निर्णय लेक क्षमता मेहन इनकर भागीदारी नहीं केर बराबर है। कृषि क्षेत्र अवैतनिक सेवा कामे नारी सोभेक योगदान दमे बेसिया है। जन जन जायगा गिलाय कमाई नगद राशि रूपे नाई देल जायला हुआ कुपोषित छुआ सब केर संख्या बहुत बेसिया है। सही तहें तो समय समय महिला सब के सशक्तिकरण एक तहें बात उठते रहेला आर कहल जायला कि आर्थिक गतिविधि गिलाय महिला सब के उचित भागीदारी केर बिना सामाजिक प्रगति केर उम्मीद करनाटाई बेईमानी हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ केर एकटा गणना केर आधार है जहाँ जहाँ महिला सब व्यापार जगते बेसी भागीदारी कोई रहें वहाँ लगभग 53% बेसी फायदा आर 24% बेसी बिक्री केर आकलन करल जाया है। मिन्तु किछु महिला सब केर ई स्थितिटाके देख कहन हमरे हियाँ केर अशिक्षित महिला सब के नजरअंदाज नहीं करे पारी। हमरे देशे ऐसने अशिक्षित महिला सब एक संख्या बेसी है जेगला आइजो गरीबी कुपोषण और घरेलू हिंसा केर शिकार होते हैं। आर इटाई नहीं इमने बेटी के जन्म देख फैसला टाकते हों पुरुष ऊपर निर्भर हैं। सही रूपे जदि देखल जाए हले महिला सशक्तिकरण केर माने ही है के महिला सब के आत्मसम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना तबे तो इमन निजे अस्तित्वटाके रक्षा करे पारबो। जब तक इमने एक सामाजिक वैचारिक और पारिवारिक रूपे उत्थान नाई होई तब तक सशक्तिकरण के ढोल पिटना बेईमानी होई। सामाजिक उत्थान के आधार थम नारी हेकोय। नारी शिक्षित होबोय तबे तो समानता और स्वतंत्रता करते हैं लड़ाई लड़े पारबो आर निजे कानूनी अधिकार एक बेस भावे व्यवहारो करे पारबो। पूरा देशे एखन DRC माने डिजिटल रिसोर्स सेंटर केर स्थापना करल जाते हैं आर इगला महिला सब केर द्वाराए संचालित हुई। हियाँ महिला सब प्रशिक्षण लेबय आर निजे जीविका केर साधन जुटाबय। इ प्रशिक्षण केंद्र गिलाय महिला सब निजे के डिजिटली साक्षर बनाबय आर ग्रामीण विकासे सहयोग करबय। ऐसे तो व्यवसाय सरकार सार्वजनिक प्रशासन राजनीति आर अन्य पेशा गिलाए इमने प्रभाव पहिल लेके आहे। मिन्तुक गाँवैया महिला सूबे की स्थिति एकदम उल्टा है। इस हिसाब देखले गाँवे के देश कहने वाला भारत के एखन लंबा डोहर तय करेगा है। तबे हियाँ के नारी और बालिका सब निजे बुनियादी अधिकार आजादी और सम्मान के लाभ उठाए पार्ब जेटा इमने जन्म सिद्ध अधिकार है के। नारी समाज के अहम हिस्सा है के। सामाजिक निर्माणे इमने विशेष स्थान रहेला। प्राचीन समय नारी के पूजल जात रहे, देवी के दर्जा दिल जात रहे, पुरुष लेख कोनो टाइप कम नहीं मानल जात रहे, सब कामे नर नारी के समान भागीदारी रही है। हलो आज के समय महिला सब के स्थिति दयनीय बनल जाते हैं। पुरुष प्रधान समाज इमन के दबाएक कोनो कसर नहीं छोड़ेला। शिक्षा के अधिकार ले कोई के वंचित रखल जाएला। यह कारण है के जे आज नारी निजे चिन्हा फेजाए लाइगा है। इ जीवन रूपी रथ टाकेर नर नारी दुईटा पहिया है कोई। एकोटा पहिया खराब होले जीवन रूपी रथ ठाड़ हो जाए। से खातिर महिला सब के शिक्षित होना जरूरी है, तबे जीवन रूपी गाड़ी सही तरीका चली। नारी के पढ़ल लिखल रहले उ समाज के कामे योगदान दे पारी, निजे परिवार के सुचारू रूपे चलाए पारी, निजे कर्तव्य और अधिकारे तेहें सजग रही। एकटा नारी निजे जीवने तीनटा अहम भूमिका निभाएला। एकटा बेस बेटी केर, एकटा अर्धांगिनी आर बेस माँ केर। ई तीनों रिश्ता ऐसन है के जेकर संगे पुरुष समाज किछु विशेष आसरा रखेला, मिन्तु इमन आपन रिश्ता के तबे ईमानदारी लेक निभाए पारबे जबे इमन शिक्षित होबे। आज जहाँ नारी केर एकटा वर्ग शिक्षा ग्रहण करतें, बुलंदी के छुअतें, मुदा रखतें, हुआई एकटा दूसरा वर्ग शिक्षा लेक डबल धुरे आए। प्रत्येक बछर हमरे महिला दिवस धूमधाम लेक मनाते आही, लेकिन सही मायने मेहन का हमरे देशे नारी के उत्थानटा मिला है जेटा उके मिलना चाहिए। देश के नारी वर्ग तबे ही खुश हो पारे जोबे इमने एकोटा भाग अशिक्षित नहीं रह गए। आर सही मायने में हैं ओहे दिन ही महिला दिवस हुई जोन दिन देश के प्रत्येक नारी शिक्षित रही। प्राचीन समय लेके लोके इटा धारणा रही है कि नारी के कौन सा पढ़ लिख कहन नौकरी करना है। से तहें घर के रे काम करी गृहस्थी सम्भाई हुई। समाज के एह धारणा टाके बदले दरकार है।
0: एखन हमरे मन सुनत रही पंच परगनिया में सशक्त नारी से बनी सशक्त समाज, बतात रहे पराग किशोर सिंह। तो चलू बांचल समय में एक खोटा लोकगीत सुनब करुणा देवी और संगी मनकर गावल गीत की।

0: है कुछ।
1: तो एखन हमरे सुनत रही करुणा देवी के जे कि हमरे के खुर्था में लोकगीत सुनात रहे।
2: तो एक संगे आज हमरे कर हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा भी सिरालक युवराज भाई और एक तो हमरे मन के एक संगे जे श्रोता जे भाई बहन मन है उमन से विदा लेवे है। उकर से पहले ई जान लेव कार्यक्रम कर प्रस्तुति है संजय कुमार लाल कर। तो चलू
1: लगे सके सबके जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अभी नहीं, तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
1: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे
2: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया जी रामजी मिशन। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वैज्ञानिकों से तकनीक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का किया आह्वान। रामगढ़ के पतरातू में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन। पर्यटन मंत्री ने कहा, डिजिटल माध्यमों से देश दुनिया में बढ़ेगी झारखंड की पहचान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कर्मशाला शुरू। कम बारिश के अनुमान के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी खास सलाह। और अगले कुछ घंटों में रांची समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी मिशन को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इस नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान कोल प्रबंधन IICM में सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ जिम्मेदार खनन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी याद किया। नक्सल मुक्त होने के बाद अब गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ विकास की राह पर है। राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 मई को इस क्षेत्र का दौरा करेंगी। वे बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना की समीक्षा और नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए बैठक करेंगी। प्रशासन इस महत्वपूर्ण दौरे की तैयारियों में जुट गया है।
2: बूढ़ा पहाड़ को लेकर आज उसकी विकास परियोजना की बैठक करी गई और गांववार हम लोगों ने सभी के लाभार्थी बढ़ाने का निर्देश दिया। पानी का भी कार्य किया गया है। कुछ अपर एरियाज है जहां पर ट्रैक्टर पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, उस संबंध में भी हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए जल्द से जल्द कार्य निपटाने का निर्देश दिया।
0: रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट में आज झारखंड टूरिज्म स्टेट लेवल इन्फ्लुएंसर्स मीट 2026 का आयोजन हुआ। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार डिजिटल माध्यम से झारखंड पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
3: 2019 से लेकर 2026 तक में पतरातू में टूरिस्ट का फुटफॉल 3 गुना बढ़ चुका है।

0: चुका है। सरकार की नीतियां, प्रचार और प्रसार ने ततरातु को झारखंड के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया है। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में आप बहुत सारी चीजें और भी दिखेंगी।
1: राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के करमटोली में 5 करोड़ की लागत वाले धुमकुड़िया भवन समेत 4 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण से जनजातीय संस्कृति संरक्षित होगी और आदिवासी बच्चों को शिक्षा तथा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। जामताड़ा में आज आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिले के कला केंद्रों और धुमकुड़िया भवनों के लिए ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के वर्तमान घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील को दोहराया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक देशभक्ति की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी सहित स्थानीय व्यवसायियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और 1 साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया है।
3: विदेश मुद्रा का संकट तेल के और सोना के कारण जो आया हुआ है, उस परिस्थिति में मोदी जी के आह्वान किया है कि हमें विदेशी यात्रा और सोना खरीदना, उस तरीके की चीजें करना जो विदेश मुद्रा को कम करती है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है।
1: रांची के कोकर से 18 माह की बच्ची के लापता होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
4: झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, बहुत बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर माइक में ऑन करके प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करे।
1: जमशेदपुर के एग्रीको में टाटा स्टील के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी रविंद्र सिंह रात भर शवों के साथ घर में रहा और सुबह खुद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष 30% कम बारिश के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को कम सिंचाई वाली फसलें उगाने की सलाह दी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान विभाग के निदेशक पीके सिंह समेत अन्य विशेषज्ञों ने किसानों से अपील की है कि वे समय से पूर्व गहरी जुताई करें ताकि अल्पवृष्टि में भी बेहतर पैदावार हो सके।
5: हम लोग किसान भाई को सलाह देना चाहते हैं 120 दिन के वैरायटी को जाएं, अगर निचले जमीन में है ज़्यादा दिन मॉइस्चर रहता है तो 140 दिन के वैरायटी के जाएं, और खास करके जो ऊपरी जमीन में जो किसान भाई खेती करते हैं, चाहे ऊपरी से थोड़ा नीचे वाले जमीन में धान लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो सूखा अवरोधी जो फसलें होती है, मड़ुआ होता है।

0: उड़द होता है, अरहर होता है, उसकी हम लोग खेती करें।
1: और मौसम, मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित कई जिलों में अगले 24 घंटों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटों में रांची में सबसे अधिक 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 16 मई तक मौसम का मिजाज बदले रहने की संभावना जताई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया जी रामजी मिशन। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वैज्ञानिकों से तकनीक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का किया आह्वान। रामगढ़ के पतरातू में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन। पर्यटन मंत्री ने कहा, डिजिटल माध्यमों से देश दुनिया में बढ़ेगी झारखंड की पहचान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कर्मशाला शुरू। कम बारिश के अनुमान के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी खास सलाह। और अगले कुछ घंटों में रांची समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचंड जीत और नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कोडरमा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडाराज का अंत हो गया है और भाजपा सरकार के गठन के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है।
2: इस तरह से टीएमसी के गुंडा राज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर लगातार उन पर हमला करते रहे, बहुत प्रताड़ित किया, उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल डटे रहे। वो लगातार चाहे पंचायत चुनाव रहा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चुनाव के बाद हमेशा हिंसा होता रहा। टीएमसी के लोग थे, उनके द्वारा गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान करते रहे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता पेशेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे। वो इस इंतजार में कि सरकार हमारी बनेगी।
1: जनगणना 2027 को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 15 मई तक ऑनलाइन स्वगणना का कार्य किया जा सकता है, जबकि 16 मई से भौतिक रूप से प्रगणक मकान सूचीकरण और गणना कार्य को अंजाम देंगे। इसे लेकर जिले में 9 चार्ज बनाए गए हैं और 270 पर्यवेक्षकों के अलावे 1539 प्रगणों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आम लोगों से भी जनगणना की वेबसाइट पर जाकर स्वगणना करने की अपील की है।
3: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मिलाकर कुल 9 चार्ज बनाए गए हैं, जिसमें अधिकारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी

0: अधिसूचित हैं। इसमें से जनगणना 2027 के माध्यम में 34 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 प्रश्नों का जो भी गणना करेंगे उनको आपके माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से 30 सवाल भरने पड़ेंगे। 1 मई से 15 मई तक हम लोग का जो फेज वन का पहला चरण चलेगा, उसमें वो लोग उस गणना कर सकते हैं। जो नहीं ऑनलाइन करेंगे उसमें हमारे प्रज्ञक घर घर जाके जो 34 सवाल हैं उनको पूछेंगे और उनका जानकारी भरेंगे। मेरी सभी से ये अपील है कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन भरें।
1: गर्मी के शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। खासकर जंगली इलाकों में निवास करने वाले आदिवासी और आदिम जनजाति परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गझंडी और बेंदी के जंगली इलाकों के अलावे मरकच्चो प्रखंड के डगरनवा पंचायत के कारी पहाड़ी और ललकी माटी टोला में निवास करने वाले आदिवासी परिवार चूहा खोद कर पानी पीने को विवश है।
2: हम लोग का है पानी के लिए सुविधा नहीं है सर, प्लस में हम लोग का लाइट के लिए बिजली नहीं है। बहुत दूर से 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं, माथा से चूहा खड़ करके माथा से धो करके मांगते। गर्मी बहुत सारा दिक्कत है, अभी तो ताजा पानी काल परसों गिरा हुआ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। नहीं तो हम लोग इतना मजबूर हैं जो कि पानी पीने के लिए बहुत परेशान है।
3: क्या चाहते हैं सरकार से?
2: सरकार से चाहते हैं यही, हम लोग को पानी चाहिए।
1: इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को पानी लाने के लिए भी अपने घर से 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
4: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उड़ाव भाषा में आदिवासी अखड़ा।

0: रोजमर्रा तार गे डेली रूटीन बना लेखा सिखवाना चाही। एने ती आर समय सिरे लुट कुड़िया कालोर अरा स्कूल ती बर आर किया जे भी छोटे मोटे नलखरी अदिन ननोर और अरिन समय ती एने नन्ना चाही अने नन्ना चाही बार की तेंगना चाही। बेड़ा दिन तो आले रिन दो अड्डा रस्त ई अरा बेड़ा के सही उपयोग नंजका ती दो खंजपा हूँ खखरा आऊंगी।
1: हाँ दो कथा बेड़ा की सही प्रबंधन की कोई ओरे मल्ला कब है
0: हाँ दे
1: इन एंदा दिन इन बच्चा बत्ती का दे या उपयोग नन्हे आउंदा निंजा के फायदा मन
0: फायदा रही।
1: हाँ दाव नल्ला के बेड़ा सिरे नन्ना चाहिए बेड़ा के ही सदव
0: अदिन
1: उपयोग
0: उपयोग
1: हाँ
0: नन्ना
1: नन्ना
0: चाहिए
1: चाहिए आउंगे बेड़ा के ही दावले उपयोग मनी खाने एक अम नलक हूँ दावले पूरा मनी काली जिंदगी नु सफल संचालन के अकई चाड़ननी।
0: हाँ दई बेड़ा नमा प्रबंध रहे अर की उना चाहिए इंद्र इम नलख एकसान उनमा काला लग दे तो अधि उनटा योजना कामना चाहिए कि
1: हाँ
0: इनन ता नलखन
1: इन्नम मुंजना
0: इन्नम
1: चाहिए
0: मुंजना चाहिए ई दिन माल पार मनना चाहिए। इन्ने लेखा अनंज का ती नलख चाणे हूँ मुंजरो और नलख और मुंद भारे हूँ बढ़ो कालो। संगे इंद्र इम भी नलखन सन्नी माँ बुझना चाहिए धीरे धीरे आधुं समय बेड़ा सिरे को हाँ मन्नुम काली इति उंदुल मला उंदुल उजगार हूँ मनी काली। आंगे समय और बेड़ा की महबन बुझना चाहिए और दौती इदि नखना हो चाहिए।
1: मानिम कथा आ न लग गई सूची कम न चाहिए कब ए
0: हाँ दे
1: सूची उइना आरा इन्नम नलखन मुंजुना बिसे न लग गई महबा हूँ अधिक ही आधार लेखा निर्धारित कम न चाहिए सूची बद उर्मी नलख गे अकै चाड़ रही दोसर उल्ला की नलखन अमल बछावा न चाहिए
0: पुना नलखन
1: हाँ
0: ओरे नन्ना चाहिए
1: एक वाला इन्ना तनलखन इन्ना मुंजन एला तनलखन नेला है कि मला पहिए का नाला के बेड़ा सिरे मुंजरो अरा दावले नाला खुमानो
0: हाँ दे बेड़ा जीवन त अके महबा रही बेड़ा ने खाई लिए कभी मल रुकुर की रही याद एकाने अम्मे जे बाहर ई अन्ने माद धार ले खाद बोहार ई काली। जीवन नु प्रत्येक सेकेंड ही मायने उइना चाहिए बेड़न बर्बाद नन्नती नमागे जे दौखन पगठी हकरो अदि लक्ष्य गुठी प्रभावित मनाऊंगी। अकुन त बेड़ा नु जैसे मोबाइल गुठी खदे गुठी नु या तो नम को घए हूँ बग्गे मोबाइल नु ध्यान चीने अति हूँ बचना चाहिए और बेड़न बछाबाना चाहिए।
1: बेड़ा गही पत मुंजरा कुन नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गही पतनो जो कथा ननो का सरकारी योजना रना मलका उर्मा आलर गे उज्जुना घी उन्टा सहाड़ा ही के इंदर गे का पच गे पेंशन लुरकुरिया तक को कुकिर गे ढिबा एक अम्बे से योजना उर्मर गे फायदा दिमची आलगी अन्य प्रधानमंत्री योजना हूँ छोटे छोटे व्यवसाय अरा छोटे छोटे नलक ननु आलर गे ठिबा अखरी व्यापार ननु आलर गे ऋण होना लेखा योजना उर्की रही।
0: हाँ दो कथा बात की दई संगम तरुण लोन एकदा 5 लाख ती 10 लाख गुटी चीर ई ईएम किशोर लोन 50 हजार ती 5 लाख गुटी ची तरी अरा कृषि लोन छोटा व्यवसाय गुठी लोन 20 लाख गुटी सरकार लोन ची ती बढ़िया व्यवसाय खेती बाड़ी दौती ननाऊ ने निम अखद होते का ई दिन 8 अप्रैल 2015 नु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओरे नंज कर दस
1: का खाली कृषि खेती बारी न नारगे पर खकरी का और में आलाएगी
0: मला दे छोटे छोटे व्यवसाय दुकान
1: अच्छा
0: दौरी अब ने आलाएगी हूँ और किशोर आय गुठी गी हूँ या लोन गुठी जीता रही।
1: अच्छा दो कथा भारत राज्य नम है जवान राज्य ही के जे की जोश अरा खुशी थी निंद्र की रही भारत राज्य के ही विकास के खुशी लिखा मन्ना अकय चाड़ रही राज्य के ही आर्थिक नन एरर अधि के ही समाधान नन हूँ एरना चाही नम है राजिंता नलक ननुर गही क्षमता अरा योग्यता हूँ मन्ना अकय चाड़ रही कब ए
0: हाँ दे
1: इंद्र ये की क्षमता और योग्यता लिखा हकरो होल नलक ननोर या हकरो होले आलाय हो अधिका आ नलखन दावती ननोर आरगे बेगारी मन लगो कब है
0: लगो हाँ
1: इंदर गे का इबड़ा लिखा सुविधा हकरो होले राजी हूँ अकई चाड़े विकास नु ओरे मनते कालो।

0: ई डंडी मंच का होखा नमा जानकारी की कथा मिनोत पर्यावरण में हमारी सहभागिता इदिन तेंगा लगी कमला लकड़ा।
1: पर्यावरण संरक्षण।

0: ಮಂಜ್ಕಿ ಕಿರ್ಕಿಚ ನಾಮಕುನ್ ನಿ ಕಮಲ ಲಕಡ ತರ್ತಿ ವಾರ್ತಾ ಮೇನೋತ್.
1: पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता ई पत्नु एन जो कथा बा बिद्दा लगेन उजना नु अनैत महबागार आलो गही चाड़ मनी होले उजना का जिया कया दावरई एकाने ताका चेप बीड़ी मन मासे जिया जंत अराहे हिलता हुर्मी आलो जे तानिम कुंद्रकिरी ई महबागार आलो मार अनाती आलर गही उजना खेखेल नु मल मनो पहकेल आंगे ना नाम होरमा आलरिन इदिन बछबाना का साफ सुथरा उन्ना अकै चाड़ रही नाम होरमा आलर गे उजना नु दाव सोच घोख संगे उजना चाड़ रही होले नाम पर्यावरण गही महबा बुझरोत अरा बछबा आगे नलख ननोत अक्कू आलर गही बढ़ना नितकीम बग्गे मंतिम काला लगी तंगा सुख सुविधा खतरी नाम अक्कू पर्यावरण नाश नना लगदत एकानेका कुहा फैक्ट्री लगा बा लगनर अनुती किचकिचा आम उरखा लगी आ आम गली नली ती मंतिम खाड़ नू का लगी अरा खाड़ता अम्मद खिधोर किचकिचा मना लगी खेती बारी नना गेहूं रासायनिक सारे सजा लगनर अत्तुहु अम्मे प्रदूषित मना लगी हज अन्नेम फैक्ट्री ती उरखा मुंजखा धुआ ती ताका प्रदूषित मना लगी हुर्मी किसिम गही गाड़ी ती उरखा मुंजखा ती ताका प्रदूषित मना लगी बेंजा काजे का एकाम धतम मनो बिरी बान सड़तानर इतु खू ताका दूषित मना लगी पद्दा खेपा नु कंकती चीच उदर मंडी अमखी बीत आनर आ मुंजखाती ताका दूषित मना लगी अदिन नाम जुक्की ननोत मला होले नमहै उजना अफित मनो कालो ध्वनि प्रदूषण बांगदत खेबदा ती मिंदत आलर तंग आ एद आगे का मनोरंजन गे लाउड स्पीकर डीजे बाजा गाड़ी चलरना ती सडरना कोहां कोहां फैक्ट्री गही सडना ती खेबदा ती मिन्ना बगती जली पलकरना बेसे लगी इत्तुक जिया कया माल मना लगी इत्तुक हूँ गेच्छा राना नमागे अकय चाड़ रई मृदा प्रदूषण बांगदत इन्नो रई खज हूँ दूषित मना लगी कोहां फैक्ट्री ती उर्का कचड़न इजो अजो हेबड़नर चीनर इतुक हूँ प्लास्टिक बग्गे ती बग्गे खल उखड़ीनु मना लगी दूषित नना लगनर ई लेखा हुर्मी तरती तरले पर्यावरण गही क्षति का नुकसान मना लगी इदिन बछा बाना नमन अकै चाड़ रही नाम होरमत सन्नी सन्नी नलक एरोत होजोत दरा नलक ननोत होले पर्यावरण दूषित मल मनो इदि हुर्मी ती कोहा नलख रई का आलारेन इदि गही महबा तेंगोत बुझाबोत बग्गे ती बग्गे मन मास इदोत हुर्मी तरा साफ सुथरा उयोत प्लास्टिक इजो अजो मल हेबड़ोत लूर कुड़िया नु खद्दारिन इदि गही महबा बुझा बा की निबंध प्रतियोगिता चित्रांकन नारा गुठी टूटता आ की ई पत्नु नाटक गुठी नंतर की जगा बाना चाड़ रई होरमा खदर संरक्षण साफ सुथरा होर की मन मास इदना गही घोख ननोर पद्दा खेपाता महिला मंडल इदि पत्नु तेंगना बुझाबाना चाड़ मनो प्रति अड्डानु मन मास इदोर पद्दा खेपन साफ सुथरा उयोर साफ सुथरा संगे खेखेलता जिया जंत हूँ बछा बाना अकय चाड़ रही पर्यावरण संतुलन ननागे बाना अकय चाड़ रही होरमा जातियर तंघय नेक दस्तूर ती पूजा पाठ का धर्म करम नन्नर ई परब गुठी नुहु पर्यावरण दूषित मना लगी कोहा कोहा मूर्तिन कमर अनारित अगही रंग रोगन ननर अदिन अम

0: बोहारनर चीनर इत्तु खु आम किचकिचा मनी कई अरा अनैत बग्गे ढिब्बा हूँ खर्चा मनी। यदि पत्नु सेमिनार रैली नारा लगाब अर्की आलारिन सुझाव का कथा कामना चाल रही होले आज जुक्की मनो शहर तरा अड्डा अड्डा समूह कमर आर मजी पर्यावरण गही महबा तेंगना मनो होले आर हूँ साफ सुथरा ननर की नली गली नु मल हेबड़ोर होले नाली साफ सुथरा मनो होले खाड़ता अम्मेद हूँ दाव रओ पर्यावरण गही संदेश पर्यावरण साफ सुथरा नन्ना अक्के चाड़ रही इदिगे मन मास इदना रही प्रति अड्डा नो हूँ पोप मन मास इदना रही गाड़ी चला बाना अड्डा नु साइकिल बग्गे चला बाना रही होले इसुंग हो बछरो अरा ढीबा हूँ बछरो प्लास्टिक ही अड्डानो अथखा का नन्ना गही उपयोग मनो आद पर्यावरण दूषित मल ननो खेखेलता जिया जान बछाबोत होले पर्यावरण संतुलन मनो लाउड स्पीकर मल लगाबोत बागे सुझाव चीना मनो हले खन खेबदा गे दिक्कत मल मनो एड़पा बली साफ सुथरा नन्ना चाड़ रही कंक गही अड्डानो गैस ती मंडी अमकी बीताना मनो अम का एक आम खुला अड्डानु मल नन्ना री मल त्याग अम का एक आम खुला अड्डानु मल नन्ना री बग्गे ती बग्गे रखना एड़पा कमर प्रयोग नन्ना रही नेखाय हूँ जन्म उल्ला का खेना उल्ला गही नामे ती मन मास इदना चाड़ रही एक आम पुरस्कार चीना मनो होले एक आम खांजपा गही मन चीनाती दाव मनो खोड़ा मजी दाव नलक नंजका रनर आर गही नामे ती हूँ मन लगा बना ती कोड़े मनो खद खरारीन टूरना बचना संगे नाटक नंतार की पर्यावरण गही पत्नु जगा बना अकय चाड़ मनो जोखो इदी पत्नु नारा बैन घरती पर्यावरण हिके प्रकृति गही प्रतीक इदिन बछा बागे अंगिया जैविक कृषि तकनीक नमन समझरना मनो पर्यावरण रक्षा गही मूली इंदेर गे का इदी ती बेचना मनो उन्टा कोहा भूल पर्यावरण रक्षा गे नाना चिहुट इदी गही नलखती पुना जिंदगी हखरो बेड़ा राते मेना पर्यावरण गही चाल अगर माँ होचकर पर्यावरण गही रक्षा होले फैसला तो गोटा राजी नो मनो डमाडोल हुर्मी पद्दा शहर जे ई संदेश नमन बछावाना रई पर्यावरण बड़ा मिलर की लगा बोत मन पर्यावरण कम ओत स्वच्छ पर्यावरण मल बछा बोत तो नाम हो मल बछरोत पर्यावरण ही के नमाय जिंदगी गही आधार इदी गही रक्षा नन्ना इदिन सकार पर्यावरण गही उइना महबा खेखलन किसकेचा नन्ना की अम्बा नन्ना अपमान
1: कमला दैते अकुन दावले कथा मिंजकत बेड़ा रही अंगे नाम और डंडी मेनोत ई डंडीन पड़कर अनर सोमा उरा संगियर।

0: अभी आप सुन रहे थे उड़ाव भाषा में आदिवासी अखड़ा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। बुनियाद कार्यक्रम का समय हो गया है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ इस सप्ताह का बुनियाद लेकर। वर्षों से ये कार्यक्रम आपके लिए राजेश लेकर आ रहा है और बातें करते हैं इसमें युवाओं, आपसे, आपके माता पिता से, छोटे छोटे जो भाई बहन हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उन्हें जीवन में क्या करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दो तीन बातें मुख्य रूप से कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, टेक्निकल पढ़ाई के किसी भी कोर्स को चुनिए अपनी मर्जी से और फिर ध्यान लगाकर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते ही संभवतः आपको रोजगार मिल जाए या पास आउट होने के बाद, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि अगर किसी नेशनल कंपटीशन को आपने कम्पीट नहीं किया है तो बाहर, बिहार से बाहर, झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार में, झारखंड में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। और आपको बताएं कि नेशनल कॉम्पिटिशन से भी अगर जो आप कम्पीट करते हैं तो बिहार में भी उसके कॉलेजेस हैं। मसलन अगर आपने क्लैट को क्रैक किया तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ जो ऑटोनोमस है वो है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है जिसमें मेडिकल से लेकर पैरामेडिकल, नर्सिंग या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मेसी की बात करें, कुछ भी करें यहाँ पढ़ाई होती है। बायोलॉजी से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, इसके अलावे अगर जो आप लॉ करना चाहें 5 ईयर या फिर 3 ईयर, या जर्नलिज्म करना चाहें या मैनेजमेंट करना चाहें, या अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, किताबों से शौक है, तो आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं। नोट कीजिए वहां का नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002। टोल फ्री नंबर है 1800121001, और एक वेबसाइट है www.gnsu.ac.in। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है बीएड स्पेशल एजुकेशन। हाँ, जैसे बीएड होता है ना, बीएड होता है उसी तरीके से, उससे भी ऊपर का कोर्स है बीएड स्पेशल एजुकेशन। 9431899002 पर पता कर लें। जी हाँ, इसके अलावा ढेर सारे कोर्सेज हैं, जो मर्जी आए चुन ले। आज मैंने किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया, डीन को नहीं बुलाया, या फिर रजिस्ट्रार साहब को नहीं बुलाया, या वाइस चांसलर को भी हमने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नहीं बुलाया। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट, जिसमें पूनम है, सिल्की है, यशवी है, आराधना शाही है, जागृति है, या फिर पलक है, बहुत सारे लोग हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना करियर क्यों चुना है, क्या इन्हें लगता है कि इसकी पढ़ाई कर लें तो रोजगार मिल जाएगा, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का जो कॉलेजेस है जमुआर, सासाराम, रोहतास, बिहार में, उसमें क्या क्या है, क्या ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इनके लिए फायदेमंद है और आपके लिए ये यूनिवर्सिटी कैसी है। इसके लिए सबसे पहले बुलाते हैं पूनम गुप्ता आपको, आ जाइए, माइक्रोफोन आपका और सारे लिसनर्स आपके हैं।
1: नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता बीबीए की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने इसलिए बीबीए चूज किया क्योंकि मुझे मैनेजमेंट में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने अपने घर से पास में जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए देखने के लिए ढूंढा तो मुझे पता चला कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैनेजमेंट। तो जब मैंने यहाँ पे आया पढ़ा तो मेरे लिए फुल्ली सैटिस्फाइड थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी हाई मिले, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट फैकल्टी इतने सपोर्टिव है। लाइक अगर आप कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर कुछ है तो आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ के फैकल्टी सारे स्ट्रीम्स को फुल्ली लाइक अच्छे से ट्रीट करके अच्छे से समझाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनको प्रॉब्लम होता है कि वो आर्ट्स से ह्यूमैनिटी से हैं तो उन्हें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो या आगे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें काफ़ी अच्छा स्कोप एंड काफ़ी अच्छा गाइड किया जाता है। ऑल दो इसके साथ साथ उन्हें स्किल्स का भी आगे अपॉर्चुनिटी है और वो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। हमारी और ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे जाती है उन्हें, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जिन्हें भी लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो DRCC से भी अपना यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं मैनेजमेंट करना तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बेस्ट है।
0: वाह क्या बात है पूनम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सिल्की आप क्या कहना चाहिएगा?
2: नमस्कार, मैं सिल्की गुप्ता गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की MBA की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ स्टडी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ स्टडी पे ही नहीं बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ों को मिलाकर एक ओवरऑल अच्छे पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। मैनेजमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें कॉरपोरेट में इस चीज़ों पे काम करना होता है। हमारे यहाँ सिर्फ स्टडी ही नहीं स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है, और हमारे यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। हमारे यहाँ हर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ को सही करने के लिए मेंटर मेंटीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि किसी भी बच्चे को अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम तो यहाँ आकर अपना करियर बना लिए, आप कब आ रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और हमारा नंबर नोट कर लीजिए जहाँ आप जानकारियाँ ले सकते हैं, 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री है 1800121051 और www.gnsu.ac.in। जी हाँ, ये वेबसाइट का पता है। इसके अलावे आइए बातें सुनते हैं यशवी से, जो BBA की स्टूडेंट है।
3: नमस्कार, मैं यशवी हूँ। मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की BBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे डाउट हो तो मेंटर मेंटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एनवायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है हमारे पढ़ने के लिए। इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा जाता है, हॉस्टल्स की सुविधा भी है। पैसे की बात है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी यहाँ दी जाती है। और आप अभी तक घर पे बैठे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए।
0: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया यशवी कि आपने क्यों BBA लिया और यहाँ क्या मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराधना साही है हमारे साथ। आराधना, अपनी बात बताइए सुनने वालों को, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
4: नमस्कार, प्रणाम, मैं आराधना साही गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जहाँ पे हम लोगों को बस थ्योरेटिकल ही नहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। एंड जब मैं यहाँ पे आई अपना एजुकेशन गेन करने के लिए, तब मुझे यहाँ पे ये फील हुआ कि हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे बस थ्योरेटिकल नॉलेज पे कभी फोकस नहीं करते, ये लोग हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपने जस्ट 12th पास आउट किया एंड अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, अच्छे से हम लोग ग्रो करें, एंड अगर आप एक लड़की हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा घर दूर है, मुझे हॉस्टल चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है हॉस्टल में, एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कैसे एजुकेशन गेन करेंगे, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको लोन मिलेगा एंड आप उसके हेल्प से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप जब यहाँ पे आओगे, आपको हमारा यूनिवर्सिटी मेक श्योर करता है कि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर में ग्रो करो। ये कॉलेज मुझे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करवाया है, एंड मैं आज जहाँ भी हूँ एक अच्छे प्लेस पे हूँ एंड अपने कॉलेज की वजह से हूँ। तो मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, अगर आप अच्छे अपने करियर में अच्छा करना चाहते हो तो आप जरूर आइए हमारे कॉलेज में। थैंक यू सो मच।
0: आराधना शाही ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है और अब बारी है जागृति की। पलक इंतजार कीजिए आप, जागृति बीबीए की स्टूडेंट है। जागृति क्या कहना चाहिएगा आप?
5: नमस्कार, मैं जागृति कुमारी बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड सेमेस्टर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर पे आया तो मैंने जाना कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली थे, ये हमारे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट मिला। यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है, जो स्टूडेंट्स का ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो भी अपना ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है स्किल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग, जो फैकल्टीज की भी यहाँ पे बहुत सुविधा है, यहाँ पे हर चीज की सुविधा है जिसके द्वारा से हम स्टूडेंट आगे से आगे बढ़ सके, प्लेसमेंट के थ्रू आगे बढ़ सके और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सके।

0: कोर्सेज और नए आए हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। आज लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आने वाले सोमवार को मिस नहीं करना है, जिसमें एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स आपके लिए है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ यही कोर्स है। ये तीन नए कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगले एपिसोड में यानी आने वाले सोमवार में एक एक करके हम इसके विषय में जानकारी देंगे, और फिर आपके कोई सवाल होंगे तो फिर दोबारा भी बताएंगे। तो बस ये हमारा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। अब आपकी बारी है, इसके लिए आप डायल कर सकते हैं 9431899002, 9431899002, और टोल फ्री नंबर है 1800121001, 1800121001, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। थैंक यू कहना चाहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास को कि जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम लेकर आने को आपके राजेश को मौका दिया और जानकारियां आप तक पहुंची। तो चलते हैं, अगले सोमवार को फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में काइट्स फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में, फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था हरीश जयराज ने, आवाज थी बॉम्बे जयश्री की। आइए अब सुनते हैं साथिया फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आवाज है साधना सरगम की, धुन तैयार किया है ए आर रहमान ने, शब्द रचना गुलजार के हैं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तुम बिन से। बोल फैज अनवर के हैं, तर्ज बनाई है निखिल विनय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं लापता लेडीज से, आवाज है अरिजीत सिंह की।
1: इंग्लिश बोल के बताएं, कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए, पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताएं, आई लव यू।
2: हो सजन।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार
2: सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
4: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
3: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशय किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 94-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे।

0: लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं।
1: जी
0: सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी। बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या जाम साहब हो, या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए कि भी एक स्थान बने। उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5,000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था।
1: जी
0: ऐसे हर साल में कोई ना कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा तो
1: जी
0: लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: सो आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1,000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर, उसको तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है।
0: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं। कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी है,
1: जी
0: मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं इसमें। अभी जो ये लाइट साउंड शो हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है कि वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, इसलिए भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
0: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है। जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
1: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहां आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
0: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ, आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते हैं, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है, तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
1: जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है, और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी। आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है, एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड में हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
0: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
1: जी।
0: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं। तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: पर अब से कुछ देर में यानी कि ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद आप 9 बजे सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ठीक 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
6: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
5: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
6: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
5: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
6: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
5: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
8: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
5: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
9: For the season of खरीफ 2026,
10: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
5: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

0: गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू इंश्योर दैट दिस सिचुएशन हैज द मिनिमल पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes

0: Hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed at the third spot with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And in IPL cricket, Punjab Kings were 180 for 2 in 11.3 overs against Delhi Capitals in Dharamsala when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and west Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए ज़खीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा सरमा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। महकमा मौसमियात ने कल गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में गर्म लहर की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की एक रोजा क्रिकेट की दर्जाबंदी में अपना अव्वल मकाम बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरान में से एक करार दिया। वजीर आजम वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद एक इज्तिमे से खिताब कर रहे थे।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस सूरत हाल का मुल्क के अवाम पर कम से कम असर पड़े। वजीर आजम ने मगरबी एशिया के बहरान के असरात से निमटने के लिए अपनी 7 नुकाती अपील को एक बार फिर दोहराया। इसमें ईंधन की खपत में कमी, जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने को तरजीह देना, 1 साल के लिए गैर मुल्की सफर से इज्तिनाब करना और स्वदेशी मसनूआत को इख्तियार करना शामिल है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर यह भी कहा कि वो खाने के तेल की खपत में कमी करें, कुदरती काश्तकारी की जानिब पेशरफ्त करें और सोने की गैर जरूरी खरीद से गुरेज करें।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक कहा।

0: हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरदार धाम हॉस्टल में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत है, साथ ही मरकजी डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने सरदार धाम इमारत में मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा भी किया, जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया, नीज ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए वक्फ इस बहाल किए गए मंदिर के इफ्तिताह के बाद 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद की गई। मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाजह ऐलान है कि हमला आवर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम व दायम रही। मंदिर में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर नौ भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज्म को जाहिर करती है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि ज़र मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिर खा मकदार में मौजूद है। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की ज़र मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, ज़मीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आबपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: इस मीटिंग में मरकजी वजरा जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। यह कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि यह कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
3: विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्र वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुत्तला किया कि हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमन कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरिएट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मगरबी बंगाल हुकूमत के 5 वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। इन वजरा ने 9 मई को वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज जरा इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते BSF को अगले 45 दिन के अंदर ज़मीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका TMC हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स मौसूल होने के बावजूद ज़रूरी खित्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने यह भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनागाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज के लिए कॉरपोरेट फंडिंग ज़रूरी है। नई दिल्ली में आज CII सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक पहली बैनुल अक्वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ्फुज़ करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जाँच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ آج چنڈی گڑھ میں پریس کانفرنس کے دوران ریاستی انتخابی کمشنر راج کمل چودھری نے بتایا کہ انتخابی شیڈیول کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابات والی سبھی میونسپل کارپوریشنوں، میونسپل کونسلوں اور نگر پنچایتوں کی حدود میں مثالی ضابطہ اخلاق فوری طور سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے آج جاری کی گئی مردوں کی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی ٹیم درجہ بندی میں بھارت نے اپنا پہلا مقام برقرار رکھا ہے۔ تاہم بھارت کی درجہ بندی میں ایک پوائنٹ کی کمی آئی ہے اور وہ 119 پوائنٹ سے کم ہو کر 118 پوائنٹ رہ گئے ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ نے 2 پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے 113 مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس معمولی گراوٹ کے باوجود بھارتی ٹیم عالمی کرکٹ میں اب بھی سر فہرست ایک روزہ بین الاقوامی ٹیم ہے، اور گزشتہ ہفتے کی اپ ڈیٹ کے بعد مردوں کی T20 بین الاقوامی درجہ بندی میں بھی اپنا پہلا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کل گرمی کی لہر کی حالات برقرار رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن کے دوران مغربی راجستھان کے علاقوں میں رات کے وقت بھی گرم صورتحال رہے گی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے۔ مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
5: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में
1: नमस्कार।
0: स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में से संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 0481, 2371 7117, 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती हैं घरों में जो होती हैं, वो दो तरह के से लगती हैं मेनली। वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज़ किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
0: अप्रैल
2: शुरू
0: मई के महीने में
2: जी
0: बहुत लगती है।
2: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
2: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है।
0: शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
3: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
1: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कम्बिस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें अब एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
0: जी, राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? और मैंने देखा है कि वहां पे 60-60, 70-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी राकेश जी।
2: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, एसी हर घर में, हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसमें सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
0: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
2: देखिए, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे, चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
0: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है? पहला प्रश्न।
1: नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है, बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है AC में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और यह है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पर सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉकड्रिल की बात करते हैं, DFS दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉकड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉकड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉकड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर होना है।
0: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
1: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
0: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
6: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
6: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं AC में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी, उस फैक्ट्री
0: धर्मवीर जी सवाल हम
6: नहीं,
0: समझ गए हैं।
6: सवाल यही कहना
0: चाहूंगा जी, हम समझ गए हैं प्रशांत
6: नहीं लवलीन जी, जी आप बात पूरी होने दीजिए।
0: नहीं आप तीन सवाल पूछे जी।
6: नहीं अगर आपके मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद
2: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
0: जी।
2: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
0: जी।
2: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिकसिटी की जो बात है मैं कह रहा हूँ, जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
0: जी।
2: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन ले, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी।
0: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
7: स्वामी
0: जी, विजय जी नमस्कार।
7: हाँ,
0: स्वागत है।
7: दीदी नमस्ते।
0: नमस्कार, सवाल
7: पूछिए। हाँ, सर नमस्कार जी।
1: नमस्कार
7: जी भाई, विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील शिवहर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से।
1: नमस्कार विजय।
7: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई, तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
1: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी, फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए, और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसी जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद जितना हो सकते हैं पब्लिक जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, वो फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
0: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं,
1: जी
0: सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
1: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दें, लोगों को जाने आने का रास्ता दें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
0: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
8: नमस्कार।
1: नमस्कार
8: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
0: जी।
8: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा प्रश्न।
0: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को तो, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
1: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहाँ पे जो जलने की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
0: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
9: लवली जी नमस्कार।
0: नमस्कार, सवाल पूछिए।
9: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्कार
9: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गाँव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है, आप इनको याद रखें 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
0: जी।
2: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास आएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है और लीकेज नहीं है तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है और कोई बिजली का सामान कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी जी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं वो सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेडर मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
0: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया
2: जाए? नहीं, नंबर जो सबका एक ही है 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
1: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो। और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
0: RWJ हो या कुछ भी
1: हो, हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
0: एक सवाल है पानीपत से, हैं ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
1: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी

0: बताए
1: जी जी हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है
2: जी। आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये MCB LCB ELCB का जो कंसेप्ट है इसीलिए, अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है,
1: तभी जी। प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

दोस्तों, रात की इस अशांत और सुकून भरी वेला में मैं लेकर हाजिर हूँ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें। मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर अस्मिता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगले 30 मिनट तक हम साथ मिलकर करेंगे कुछ मीठी पुरानी मीठी यादों की बातें, कुछ दिल को छू लेने वाले एहसास और सुनेंगे ऐसे गीत जो समय बदल जाने के बाद भी दिलों में बसे रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। कुछ यादें मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं और कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके दिल बस यही कहता है, काश वो पल आ जाए।

दोस्तों, कितना खूबसूरत एहसास है इस गीत में। पुराने गीतों की यही तो खासियत है, शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर आगे बढ़ने की जल्दी में पीछे छूटे खूबसूरत पलों को भूल जाते हैं। लेकिन जब रात थोड़ी शांत होती है और दिल थोड़ा खाली, तब वही पुरानी बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। जैसे कभी बचपन की शरारतें, कभी दोस्तों की हंसी, कभी माँ की आवाज़ और कभी किसी अपनों का साथ।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। भले ही लोग दूर चले जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जैसे कभी पुरानी डायरी, कभी कोई तस्वीर, तो कभी कोई गीत, अचानक हमें सालों पीछे ले जाता है। और सच कहें तो ज़िंदगी में अगर यादें ना हो तो ज़िंदगी कितनी सूनी लगने लगे।

दोस्तों, रात का समय शायद इसलिए बहुत खास होता है क्योंकि दिन भर की आवाज़ों के बाद जब सब शांत हो जाता है तब दिल अपनी बातें सुनाता है। कई लोग इस वक्त पुराने दिनों की वो याद करते हैं, किसी को स्कूल की दोस्ती याद आती है, किसी को पहला प्यार, तो किसी को अपने माता पिता के साथ बिताया समय। और दोस्तों, यादें कभी बूढ़ी नहीं होती, वे हमेशा हमारे दिल में बसी रहती है।

दोस्तों, कुछ यादें ऐसे भी होती हैं जिन्हें याद करके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। जैसे बचपन में बारिश में भीगना, छत पर बैठकर चांद को देखना, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना और बिना किसी चिंता के खुलकर हंसना। वाकई बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है।

दोस्तों, अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी की भी कोई सुनहरी याद आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही हमें याद हिम्मत देती हैं और एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। कभी-कभी एक पुराना गीत, एक पुरानी आवाज़ या एक पुरानी जगह दिल को फिर से जीना सिखा देती है।

तो दोस्तों, आज के सुनहरी यादें कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है यादों के ये सफ़र आपको पसंद आया होगा और पुराने पलों की खुशबू आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी। इसी के साथ अपनी दोस्त अस्मिता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सविता राय से राग नंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल है आज हूँ ना आए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है सजन अब तो आजा। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामानंद झा और हारमोनियम पर है गायत्री चक्रवर्ती।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे सविता राय से राग नंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी, बोल थे आज हूँ ना आए, द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी, भूल थे सजन अब तो आजा। तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर थी गायत्री चक्रवर्ती।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ देने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources stemming the West Asia conflict, one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है. पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव. अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है. ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है. आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें.
0: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country.